FM 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 40 सेकेंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी सासाराम है, FM 103.4 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी समाचार सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। समाचार के तुरंत बाद हम रिले करेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष

0: मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Neena Rakel. State governments of Bihar and Assam have decided to withdraw cases and other legal proceedings initiated against people who participated in protests over the alleged NEET UG examination irregularities. Bihar State Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all first information reports, FIRs, criminal complaints and show cause notices against
3: वंदन वार में सबसे पहले सुनिए चिंतन। आज का चिंतन, परिवर्तन शाश्वत सत्य है, इसलिए जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, तो स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब

क्यों ना हो, एक दिन बदलेगी जरूर। ये था आज का चिंतन। और लीजिए, अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। छह बजकर 45 मिनट पर संगीत सरिता श्रृंखला जिसमें आप सुन रहे हैं ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। कलाकार हैं पंडित सी आर व्यास। इसका भाग दो आज प्रसारित होगा, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम को आप पुनः शाम 6:45 पर भी सुन पाएंगे। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हेरा ही प्यार के। त्रिवेणी आप सुनेंगे सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे। आलेख एवं स्वर विधि जैन का है, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आठ बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा लेखक राजा मेहंदी अली खां पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पिटारा के अंतर्गत सुबह 10 बजे सेहत नामा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत का भाग पहला। संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। सुबह 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और दिन में 1 बजे सुरीला सफर आप सुनेंगे। सदाबहार नग में ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज 2:30 पर। कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत दोपहर 3 बजे आप इन विषयों पर चर्चा सुनेंगे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर सखी विशेष में डॉक्टर गीता मंजुनाथ, निरामय हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक और सीईओ के बारे में हल्की फुल्की बातें। इसमें सुनेंगे आप भाई भाई बहन की लड़ाई में किसकी हुई पिटाई, मुहावरों की दुनिया। इसमें आप सुनेंगे पेट में चूहे दौड़ना, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्युलॉइड के सितारे के अंतर्गत आप सुनेंगे राकेश आनंद बख्शी से यूनुस खान की बातचीत का भाग दूसरा। संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। शाम 5 बजे छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 7 बजे कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिएगा पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत नाटिका बस की सीट, लेखन वीएम आनंद, निर्देशन है सुशील बैनर्जी का। आठ बजकर 15 मिनट पर रात में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे आपके लिए। आज के फनकार रात 9:30 पर केंद्रित रहेगा अभिनेत्री कुमकुम पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे सुनिएगा छाया गीत आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये था आज का झरोखा। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे अरण्य कांड का भाग 263।

छोटा बच्चा जब दौड़कर सांप अथवा आग को पकड़ लेना चाहता है तो माता उसे वैसा नहीं करने देती। सयाना हो जाने पर माता का स्नेह तो पूर्ववत बना रहता है, किंतु तब पुत्र अपनी रक्षा आप करने लगता है। इसी प्रकार ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है, किंतु अपने बल तथा क्षमता का मान अभिमान न करने वाला तुम्हारे जैसा व्यक्ति मेरे शिशु पुत्र के समान है, जिसे केवल मेरे संरक्षण की आवश्यकता है। मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है, जो जप तप संयम नियम आदि को ग्रीष्म ऋतु की भांति सोख लेती।

ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा, आइए आज सुने इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। प्रस्तुत करता है जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास।

पिछली बार हम राग यमन के बारे में बात किया था, अब आज हम राग छायानट के बारे में बात करेंगे। अभी छायानट राग बहुत सारे गाते हैं, तो उसमें कौन सी बात आना चाहिए ये बंदिश के माध्यम से ही आपको मैं समझाऊंगा। इसमें एक बंदिश है, तन्न मदन सबो पुन्न पर वारू, ये मैं बंदिश गाता हूँ।

मध्यम का कितना प्रोमिनेंस है ये आप सुनते होंगे, तो मध्यम बहुत ही प्रोमिनेंट है उसमें छायानट में। अभी दूसरी एक इस राग में पुरानी बंदिश, ये करत ओमो से नेहा की बात।

अब इस राग में जो मैंने नी नी जा ये जो आखिर में लिया है ना, ये बहुत सारी कम दिखाई देते हैं, सुनने में नहीं आता है, लेकिन ये बंदिश में इसका प्रयोग किया है। तो छायानट गाते वक्त

तो चायनट में मध्यम का प्रयोग कैसा किया है ये बंदिश में बहुत ही ठीक तरह से दिखाया है। ऐसा मध्यम में मध्यम का प्रयोग ज्यादा होना चाहिए। मैंने कहा था कि राग छायानट में मध्यम की कितना प्रोमिनेंस है। अभी ऐसी एक बंदिश मैं दूसरी सुनाता हूँ जो बहुत सारे लोग गाते हैं।

और ऐसे कई बंदिश है जो पारंपरिक बंदिश कहते हैं हम। अभी इसमें एक परे संगति जो प्रोमिनेंट है, इसके ऊपर मैंने भी एक बंदिश बनाई है जो आपको सुनाता हूं।

0: अभी हमारी जो ज्ञान की प्यास है वो कौन बुझाएगा, ये मेरा कहना है उस बंदिश में। अभी एक दूसरा बंदिश सुनाता हूँ जो ये मेरी है, एक ताल में बंधी हुई है।
1: बलमा तोरी प्रीत,
0: ये तो एक कॉमन सब्जेक्ट।

ये जो बंदिश मैंने गाया माने ना जिया मुरा, ये मेरे गुरु के ऊपर किया है। मैं कहता हूं कि आप तो छोड़ के गए तो हम तो बेचैन हो गए।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा, आज आपने इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी सुनी। इसे प्रस्तुत किया जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सीआर व्यास ने, इनके साथ हारमोनियम पर संगत की पुरुषोत्तम बालावलकर ने और तबले पर साथ दिया मुकुंद राजदेव ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आज आपके साथ पूजा नरानिया। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि श्रोताओं, आज है पुण्यतिथि अभिनेत्री कुमकुम की, जिनका मूल नाम जैबुनिसा खान था। वे हिंदी सिनेमा और भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री थी। उन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। तो आज हम लेकर आए हैं भूले बिसरे गीत में उन्हीं पर फिल्माए हुए गीत। आपको सुनवाने जा रहे हैं ये सबसे पहला गीत, गंगा मैया तो है पिहरी चढ़ाई बे। इस फिल्म से लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की आवाजों में ये गीत है, शैलेंद्र के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा।

0: साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
1: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और आज हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री कुमकुम को क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि। तो हम बता दें आपको कि अभिनेत्री कुमकुम को फिल्मों में लाने का श्रेय फिल्मकार गुरुदत्त को जाता है। 1954 की फिल्म आर पार का वो गाना किसे याद नहीं होगा, कभी आर कभी पार लगा तीरे नजर। इस गाने में वो पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आई थी। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म उजाला का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत पर किया है शंकर जयकिशन ने।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। केएल परदेसी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन पर, दिल भी तेरा हम भी तेरे इस फिल्म से।

इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। श्रोताओं, आज हम नमन कर रहे हैं अभिनेत्री कुमकुम को और उन्हीं के बेहतरीन गीत आपको सुनवा रहे हैं। कुमकुम एक बेहतरीन कथक नृत्यांगना भी थी। उनकी इस कला की झलक कोहिनूर फिल्म के गाने मधुबन में राधिका नाचेरे में देखने को मिलती है। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं लागी नहीं छूटे राम। इस फिल्म का गीत सुमन कल्याणपुर ने इस गीत को गाया है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है चित्रगुप्त ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

बाबूरे आना आना।

कल्पना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा था राजा मेहंदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत मोहिनी फिल्म से शमशाद बेगम की आवाज में। इस गीत को भी लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने एंड दत्ता ने संगीत दिया है।

अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में। इस गीत को भी लिखा है राजा मेहंदी अली खान ने और

संगीतबद्ध किया है एस एन त्रिपाठी ने। कल यानी 29 जुलाई को लेखक राजा मेहंदी अली खान की पुण्यतिथि है। इनकी तो के माध्यम से हम उन्हें याद कर रहे हैं। आगे के कार्यक्रम यानी हम हेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम में भी हम उन्हीं के लिखे गीतों को आज आपको सुनवाएंगे। फिलहाल आपको अली बाबा और 40 चोर इस फिल्म का गीत सुनवाने जा रहे हैं।

0: कोई इसी काबिल।
1: हमें तुमसे मोहब्बत है ये दुनिया को बताएंगे।
0: कुर्बान जाऊं तुम्हारे बताने पे।

मिस्टर एक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज में तनवीर नकवी ने इस गीत को लिखा था और एन दत्ता का संगीत था। और आज हमने बात की अभिनेत्री कुमकुम की, क्योंकि आज थी उनकी पुण्यतिथि। कई सदाबहार गीतों को उन्होंने अपनी सजीव अदाकारी से अमर बना दिया। उन्हें हम स्नेहिल नमन करते हुए आज याद कर रहे थे। उन्हीं के मधुर गीत हमने आज आपको सुनवाए और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम, इसे हम अपने आकाशवाणी सासाराम से रिले कर रहे थे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते, सुप्रभात, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आभार कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। और श्रोताओं, इसी के साथ चलिए कार्यक्रम की शुरुआत आज भी करते हैं सुविचार से। महान शिक्षाविद एवं समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का ऐसा कथन रहा है कि दूसरों की भलाई और परोपकार करना ही मनुष्य का सच्चा धर्म है।

और श्रोताओं, इस सुविचार के बाद अब आइए एक नज़र डालते हैं 28 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। तो श्रोताओं, 28 जुलाई का इतिहास मुख्य रूप से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, पेरू की स्वतंत्रता और विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आज ही के दिन यानी कि 28 जुलाई 1821 को पेरू ने स्पेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 28 जुलाई ही वो दिन रहा जब 1979 में चौधरी चरण सिंह देश के पांचवें प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, हमारे भारत देश के पांचवें प्रधानमंत्री बने थे आज ही के दिन चौधरी चरण सिंह जी। और अब एक नज़र डालते हैं 28 जुलाई को जन्मे कुछ गौरवशाली व्यक्तियों पर। तो बता दें आपको कि 28 जुलाई को 1927 में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रामेश्वर ठाकुर का जन्म हुआ। 1957 में आज ही के दिन हिंदी के कवि, लेखक और रूसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के साहित्य अनुवादक अनिल जनविजय का जन्म हुआ। 28 जुलाई को 1983 में भारतीय कलाकार, चित्रकार, उद्यमी सुविज्ञ शर्मा का भी जन्म हुआ। और अब एक नज़र 28 जुलाई को दिवंगत हुए प्रसिद्ध शख्सियतों पर। 28 जुलाई को 2013 में भारतीय हिंदी फिल्मों के चरित्र अभिनेता जगदीप का निधन हो गया। 28 जुलाई 2016 में भारत की मशहूर लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी का भी निधन हो गया। 2020 में आज ही के दिन भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री कुमकुम का निधन हो गया। हम आपको बता दें कि कुमकुम वो अभिनेत्री थीं जिनका जन्म हमारे राज्य बिहार में हुआ था। 28 जुलाई को 2021 में भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का भी निधन हो गया। और अब श्रोताओं, आज के महत्वपूर्ण दिवस की बात हम करें तो पूरे विश्व में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो अभी हमने आपके साथ थोड़ी सी जानकारी साझा की 28 जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। और अब कार्यक्रम में सुनवा देते हैं आपको एक भक्ति गीत। जी हाँ, भक्ति गीत हमने लिया है अरिजीत सिंह, सचेत टंजन और परंपरा टंजन की आवाज़ों में, जिसे लिखा है सिद्धार्थ और गरिमा ने, संगीत से सजाया सचेत टंजन और परंपरा टंजन ने, और इसे हमने चुना है फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: विज्ञापन के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में अब आइए एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2027 के लिए निबंधन कराने वाले छात्र छात्राओं का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कल जारी कर दिया। जी हाँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए निबंधन कराने वाले छात्र छात्राओं का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया है और यह डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया गया है, जो 14 अगस्त तक त्रुटि सुधार के लिए उपलब्ध रहेगा। बोर्ड के अनुसार इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड वेबसाइट पर अपलोड है, जबकि मैट्रिक के छात्र छात्राओं का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। और बोर्ड ने निर्देश दिया है कि संबंधित हाई और प्लस टू स्कूलों के प्रधानाध्यापक अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से उस वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ अपने संस्थान के छात्र छात्राओं को कार्ड की 2 प्रतियाँ उपलब्ध कराएंगे। बिहार विद्यालय बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में यदि छात्र छात्रा के नाम, माता पिता के नाम की वर्तनी यानी कि स्पेलिंग, फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग और विषय आदि से संबंधित कोई भी त्रुटि है तो उसमें सुधार कराया जा सकता है। रोहतास जिलाधिकारी की उपस्थिति में कल हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस

कृष्ण सिंह, पीएम सूर्य घर और टीबी मुक्त भारत अभियान पर रहा जोर। जी हाँ, मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठक कल रोहतास के समाहरणालय में आयोजित की गई। रोहतास के जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में उपस्थित होकर बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, विद्युत आपूर्ति, टीवी मुक्त भारत अभियान, लंबित एसआईआर, राशन कार्ड तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों एवं एजेंडावार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजनाओं की वर्तमान स्थिति और उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई। मुख्य सचिव ने भी विभागवार कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी योजनाओं में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के उपरांत जिला पदाधिकारी रोहतास ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में विद्युत वितरण कंपनियों, बैंक प्रतिनिधियों और कार्य एजेंसियों को निर्देश दिया कि बैंक ऋण आवेदनों पर शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करे, साथ ही अनावश्यक अस्वीकृतियों में कमी लाई जाए और लाभिकों को समय पर स्वीकृति एवं सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। रोहतास जिला के डालमिया नगर अवर प्रादेशिक नियोजनालय परिसर में आज मंगलवार को आयोजित होने जा रहा है जिला स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला। जी हां, रोजगार मेले को सफल बनाने के लिए परिसर में टेंट और पंडाल भी लगाए जा रहे हैं और अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 30 से 32 काउंटर बनाए गए हैं। इस मेले में 2 दर्जन से अधिक निजी नियोजक भाग लेंगे और विभिन्न पदों पर हजारों रिक्तियों के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगे। इस नियोजन मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 1000 से ज़्यादा पद निर्धारित किए गए हैं। मेला में शामिल प्रमुख कंपनियों में HRBS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, MBA लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, लर्नर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लेक्सिजो HR सर्विस प्राइवेट लिमिटेड तथा गार्जियन सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। चयनित अभ्यर्थियों को पद के अनुसार 10,000 से लेकर 35,000 रुपये तक के मासिक वेतन के साथ अन्य सुविधाएँ भी मिलेंगी। जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया है कि इस मेले में भाग लेने वाले नियोजकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 4 पंजीकरण काउंटर, 1 हेल्प डेस्क तथा अन्य सहायता काउंटर भी बनाए गए हैं। कंपनियां अपने निर्धारित मापदंड के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करेंगी और साक्षात्कार के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर भी आज प्रदान किया जाएगा।

कैमूर जिले में युवाओं को माई भारत पोर्टल से जोड़ने के लिए जिला सलाहकार समिति की आज बैठक। महाविद्यालय में नियुक्त होंगे कैंपस एम्बेसडर। कैमूर जिले में 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन की तैयारी शुरू। इस प्रतियोगिता में 10 वर्ष से 14 वर्ष एवं 14 वर्ष से 17 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्राएं शामिल हो सकेंगे। पेंशन भुगतान बाधित होने पर अब लाभुक करेंगे आवेदन। जी हां, पेंशन भुगतान बाधित होने की स्थिति में अब लाभुक प्रखंड या जिला स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग रोहतास और कैमूर ने बताया है कि राज्य सरकार पेंशनधारियों की सुविधा एवं उनका सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने सभी पेंशनधारियों से अपील की है कि वे अपने नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर समय से अपना जीवन प्रमाणीकरण यानी लाइफ सर्टिफिकेट कराएं, ताकि पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यदि किसी कारणवश पेंशन भुगतान बाधित होता है तो इसके समाधान के लिए अपने प्रखंड या अपने जिला स्तर पर आवेदन करें। निदेशक ने बताया है कि वर्तमान में सरकार द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत

लाभुकों को लाभ दिया जा रहा है, जिनमें प्रमुख है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना। आगामी 3 अगस्त को पहली सोमवारी के अवसर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अभी से ही मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी हुई है। साथ ही कल हुई बैठक में रोहतास जिला प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी कई अहम निर्देश दिए हैं। और श्रोताओं, चलते चलते अब आइए डालते हैं मौसम पर नज़र। तो बता दें आपको कि मौसम विभाग से प्राप्त पूर्वानुमानों के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही पूरे प्रदेश में और साथ ही हमारे रोहतास जिला में भी बारिश होने की आशंका है। और अब इसी के साथ कार्यक्रम में समय है कि हम आपको सुनवा दें एक खूबसूरत सा गीत। तो चलिए सुनते हैं किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, जिसे संगीत से संवारा SD बर्मन ने है और फिल्म है 9/2/11।

जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, हम है राही प्यार के, हम से ना रूठिए। जी हाँ, 9-2-11 फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। और अब नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में हम अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं, जहां हम लेकर आते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां। तो हमारे पास दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान और दैनिक

मेरा ही प्यार के हम से ना रूठिए। जी हाँ, 9/11 फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। और अब नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में हम अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं, जहां हम लेकर आते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां। तो हमारे पास दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर अखबार आ चुके हैं। तो चलिए इन सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ को हम देखते हैं। और पहला अखबार जो हमने चुना है यह है दैनिक जागरण। और दैनिक जागरण ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है कि पेपर लीक विधेयक लोकसभा में पेश, अधिकतम 5 महीने में होगी सजा, गड़बड़ी करने वाली निजी एजेंसियां 8 सालों के लिए होंगी ब्लैकलिस्टेड, 2 महीने के अंदर जांच खत्म करने का प्रावधान, चार्जशीट दाखिल करने के अधिकतम 3 महीने में सजा, 10 साल की अधिकतम सजा व 10 करोड़ का होगा जुर्माना। इस कानून के बाद परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों को रोक पाने में चुनौती होगी खत्म। प्रभात खबर ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है कि बिहार शरीफ में रोजाना 20 टन क्षमता वाले दही लस्सी प्लांट का कल बिहार के मुख्यमंत्री सीएम सम्राट चौधरी ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुग्ध क्षेत्र में नई क्रांति से बिहार बनेगा आत्मनिर्भर। दैनिक भास्कर अपने प्रथम पृष्ठ पर लिख रहा है कि बिहार में रेयर अर्थ एलिमेंट का खनन होगा, परमाणु बम व ड्रोन बनाने में इस्तेमाल होगा, 40,000 युवाओं को इससे मिलेगा रोजगार, सरकार को 3,000 करोड़ का होगा फायदा, 7 जिलों में है खनन की तैयारी। जी हाँ, जिन 7 जिलों में मिला है खनिजों का भंडार और जिनके खनन की तैयारी चल रही है, उन जिलों में शामिल है गया, रोहतास, बांका, भागलपुर, नवादा, जमुई व जहानाबाद। तो हम आपको बता दें कि गया में मिला है निकोल, क्रोमियम, फ्लैडियम व प्लैटिनम ग्रुप के तत्वों का खनिज भंडार, रोहतास में मिला है ग्लूकोनाइट व पाइराइट, जी हां इस तरह के खनिज का भंडार, बांका में है तांबा, सीसा, कोबाल्ट और एल्युमिनियम, भागलपुर में लैंथेनियम, सीरियम, टाइटेनियम व क्रोमाइट, नवादा में है वैनेडियम व इल्मेनाइट, जमुई व जहानाबाद में मिला है मैग्नेटाइट और लौह अयस्क। और चलते चलते अब लेते हैं हिंदुस्तान अखबार की सुर्खी को। हिंदुस्तान अखबार ने अपने प्रथम पृष्ठ पर छापा है कि बिहार में तबादले के साथ शिक्षकों का जिला कैडर भी तैयार हो जाएगा। जी हाँ, बिहार में शिक्षकों का तबादले के साथ ही जिला कैडर बनाया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत सभी पात्र शिक्षकों को स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। जो शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण का विकल्प चुनेंगे, उनकी वरीयता नई तैनाती वाले जिले के आधार पर होगी। तो राज्य भर में शिक्षक तबादले के लिए कल बुधवार से आवेदन शुरू हो जाएगा। शिक्षा विभाग ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। TRE3 वाले और नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफर का मौका सरकार नहीं दे रही है। और खेलों की हम बात करें तो आपको बता दें कि भारोत्तोलकों ने, जी हां, राष्ट्रमंडल खेलों में दमदार प्रदर्शन जारी रखते हुए भारतीय उम्मीदों का भार उठाए रखा है। जी हां, मीराबाई चानू, ऋषिकांत और राजा के बाद सोमवार को ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ कल रजत पदक जीत लिया है। तो रजत पदक में भी भारत अब आ चुका है और अब तक उतरे चारों भारोत्तोलक पदक जीतने में सफल रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारत राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक कुल 5 पदक जीत चुका है। और अब इसी के साथ चलते चलते आइए सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

संवार लूँ। जी हाँ, लुटेरा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, मोनाली ठाकुर की सुरीली आवाज़ में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। और अब इसी गीत के साथ रागिनी आप सभी से यही चाहती है इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: नमस्ते रोहतास, ये प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया तब तक इंतज़ार कीजिए।
1: DRM 810 किलो हर्ट्ज पर कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़ दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य

0: रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
1: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक

0: वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
1: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
3: हम बहुत खुश हैं हमारे देश के लिए मेडल लाके, हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत कर

0: और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी, सरकार ने कहा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद, हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत कार्यक्रम। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बॉर्डर हिंदुस्तान का फिल्म से एक देशभक्ति गीत सोनू निगम की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है ताहिर अम्बालवी ने और संगीत दिया है दिलीप हरिकिशन ने।

सोनू निगम की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप सभी को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, इसी के साथ चलिए आपके पत्रों को शामिल करते हैं पसंद आपकी कार्यक्रम में। और ये पहला पत्र जो हमारे हाथ में है, इसे लिखकर भेजा है राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रेणु मिश्रा, गोल्डी माला मिश्रा, मास्टर रुद्र गुप्ता और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। राजनगर गांधी चौक से आप सभी श्रोता हैं रानी गुप्ता, सोनाली गुप्ता, संगीता, मेनका, पलक, पंखुरी, माधवी, साध्वी, हैप्पी, रिद्धि, गुनगुन, चुलबुल, रेणु, ज्योति जी, शालू, दीपशिखा, अर्चना और साक्षी मिश्रा। और आप सभी श्रोताओं की फरमाइश आई है जय जय शिव शंकर, जी हाँ आपकी कसम फिल्म के इस गीत को सुनवाने के लिए। तो ज़रूर आपकी पसंद हम पूरी कर रहे हैं। और इसी के साथ कुछ और श्रोताओं के नाम भी हम इसी गीत में शामिल करते हैं। तो आप सभी श्रोता हैं सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली सकरा से आप हैं जयंत कुमार बैरागी। तो चलिए आप सभी श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी कसम फिल्म से लिया गया ये गीत, जिसे गाया किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर जी ने है। आनंद बख्शी के बोल

आपकी कसम। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की युगल आवाज़ में। और आपको बता दें कि आपकी कसम जो ये फिल्म थी, ये बेहद ही प्रसिद्ध हिंदी रोमांटिक फिल्म रही 1974 की, और इसमें मुख्य भूमिकाएं थीं राजेश खन्ना और मुमताज़ की, और ये गीत भी फिल्माया गया था राजेश खन्ना और मुमताज़ पर। बेहद ही चर्चित फिल्म थी और इसका ये चर्चित गीत हमने आपको ये सुनवाया अभी अभी। तो चलिए अब लेते हैं ये अगला पत्र जो आया है कोवात से, शेख जफर हसन और राकेश रोशन की तरफ से। और शेख जफर हसन जी की फरमाइश है, फिल्म सफ़र के गीत हम हैं जिनके सहारे। तो ये गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। और इसी के साथ कुछ और श्रोता भी हैं जो हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार के, मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज। कलेर बिहार से हैं बेगम निखत प्रवीण और सदफ आरजू। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं सफ़र फिल्म का ये गीत, जिसे इंदीवर ने लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और गाया है मशहूर, जी हाँ मशहूर, प्रसिद्ध सुर साम्राज्ञी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने।

0: हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। सफ़र फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज़ में। श्रोताओं, सफ़र फिल्म आई थी 1970 में और जो ये गीत अभी आपने सुना उसे फिल्माया गया था शर्मिला टैगोर जी पर, और इस फिल्म में इनके साथ थे राजेश खन्ना। बेहद ही खूबसूरत फिल्म थी ये। और इसी के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि श्रोताओं, वो रिश्ते अक्सर ख़त्म हो जाया करते हैं, वो रिश्ते अक्सर ख़त्म हो जाया करते हैं जिसमें निभाने की कोशिश सिर्फ एक तरफ से हो रही होती है, और सफ़र फिल्म की कहानी भी शायद यही रही थी। बहरहाल, अगला गीत हम अपने श्रोताओं की फरमाइश पर आपको ज़रूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं ये विज्ञापन।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: इस विज्ञापन के बाद, इस संदेश के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम पसंद आपकी में। जी हाँ, ये सासाराम का केंद्र है आकाशवाणी का, और आप अभी सुन रहे हैं पसंद आपके कार्यक्रम में अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत। और उपकार फिल्म का गीत सुनने के लिए हमें ये खत लिखकर भेजा है छत्तीसगढ़ भाटपारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। महादेव घाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर। खुरमाबाद से हैं, जी हाँ, खुरमाबाद ग्राम कोन जिला रोहतास से सोनामती देवी, अर्चना देवी, प्रभा देवी, शुभम, शारदा और प्रियंका कुमारी। और इस खत में उन्होंने लिखा है कि जा रे पत्र चमकते चमकते, मेरे सासाराम आकाशवाणी परिवार को कहना नमस्ते नमस्ते। बड़ी अच्छी सी पंक्तियां हैं, और हमने भी कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी को नमस्ते कहा है। तो चलिए, आपकी पसंद का गीत हम ज़रूर आपको सुनवाने जा रहे हैं। जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हैं वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण और अर्श बाबू। ब्रह्मपुरा मनीगांछी से आप सभी श्रोता हैं अच्छेलाल रॉय, पानो देवी, मुकेश कुमार रॉय, प्रेम

कुमार और प्रिंस कुमार। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं उपकार फिल्म का गीत। मन्ना डे की आवाज़ में इंदिवर के बोलों को संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने।

उपकार फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में। इंदिवर के बोल थे, कन्याल जी आनंद जी का संगीत था। और उपकार फिल्म के बारे में श्रोताओं, हम आपसे दो बातें ज़रूर साझा करना चाहेंगे। ये फिल्म आई थी 1967 में और एक ऐतिहासिक देशभक्ति हिंदी फिल्म थी। इसे मनोज कुमार ने लिखा था और निर्देशित भी मनोज कुमार ने ही किया था। हम आपको बता दें कि मनोज कुमार भारत के प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रहे हैं। और उपकार फिल्म की सबसे खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान को प्रेरणा बनाकर मनोज कुमार ने इस फिल्म को लिखा था। तो बेहद ही खूबसूरत देशभक्ति फिल्म थी ये। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनवाते हैं आपको आशा फिल्म से एक गीत। और आशा फिल्म का ये गीत सुनना चाहा थाना मोड़ गढ़नों का रोहता से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन्निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमानिशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज ने। और आप हैं आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू।

निहारिका और वंश बत्ता, वंदना देवी, किरण देवी, मोहन कुमार, कृष्णा कुमार चौरसिया, सोनू कुमार, बैजनाथ प्रसाद चौरसिया, आप सभी हैं नगर पालिका वार्ड नंबर 11 भभुआ से। तो चलिए आप सबको सुनवाते हैं आशा फिल्म का गीत लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

और श्रोताओं, आशा फिल्म के इसी गीत के साथ ही हमारा आज का यह पसंद आपके कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम आज आपने तय किया रागिनी के साथ, साथ ही इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। और अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार के लिए, तो कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
1: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
0: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पशु पालकों एवं कृत्रिम गर्भाधान यानी AI से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है बिहार पशु प्रजनन विनियम अधिनियम 2025। इसका उद्देश्य है बेहतर नस्ल, अधिक उत्पादन और सुरक्षित भविष्य।
3: अब कृत्रिम गर्भाधान यानी AI सेवा केवल पंजीकृत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन AIT से ही कराएं। AI कराने से पहले तकनीशियन का पंजीकरण और पहचान अवश्य देखें। हमेशा प्रमाणित एवं अधिकृत सीमेन का ही उपयोग करें, ताकि आपको स्वस्थ बछड़े, बेहतर नस्ल और अधिक दूध उत्पादन का लाभ मिल सके। यदि आप AI तकनीशियन, सीमेन विक्रेता, सीमेन बैंक या इस सेवा से जुड़े संस्थान हैं, तो अधिनियम के अनुसार आवश्यक पंजीकरण अवश्य कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी अथवा बिहार लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी पटना से संपर्क करें। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पशुपालन निदेशालय और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर

0: घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेगी। गिरफ्तार लोगों की जल्द होगी रिहाई। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर, मतदान 30 जुलाई को। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। और केंद्र सरकार ने कहा बिहार में कुल 574 वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में, अतिक्रमण मुक्त कराने की चल रही है कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: पटना जिले की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। आइए जानते हैं इस सीट के चुनावी परिदृश्य के बारे में।
2: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही इस सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। भाजपा अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं जनसुराज इस चुनाव के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बनाने में जुटा है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 379,616 मतदाता हैं। इनमें 2,60,000 पुरुष, 179,533 महिलाएं तथा 23 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। इस उपचुनाव में 4,998 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 164 मतदान केंद्रों पर कुल 422 मतदान बूथ बनाए हैं। चुनावी मुद्दों की बात करें तो ट्रैफिक जाम, जल जमाव, सड़क और ड्रेनेज व्यवस्था, स्वच्छता, पार्किंग तथा अन्य शहरी आधारभूत सुविधाएं मतदाताओं के बीच प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दल इन्हीं मुद्दों को केंद्र में रखकर मतदाताओं का समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि एक महीने तक चलने वाले इस मेले की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

0: जिला प्रशासन ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 28 अगस्त तक चलने वाले इस मेले के दौरान जल उठाने के लिए श्रद्धालु अजगैबीनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। सुल्तानगंज से मुंगेर बांका होते हुए झारखंड के देवघर तक चलने वाले इस 96 किलोमीटर कांवर यात्रा का विशेष महत्व है। मेले में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ नेपाल, भूटान और अन्य देशों से भी शिव भक्त बाबा भोलेनाथ की भक्ति में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुल्तानगंज से विनोद कुमार।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आज मुंगेर दौरे का भी कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री तारापुर और असरगंज में कई विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने बताया कि बिहार में कुल 574 वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में हैं। भाजपा से राज्यसभा सांसद भीम सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी।

0: राज्यों के साथ नेपाल, भूटान और अन्य देशों से भी शिव भक्त बाबा भोलेनाथ की भक्ति में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुल्तानगंज से विनोद कुमार।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आज मुंगेर दौरे का भी कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान मुख्यमंत्री तारापुर और असरगंज में कई विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने बताया कि बिहार में कुल 574 वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में हैं। भाजपा से राज्यसभा सांसद भीम सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इनमें बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड की 63 और सुन्नी वक्फ बोर्ड की 511 संपत्तियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए संबंधित वक्फ बोर्ड कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए राजस्व के स्वयं के स्रोत के आदर्श नियम भी जारी किए। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण TRE4 के तहत नियुक्ति का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद नियुक्ति की अधियाचना 1 से 2 दिनों के भीतर बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। TRE4 के तहत 20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने की संभावना है। इनमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों के कुछ पद भी शामिल होंगे। इस बीच BPSC ने सोशल मीडिया पर वायरल TRE4 की विज्ञप्ति को फर्जी बताया है। राज्य सरकार ने गैर सरकारी स्वीकृत अनुदानित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से 3 दिनों के भीतर संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

महिला की मौत के मामले में 4 साल कारावास की सजा सुनाई थी। निगरानी जांच ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में पर्यटन विभाग के अधीक्षण अभियंता अवधेश कुमार सिन्हा के बैंक लॉकर की तलाशी में लगभग 64,79,000 रूपये मूल्य के आभूषण बरामद किए हैं। ब्यूरो ने बरामद आभूषणों और अन्य संपत्तियों का विवरण अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय आधुनिक कला तिरखा नई दिल्ली और बिहार संग्रहालय पटना ने कला और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। दोनों संस्थानों के बीच बिहार संग्रहालय में आयोजित होने वाली संयुक्त कला प्रदर्शनी शोध और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला तिरखा के महानिदेशक डॉक्टर संजीव किशोर गौतम और बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार ने नई दिल्ली में इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार ने पटना के महावीर मंदिर तख्त श्री हरिमंदिर साहिब और गया के विष्णुपद मंदिर सहित राज्य की 11 महत्वपूर्ण धरोहरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस BSAP को सौंपने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत इन स्थलों पर BSAP जवानों की तैनाती की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के साथ साथ धरोहरों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित हो सकेगी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा निराधार है और सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। नेपाल के तराई क्षेत्र में हालिया तनाव को देखते हुए अररिया जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जिला पदाधिकारी विनोद तुहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने सीमावर्ती गांवों का दौरा कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। सीमा पर सशस्त्र सीमा बल SSP और बिहार पुलिस की संयुक्त गश्त बढ़ा दी गई है तथा आने जाने वाले लोगों और वाहनों की सघन जांच की जा रही है। प्रशासन ने सीमावर्ती गांवों के लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना देने की अपील की है। किशनगंज सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रुईथासा स्थित राम जानकी पुल के पास से पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक और उसे शरण देने के आरोप में एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया है। पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चेसी खजूरी मार्ग स्थित कचरा प्रबंधन केंद्र के पास से पुलिस ने 20 लाख रुपए मूल्य की शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गया की एक अदालत ने 2 बच्चों की हत्या की दोषी मां को उम्र कैद की सजा सुनाई है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 4 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। बेगूसराय के रतनपुर स्थित बालिका गृह से 5 बालिकाओं के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस लापता बालिकाओं की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे, बिहार सरकार ने कहा गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति रिहा किए जाएंगे। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सरकार ने लोकसभा में पेश किया सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक। दैनिक भास्कर की खबर है, बिहार में रेयर अर्थ एलिमेंट का खनन होगा, परमाणु बम और ड्रोन बनाने में इस्तेमाल होगा, 40,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। प्रभात खबर ने लिखा है, 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों के ट्रायल को मंजूरी। एक अन्य खबर में अखबार लिखता है, पंकज त्रिपाठी को मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव में मिलेगा आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन पुरस्कार। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार के सुधा को बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड मुख्यमंत्री। आज अखबार लिखता है, विश्वविद्यालयों को कोषागार के जरिए सहायक अनुदान देने की तैयारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार नीट UG पेपर लीक के विरोध में

AIR at 90. समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ विधायक की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने राजू कुमार सिंह को वर्ष 2018 में हर्ष फायरिंग के दौरान एक

0: राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेगी। गिरफ्तार लोगों की जल्द होगी रिहाई। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार का शोर, मतदान 30 जुलाई को। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। और केंद्र सरकार ने कहा बिहार में कुल 574 वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे में, अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चल रही है कार्रवाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। कार्यक्रम व्यूरर में अब आइए एक नज़र डालते हैं हमारे आज के प्रसारित होने वाले और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी ही देर बाद 9:10 पर आप सुनेंगे हमारे सासाराम केंद्र से कार्यक्रम गीत मालिका में हिंदी फिल्म संगीत। आज के फनकार आकाशवाणी विविध भारती से ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:30 से। सुबह 10:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। सुबह 10:05 पर हम लेकर आएंगे आकाशवाणी सासाराम से हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज। लोक माधुरी में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम लोकगीत सुबह 10:30 पर। और 10:45 पर आप सुनेंगे रसधार कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। पूर्वाह्न 11:00 से आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी विविध भारती के केंद्र कार्यक्रम रंग तरंग के लिए। दोपहर 12:00 से 12:05 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:05 से 2:00 तक। दोपहर 2:00 हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी पटना प्रादेशिक समाचार, इलाकाई खबरें और

रोजगार सूचना के लिए। आकाशवाणी दिल्ली से सुनवाएंगे आपको मध्याह्न समाचार दोपहर 2:15 से दोपहर 2:30 तक। 2:30 पर हम आपको एक बार फिर लिए चलेंगे आकाशवाणी विविध भारती के केंद्र, जहां आप बने रहेंगे शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे आप सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। शाम 5:05 पर हम आकाशवाणी सासाराम से आपको सुनवाएंगे उद्घोषणा और कार्यक्रम विवरण, और 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदन। वंदन कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ भक्ति संगीत। शाम 5:30 का समय होगा हमारे सासाराम केंद्र से युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी के प्रसारण का, जिसमें आज बात होगी हेपेटाइटिस मुक्त भारत पर और हरियाली है तो जीवन की खुशहाली है इस विषय पर। शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। शाम 6:05 पर सुनवाएंगे आपको आकाशवाणी पटना से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। शाम 6:10 पर सुनिएगा किसान भाइयों बहनों के लिए प्रसारित किए जाने वाला कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे महिलाओं का कृषि क्षेत्र में योगदान, इस विषय पर एक भेंटवार्ता। 6:40 पर सुनिएगा सांझ गीत कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्म संगीत। 7:15 पर सुनवाएंगे आपको सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। 7:25 पर हम आकाशवाणी पटना से रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद जिले की हलचल। 7:50 पर आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी सासाराम से ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद। रात 8 बजे सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा, और 8:15 से 8:45 तक आप सुनेंगे ई मनपसंद कार्यक्रम का शेष भाग। 8:45 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। रात 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी सासाराम से लोकधारा में भोजपुरी लोकगीत, और 9:15 पर महफिल कार्यक्रम में चंद गजल। विविध भारती से सुनिएगा कार्यक्रम आज के फनकार का प्रसारण रात 9:30 से रात 10 बजे तक। रात 10 बजे से हम लेकर आएंगे सासाराम से रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग, और 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। लेकिन इसी बीच रात 10 बजे से 10:15 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के रिकॉर्डिंग का प्रसारण समापन तक। हमारे अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान हम लेकर हाजिर होंगे आकाशवाणी सासाराम से रात 10:55 से रात 11 बजे तक। रात 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम रिले करेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी रात 11:10 पर। तो ये था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:10 हो चुके हैं। गीत मालिका कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कुछ हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खानदान फिल्म के गीत से, जिसे लिखा है नक्श लॉयल पुरी ने, संगीत से संवारा खयाम ने, और मीठी सी आवाज़ लता मंगेशकर जी की।

0: ये मुलाकात एक बहाना है, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में दिल को छू लेने वाला, जज्बातों को बयां करने वाला ये बेहद ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना फिल्म खानदान से। और अब इसी के साथ हमारा अगला गीत जो हमने लिया है निकाह फिल्म से, इसे गाया है महेंद्र कपूर जी ने, हसन कमाल के बोल हैं, रवि का संगीत।
1: अभी अलविदा मत कहो।

बेहद ही खूबसूरत गीत आपने सुना परिंदा फिल्म से तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके। सुरेश वाडेकर और आशा भोसले की आवाज़ें थीं, खुर्शीद हुल्लौरी के बोल थे, आरजी बर्मन का संगीत था। और जी हां श्रोताओं, मुलाकात जो होता है वो रिश्तों में उम्मीद को बनाए रखता है और रिश्तों में ताजगी भी बनाए रखता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो जो दूरियों का दर्द होता है उसमें भी राहत मिलती है, और ये गीत भी कुछ इसी को बयां कर रहा था। बहरहाल अब इस गीत के बाद कार्यक्रम में हम सुनवाने जा रहे हैं आपको एक मस्ती भरा गीत विशाल जडलानी की आवाज़ में, बैंग बैंग। जी हाँ, बैंग बैंग फिल्म का ये गीत है जिसे लिखा भी है विशाल जडलानी ने और संगीत दिया है विशाल के साथ शेखर ने।

और बैंग बैंग फिल्म के इसी गीत के साथ ही अब रागिनी आप सभी से चाहती है इजाज़त। नमस्कार, हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र, जहां से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार का प्रसारण। तो कीजिए कुछ पल इंतज़ार।

वैसे हम जब हैरान होते हैं तो मानिए ना मानिए कुछ तो ऐसा होता है कि जल्दी से ऐसा लगता है कि सब कुछ जाग गया। तो फिर हैरान करने वाली एक बात ये भी है कि हम सबको घूमना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस घूमने के साथ एक नई चीज़ जुड़ गई है और वो ये है कि आजकल पता है छुट्टियों की जगह चुनने के लिए लोग सिर्फ समुद्र, पहाड़ और ये सारी चीज़ें नहीं देखते कि हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है और कैसे जाना है। वो देखते हैं कि हमारी जो जन्म कुंडली है उससे कौन सी जगह मैच करेगी और इस टर्म को एस्ट्रोकार्टोग्राफी कहते हैं। अनोखी है, अब रेखाएं बताएंगी कि दुनिया के कौन से हिस्से में, किस दिशा में हमको कब जाना है। अजीब अजीब सी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हम जितना मस्त होके रहें, नेचर के पास रहें और उतना बेफिक्री आती है और अपने आप ज़िंदगी चलती चली जाती है। क्या फ़र्क पड़ता है

0: आप माने या ना माने, लेकिन अभी भी हमें जरूरत पड़ती है बार बार ये देखने की कि आखिर वक्त क्या हुआ है। तो हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 9:40 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे ये है म्यूजिकल दिल्ली।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जरा सुनिए, अपने जरूरी कामों के बीच एक और महत्वपूर्ण काम ना भूल जाइए।
2: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जिन करदाताओं को अपनी आयकर रिटर्न ITR 1 या ITR 2 में भरनी है, उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
1: रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने AIS और फॉर्म 26AS की सावधानी पूर्वक जाँच करें तथा

0: विदेशी आय या विदेशी संपत्तियों का सही और पूर्ण विवरण अवश्य दें।
1: अपनी आयकर रिटर्न में सही और सटीक जानकारी भरें। ये क्विक रिफंड में सहायक होती है। सही रिटर्न तो जल्दी रिफंड।
0: प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग, भारत सरकार।

तो फिर थोड़ा सा रुकना है और रुक के ये सोचना है कि हम जो मेट्रो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो और शामिल करनी चाहिए। तो मेट्रो के ग्राहक संतुष्टि सर्वे में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए जो चलेगा 14 अगस्त तक। ये सर्वे में आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो अपनी जो भी आपका कहना है, मेट्रो में अगर आप सफ़र करते हैं तो अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हमारी और आपकी बेहतरी के लिए हैं, है ना। म्यूजिकल दिल्ली है ये। और अगर मैं आपको बोलूं तो फिर ये बात है कि मथुरा और आगरा कैंट पर अस्थाई ठहराव हो चुका है। इस वक्त जो हमारे पास खबर है कि हजरत निजामुद्दीन से मदुरई जाने वाली गाड़ी को मथुरा और आगरा कैंट स्टेशन पर आगामी 31 जुलाई तक अस्थाई ठहराव दिया गया है। तो ये जो लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, उनको भी ये सारी चीज़ें जान लेनी है। और फिलहाल तो जब आप घर से निकलें तो ट्रैफिक का ज्ञान थोड़ा सा अगर मिल जाए तो फिर अच्छा लगेगा।

अब जब ट्रेन की बात पता चली है तो फिर एक बात और हम आपको बता दें कि हरिद्वार के लिए चलेगी विशेष रेलगाड़ी। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली शाहदरा से हरिद्वार के बीच विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या है 04314। हरिद्वार से आगामी 30 जुलाई से 13 अगस्त तक दोपहर 3 बजे। लेकिन फिर भी जो भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसको एक बार आप रीचेक जरूर कीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको शौक है फोटोग्राफी का तो फिर उत्सव के लिए 15 अगस्त तक अपनी जो फोटोग्राफी है उसको आप देख सकते हैं कि कितनी काबिलियत है। वो ये कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 24 से 26 सितंबर तक होने वाले 7वें नदी उत्सव के तहत यमुना पर विशेष फोटो प्रदर्शनी लगेगी। आयोजकों ने लोगों से 15 अगस्त तक यमुना की तस्वीरें भेजने की अपील की है, जिसमें आप जा सकते हैं और जा करके आप अपनी जो फोटोग्राफ्स हैं उस पर वहाँ पर दे भेजिए और फिर बताइएगा आप हमें कि हाँ आपकी कौन सी फोटोग्राफ्स थी। और म्यूजिकल दिल्ली का साथ आपके साथ यूं ही बना रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे। तो ये जो सफर है आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर।

जरा रुकी तो सही, अभी कुछ और भी है आपको बताना। क्या आप जानते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में? तो ये केंद्र सरकार की एक राष्ट्रव्यापी योजना है जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी देश के किसी भी कोने में स्थित सरकारी राशन की दुकान से अपने हक का राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में और भी अगर जानना चाहते हैं तो पता कीजिए और इसका लाभ उठाइए। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे म्यूजिकल दिल्ली है, ये 9:56 हो चुके हैं और मैं आपके साथ हूँ और हमारे साथ है ये इतना अच्छा गानों का सिलसिला जो हमें काफ़ी सूदिंग एहसास दिलाता है और ये कहता है कि जिंदगी की सरगम चाहे कैसे भी हो गुनगुनानी तो पड़ेगी जनाब, है ना?

अपनी चाहतों को इसी तरह से जिंदा रखिए जनाब, क्योंकि चाहते ही तो हैं जो हमें चलने पे, दौड़ने पे या फिर कुछ सोचने के लिए हमेशा इंस्पायर करती हैं। और म्यूजिकल दिल्लगी का साथ आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा। वक्त होने वाला है 10, जो समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम वन की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम वन भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम की सराहना की थी।
1: विक्रम वन, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
0: बिहार और असम के राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वो 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। वहीं असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि दिल्ली में देर रात छात्रों पर गोलीबारी हुई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक इस समय संसद भवन में आयोजित की जा रही है। इस बैठक को मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता शामिल हैं। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक प्रतिष्ठित ब्रिक्स देशों के संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। सम्मेलन में संस्कृति से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स देशों के कलाकार रविन्द्र भवन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। सम्मेलन के दौरान प्रतिनिधिमंडल जनजातीय संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, वन विहार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चेन से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा

0: तहकीक है। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापक तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर चर्चा की। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल और लेबनान के बीच वार्ता का अगला दौर 4 से 6 अगस्त तक इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया जाएगा। चर्चा के दौरान दक्षिणी लेबनान में पायलट जोन प्रक्रिया के विस्तार, लंबित सीमा विवादों के समाधान और पिछले महीने दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित ढांचागत समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानवता का कल्याण प्रकृति के संरक्षण और सम्मान में निहित है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 6 रह गई है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव, जोरहाट, नागांव और कामरूप महानगर पालिका जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। 21 राजस्व सर्किलों के अंतर्गत आने वाले 631 गांवों में कुल 4,45,495 लोग प्रभावित हैं। हालांकि शहर के 10 बाढ़ प्रभावित वार्डों से अभी भी पानी पूरी तरह से नहीं निकला है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 10:05 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज़।

0: दोस्तों नमस्कार, साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज के इस अंक में आपका स्वागत है। हम हैं आपके दोस्त मुमताज अहमद। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है आम लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने की। आज के इस अंक में हम आपको सुनवाएंगे रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड के खुरमाबाद गांव के लोगों से की गई बातचीत। दोस्तों, सफाई क्यों ज़रूरी है, इसका आकलन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि जो इलाका साफ रहता है, नाली गली की सफाई एक अंतराल के बाद होती रहती है, उस क्षेत्र के लोग स्वस्थ रहते हैं, खुशहाल रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई पर ध्यान देते रहना चाहिए ताकि बीमारी फैलाने वाले कीड़े को किसी भी तरह से पनपने का मौका न मिल पाए। यदि ये कीड़े पनपने लगेंगे, इन्हें पनपने का मौका मिल गया तो ये किसी न किसी रूप में हमें प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। हम बीमार हो सकते हैं और बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने घर के साथ साथ अपने आसपास की नली गली की भी सफाई करते रहें। अपने आसपास के लोगों को भी हमें समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वे लोग भी अपने आसपास की गली हो, नाली हो या और भी जगह जो खाली पड़ा हो उसकी भी सफाई करते रहें, सफाई पर ध्यान देते रहें, क्योंकि गंदगी किसी भी तरह से हमें लाभदायक नहीं हो सकती है। दोस्तों, रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड के खुरमाबाद गांव के लोगों से हमने बात की। खुरमाबाद गांव खुरमाबाद पंचायत में पड़ता है और GT रोड और रेलवे लाइन के बीच बसा हुआ है। गांव में आने जाने के लिए कोई परेशानी नहीं है, पक्की सड़क उपलब्ध है। फिर भी हमने खुरमाबाद गांव के लोगों से बात की और जानना चाहा कि खुरमाबाद गांव के लोगों को नाली गली, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि कार्य के लिए अभी तक क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। आइए सुनते हैं खुरमाबाद गांव के लोग अपने गाँव में मिल रही सुविधाओं के बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं।
1: आप अपना नाम बता दीजिए।
2: रामनाथ सिंह पुत्र, स्वर्गीय लक्ष्मी सिंह, ग्राम पोस्ट खुरमाबाद, थाना चेनारी।
1: आप अपने गांव की गली के बारे में बताइए। सभी गलियों का पक्कीकरण हो गया है गांव में या कुछ बाकी भी रह गई है अभी?
2: गली की स्थिति ठीक है, पहले से सुधार है।
1: आपके गांव में यानी खुरमाबाद में सभी गलियों का पक्कीकरण हो गया है, कुछ बाकी भी रह गई है?
2: हाँ, कुछ बन गया, हल्का फुल्का बाकी है, 80% बन चुका है।
1: अब ये बताइए, जो गली बन गई अभी तक आपके गांव में, जिन जिन गलियों का पक्कीकरण हो गया है, उसमें आने जाने में परेशानी होती है कि नहीं?
2: तो गलियां है तो परेशानी होती है।

0: लेकिन ऐसे मेन गली अच्छा है, मेन गली चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं।
1: जो गली नहीं बनाई गई है आपके गांव में यानी खुरमाबाद गांव में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: उसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि क्या है या जो वार्ड है उनसे ये कहेंगे कि भाई बंदला करके बनवाया जाए, और बन जाती तो अच्छा होता है, सबके लिए अच्छा होता है।
1: नाली बनेगी है आपके यहाँ की गलियों में या कुछ बाकी भी रह गई है?
0: बाकी रह गया है नाली, मेन गली जो है, मेन गली का जो नाली है ये लगभग 1 किलोमीटर दूर तक जाता है, नदी के किनारे तक जाता है, नहर से नदी के किनारे तक। वह नली जो है अधूरा है, वह नली नहीं बना,
1: वो नहीं बना है। गांव के अंदर जो पतली गली है या चौड़ी गली है, गांव के अंदर की गली में नाली बनाई गई है?
0: जी हाँ, बनाई गई है।
1: बनी हुई नाली में गली के घर का पानी आसानी से निकल जाता है, बह जाता है?
0: हाँ हाँ, निकल जाता है,
1: कोई दिक्कत नहीं होती है
0: ना उसमें कोई।
1: कुछ गली ऐसी भी आपके गांव में खुरमाबाद में जिसमें नाली नहीं बनाई गई है?
0: नाली तो हो गया है, नाली का काम हो गया है।
1: बिजली रहती है कि नहीं आपके यहाँ?
0: बिजली ठीक है, बिजली बहुत बढ़िया है।
1: बिजली में जो सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं वो सभी को मिल रही हैं?
0: जी जी, सबको मिल रही है।
1: मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है?
0: कोई दिक्कत, बिजली में कोई दिक्कत नहीं, सबको बराबर सुविधा मिल रही है।
1: वोल्टेज कैसा रहता है आपके यहाँ?
0: ठीक रहता है, वोल्टेज में तो फैला ही
1: है, ठीक रहता है। पीने के लिए शुद्ध पानी आप लोगों को मिल रहा है नल जल योजना के अंतर्गत?
0: नहीं, नल जल योजना के अंतर्गत समय से पानी नहीं आता है, कहीं नदी टूटा है, कहीं टंकी का पाइप जो है फटा हुआ है, पानी बहने लगता है गली में ही, उसको बराबर लोग मरम्मती कर कराते हैं, लेकिन फिर भी बहने लगता है, समय से पानी नहीं आता है।
1: आपके गाँव यानी खुरमाबाद में कितना वार्ड है?
0: हमारा जो पंचायत में 11 वार्ड का पानी।
1: आपके गांव में कितना वार्ड है?
0: 8 वार्ड का गाँव है।
1: 8 वार्ड है आपके खुरमाबाद गांव में?
0: जी।
1: 8 वार्ड में पानी का सप्लाई नहीं किया जा रहा है रेगुलर?
0: सप्लाई तो हर जगह है लेकिन रेगुलर नहीं होता है, कभी कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पाइप फटा हुआ रहता है।
1: कितनी बार पानी आता है?
0: 7 बजे सुबह में।
1: सुबह शाम आता है?
0: सुबह शाम आता है, आता है कभी नहीं आता।
1: जो पानी सप्लाई आता है उसे आप लोग पीते हैं, पीने के काम में लेते हैं?
0: हाँ, क्यों नहीं, पीने के काम में आता है,
1: पीने काम लिया जाता है,
0: पीने काम लिया।
1: आपके गांव में विद्यालय कौन सी है सरकारी?
0: राजकीय मध्य विद्यालय खुलावास, कन्या विद्यालय है, और एक उर्दू मध्य विद्यालय है, 3 विद्यालय है हमारे गाँव में।
1: आपके गाँव में 3 विद्यालय है, मध्य विद्यालय, उर्दू मध्य विद्यालय और कन्या मध्य विद्यालय।
0: हाँ हाँ।
1: हाई स्कूल नहीं है आपके गाँव में?
0: नहीं नहीं, हाई स्कूल।
1: तो आपके यहाँ मध्य विद्यालय में पढ़ने के बाद आप लोग अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ भेजते हैं?
0: खुरमाबाद पंचायत में सरैया गांव पड़ता है, वहीं पर है।
1: सरैया हाई स्कूल में भेजते हैं? कितनी दूरी पर पड़ता है सरैया?
0: 1 किलोमीटर।
1: 1 किलोमीटर पड़ता है, आने जाने में कोई परेशानी बच्चों को?
0: नहीं, बच्चे वहीं पैदल आते जाते हैं।
1: आपके गाँव में जो स्कूल है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बाउंड्री है कि नहीं, पीने के लिए पानी उपलब्ध है कि नहीं, आने जाने का रास्ता कैसा है?
0: कन्या मध्य विद्यालय जो है वहाँ रास्ता उतना रास्ता नहीं है, वहाँ पे बच्चों को दिक्कत होता है, किसी के खेत से होके जाना पड़ता है, वहाँ रास्ता का दिक्कत है। और पढ़ाई के मामले में कन्या मध्य विद्यालय बढ़िया है, मध्य विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय खुरमाबाद जो रोड के बगल में है, पढ़ाई की स्थिति वहाँ पर सही नहीं रहती।
1: आपके यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं, हॉस्पिटल?
0: जी है, जी है, जी है,
1: रोज खुलती है?
0: हाँ, डेली खुलती है।
1: दवा मिलती है, इलाज होता है?
0: हाँ, दवा मिलती है,
1: इलाज भी होता है।
0: जी,
1: खेती करते हैं आप लोग?
0: जी हाँ, खेती तो करते हैं।
1: कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
0: धान या गेहूँ ज्यादा लगाएंगे, इस समय धान लगा रहे हैं, धान के बाद गेहूँ लगाएंगे।
1: सब्जी की खेती होती है कि नहीं अभी आपके यहाँ?
0: ना सर, बहुत कम, फूल फूल करता है, कलकठा कोई करता है, व्यवसायिक दृष्टि से सब्जी का खेती कोई नहीं करता है।
1: पटवन का मुख्य साधन क्या है आपके यहाँ?
0: पटवने का मुख्य साधन नहर है और ये बोरवेल है।
1: आपके गांव से नहर गुजरती है?
0: जी हाँ, नहर गुजरती
1: है। आपका गांव जो खुरमाबाद है वो जीटी रोड और रेलवे लाइन के बीच में बसा हुआ है?
0: जी हाँ, बीच में है।
1: तो रेलवे लाइन की दूसरी तरफ ही आप लोगों का खेत पड़ता है?
0: हाँ, रेलवे लाइन के उत्तर साइड में कुछ लोगों का खेत पड़ता है।
1: वहाँ खेती कैसे होती है, कैसे लोग जाते हैं?
0: वही मशीन से खेती होती है उधर।
1: गाड़ी जाती कैसे है?
0: गाड़ी जाती है, देखिए रेलवे लाइन के नीचे नीचे बना हुआ है रोड, क्या बोलते हैं उसको,
1: अंडरग्राउंड रोड है।
0: हाँ, अंडरग्राउंड रोड है, उसी के माध्यम से जाती है उसका।
1: अच्छा, अंडरग्राउंड रोड है।
0: हाँ,
1: और कुछ कहना चाहेंगे?
0: कहना चाहेंगे यही कि जो हाईवे

0: दोस्तों, अभी आप पेंटर बाबू फिल्म का गीत सुन रहे थे। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड के खुरमाबाद गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत।
1: खुरमाबाद गांव के लोगों से हम बात कर रहे हैं। खुरमाबाद चेनारी प्रखंड में पड़ता है और NH-19 के बगल में बसा हुआ है। GT रोड NH-2 पहले जाना जाता था। एक और व्यक्ति से बात कर रहे हैं। नाम अपना बता दीजिए।
2: सर्जी सिंह।
1: तो सर्जी जी, आप अपने गांव की गली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी गलियों का पक्कीकरण किया जा चुका है या कुछ बनानी अभी बाकी?
2: पक्कीकरण तो हुआ है कि ठीक नहीं हुआ।
1: पक्कीकरण होने के बाद भी परेशानी होती है आने जाने में?
2: बहुत परेशानी है।
1: अब क्यों परेशानी है? पक्कीकरण हो चुका है तब?
2: जान जाए कि सब टूट फूट गया है, जहाँ तहाँ ये ठीक ठाक नहीं है। गांव में नदी घर से लोग हवा दे रहा है, सब टूट फूट जा रहा है।
1: आपके गांव की सभी गली का पक्कीकरण हो गया है या कुछ बाकी?

0: रह गई है।
1: पाकिस्तान तो हो गया है,
0: कोई बाकी नहीं,
1: लेकिन सही नहीं हुआ।
0: नाली बनाई गई है कि नहीं आपके यहाँ?
1: नाली तो बगल में ही है,
0: बनी हुई है,
1: लेकिन ठीक नहीं है।
0: बनी हुई नाली से पानी नहीं निकल पाता है?
1: निकल पाता है, लेकिन टूट फूट गया है जहाँ तहाँ,
0: मरम्मती की जरूरत है।
1: हाँ सही होगा तब ना ठीक होगा।
0: बिजली रहती है कि नहीं?
1: रहती है,
0: बिजली रहती है।
1: हाँ बिजली ठीक है।
0: वोल्टेज कैसा रहता है?
1: वोल्टेज ठीक है,
0: ठीक है। 125 यूनिट जो फ्री की गई है उसका लाभ गांव वालों को मिल रहा है?
1: हाँ तो लिखा हुआ है, बिल पर लिखा हुआ है, ठीक है,
0: मिल रहा है लाभ सभी को।
1: हाँ हाँ
0: कोई दिक्कत नहीं है?
1: नहीं।
0: तार वगैरह कैसा है बिजली का?
1: तार ठीक है,
0: ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है?
1: मिलता है, नहीं मिलता है, ये सब पाइप फट टूट गया, इधर उधर सब पानी बह जा रहा है।
0: आपके गांव में चूंकि 8 वार्ड है खुरमाबाद में, तो 8 वार्ड में पानी का सप्लाई नियमित ढंग से नहीं किया जा रहा है?
1: कहीं नहीं, सब उधर टूट फूट गया, जहाँ के तहाँ पानी बहता है।
0: कितनी बार सप्लाई होता है पानी?
1: सुबह में भी होता है, कभी कभी शामों को हम देखेंगे आता है, लेकिन सब नदी जहाँ तहाँ में बह जाता है फट टूट करके।
0: अभी ना बह जा रहा है, फटा है, तो पहले तो ठीक आ रहा था ना?
1: नहीं कभी ठीक नहीं हुआ।
0: पानी की क्वालिटी कैसी है जो सप्लाई किया जाता है?
1: अब तो हम पिएबे नहीं किए, तो क्या बताएंगे हम।
0: आपके घर में नहीं आता है पानी?
1: नहीं हमारे घर में नहीं है।
0: आपके आसपास के घरों में?
1: हाँ 4 वार्ड या 3 वार्ड में आए।
0: आपके यहाँ कौन सी विद्यालय है?
1: मध्य विद्यालय खुरमाबाद, वही ना जीटी रोड उस पर है।
0: हाई स्कूल नहीं है आपके यहाँ?
1: नहीं हाई स्कूल नहीं है।
0: आपके यहाँ कन्या मध्य विद्यालय भी है?
1: हाँ कन्या मध्य विद्यालय है। उर्दू मध्य विद्यालय कौन है?
0: उर्दू मध्य विद्यालय भी है। जो स्कूल आपके यहाँ है उसकी बिल्डिंग कैसी है, उसमें आने जाने के लिए रास्ता कैसा है?
1: रास्ता तो सर रोड उस पर है, आने जाने बड़ी दिक्कत है, कितना आदमी डर के मारे लड़कों को भी नहीं रहे हैं।
0: आप लोग अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ ले जाते हैं? मध्य विद्यालय में पढ़ने के बाद आप लोग अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए कहाँ भेजते हैं?
1: अब तो हाई स्कूल सरैया है,
0: सरैया भेजना पड़ता है।
1: हाँ अपने ही पंचायत में पड़ता है,
0: खुरमाबाद पंचायत में ही है।
1: हाँ
0: आंगनबाड़ी केंद्र है कि नहीं आपके यहाँ?
1: है,
0: चलता है समय से?
1: चलता है।
0: आपका गांव NH-19 यानी NH-19 के बगल में बसा हुआ है, तो आने जाने में तो कोई परेशानी नहीं होती है?
1: कहाँ आने जाने में?
0: अपने गांव से प्रखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय पर जाने में तो कोई परेशानी नहीं होती है?
1: अब तो जाना पड़ता है उसी पार ना है, तो जाने जाने में दिक्कत तो ही है।
0: दिक्कत है?
1: हाँ दिक्कत तो ही है।
0: आपके गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं?
1: है,
0: खुलता है समय से?
1: हाँ खुलता है।
0: पेशेंट का इलाज होता है?
1: हाँ होता है।
0: दवा मिलती है?
1: हाँ मिलता है।
0: लोग जाते हैं इलाज के लिए?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो आप लोग कहाँ ले जाते हैं?
1: तब तो हमारा नजदीक कुदरा है,
0: कुदरा जाना पड़ता है।
1: हाँ कुदरा या सासाराम।
0: खेती करते हैं आप?
1: नहीं हम खेती सर नहीं करते हैं।
0: और कुछ कहना चाहेंगे?
1: अब यही कहना चाहेंगे कि अच्छी व्यवस्था हो जाए, लाइन सप्लाई गाँव में भी हो जाए, ओवर ब्रिज हो जाएगा तो हम लोग को आने में ठीक हो जाएगा।
0: जीटी रोड पर आपका गांव चूंकि जीटी रोड के उत्तर बसा हुआ है?
1: हाँ सटही है।
0: तो जीटी रोड के दक्षिण तरफ भी मकान है लोगों का?
1: हाँ है।
0: खेत वगैरह भी है?
1: हाँ
0: खेती के लिए लोग जाते हैं?
1: हाँ अनाज ना तो ये रहता है।
0: आने जाने में कोई परेशानी?
1: यही बड़ी भय लगता है प्लेन रोड के चलते।
0: तो आप लोग चाहते क्या है आखिर?
1: ओवर ब्रिज होता था सब तो अच्छा हो जाता है, कैसे पशु भी ले जाने में बहुत आदमी को परेशानी होती है।
0: एक चीज और बताइए, आपके गांव में जो स्कूल है मध्य विद्यालय, चाहे कन्या मध्य विद्यालय हो या उर्दू मध्य विद्यालय हो या एक और स्कूल जो बता रहे हैं, उसमें आप ही के गांव के बच्चे पढ़ते हैं या आसपास के भी कुछ गांव के आते हैं?
1: नहीं अगल बगल कुछ आते हैं।
0: जैसे कुछ गांव का नाम बताइए जहां के बच्चे आते हैं पढ़ने।
1: औरैया
0: और
1: चिलीबिली,
0: दो गांव के?
1: हाँ दो गांव के आते हैं लड़के।
0: ये दोनों गांव रेलवे के दूसरे साइड में है या इसी पार है?
1: रेलवे के उस पार है, उत्तर साइड में।
0: रेलवे के उत्तर साइड में ये दोनों गांव है?
1: हाँ जी।
0: तो बच्चे आते कैसे हैं?
1: अच्छा ही, कोई साइकिल से आता है या कुछ लड़के पैदल भी आ जाते हैं।
0: रेलवे क्रॉस कैसे करते हैं बच्चे?
1: पुल है, गुमटी है उस पर।
0: कोई दिक्कत नहीं होती आने जाने में?
1: दिक्कत यही है कि चिड़ली के जो लड़के हैं बहुत दिक्कत से आते हैं, बड़ी उन लोगों को परेशानी होती है आने जाने में।
0: एक और व्यक्ति है, इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो गांव के कई लोग हैं, पर समय अभाव के कारण हम सभी से तो बातें नहीं कर सकते हैं, पर एक और व्यक्ति

0: से हम बात करते हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए।
1: रमन कुमार सिंह।
0: रमन कुमार सिंह, रमन जी आप अपने गांव की गली के बारे में बताइए। सभी गली बन चुकी है या कुछ बाकी भी रह गई है?
1: कुछ बन चुकी है, कुछ बाकी है।
0: जो गली बनी है उसमें परेशानी होती है कि नहीं?
1: परेशानी तो ही है।
0: क्या परेशानी है बनने के बाद?
1: इसमें कोई चौतारा गली बांध दिया। कोई
0: गली का पक्कीकरण होने के बाद गली में पानी जमा होता है कि नहीं?
1: नहीं, जमा नहीं होता है।
0: अब जमा नहीं होता?
1: नाली बना हुआ है।
0: नाली भी बनी हुई है। आपके गांव में कुछ ऐसी भी गली है जो नहीं बनी है, कच्ची रह गई है?
1: जी जी जी।
0: उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उसको बनना चाहिए क्या?
0: नाली बनाई गई है आपके यहाँ की गलियों में?
1: नाली है, बाकी रोड नहीं है।
0: नाली है, रोड नहीं है।
1: हाँ,
0: सभी गलियों में नाली बन चुकी है।
1: हाँ, नाली सभी गली में है।
0: कोई भी ऐसी गली नहीं है जिसमें नाली नहीं बनाई गई है?
1: गली है ऐसा
0: कुछ है?
1: नाली नहीं है। हाँ, कुछ है ऐसा, नाली नहीं है।
0: जिस गली में या जिन जिन गलियों में नाली नहीं बनाई गई है, उन गलियों के लोग अपना पानी कैसे निकालते हैं?
1: वही अपना पाइप से ऐसे निकाल रहा है।
0: बिजली रहती है कि नहीं आपके यहाँ?
1: बिजली तो रहती है।
0: बिजली का वोल्टेज कैसा रहता है?
1: सही है।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोग को मिल रहा है?
1: नल जल का प्रॉब्लम तो है।
0: पानी आता है सप्लाई?
1: बहुत जगह सप्लाई नहीं जाता है।
0: आपके घर में आता है कि नहीं?
1: नहीं जाता है।
0: आपके यहाँ नहीं आता है?
1: पाइपों ने बिछाया तो कहा जाएगा।
0: अभी नहीं आ रहा है या कभी नहीं आया?
1: तो अभी नहीं।
0: आपके आसपास के घरों में?
1: आसपास के घरों में भी नहीं जाता है।
0: खेती करते हैं आप?
1: खेती करते हैं।
0: कौन कौन सी फसल लगाते हैं?
1: एक फसल धान कौन होगा।
0: पटवन कैसे करते हैं?
1: पटवन मटर मशीन से कर लेते हैं लोग। नहर से कर लेते हैं, मटर मशीन से कर लेते हैं।
0: नहर गुजरती है आपके गांव से?
1: हाँ, नहर गुजरती है, ताकि नहर की स्थिति बहुत खराब है।
0: क्या खराब है?
1: बहुत उसमें घास लग गया है, जलकुंभी लग गया है, नहर का बैंक सब टूट हो गया है, छाछ रहा है पानी इधर उधर।
0: अभी धान की रोपाई चल रही है कि नहीं आपके गांव में?
1: चल रही है।
0: चल रही है
1: जी।
0: पानी के लिए कोई परेशानी है या नहीं?
1: पानी का भी तो परेशानी पहले था, अभी नहीं है, अभी ठीक है। घास में परेशानी हम लोग को बहुत है, क्षति किसान को बहुत है।
0: आपके गांव का कुछ खेत ऐसा भी है जिसमें पानी जमा रहता है, डूब जाता है?
1: है।
0: आंगनबाड़ी केंद्र जो है आपके यहाँ, वो खुलता है समय पर?
1: हाँ, आंगनबाड़ी खुलता है।
0: खुलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है?
1: ना, नहीं।
0: और कुछ कहना चाहेंगे?
1: गाँव का पोखरा है, उसमें भी वही हाल है, नाली के पानी गिर रहा है, उसमें कुल लथुल लग गया है, कुल घास पात फूल।
0: उसकी सफाई जरूरी है
1: जी, सफाई उसकी जरूरी।
2: दोस्तों, अभी आप रोहतास जिला के चेनारी प्रखंड के खुरमाबाद गांव के लोगों से की गई बातचीत सुन रहे थे। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ साथ जनता की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। आशा है सरकार की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक मदद के साथ साथ जनता का सहयोग भी मिलता रहेगा। दोस्तों, अब घड़ी इशारा कर रही है हमारे इस कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए। तो साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज़ का ये अंक कैसा लगा, आप पत्र द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपने लिखा, द्वारा केंद्रीय निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। आप अपनी राय मेल पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akashwani.sasaram@gmail.com। akashvanisasaram@gmail.com। इसी के साथ आप अपने रेडियो दोस्त मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार। स्वर एवं संकलन मुमताज़ अहमद और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

0: अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जी हाँ श्रोताओं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीब परिवारों को 5,00,000 रुपये तक का मुफ्त इलाज, कैशलेस सुविधा और सूचीबद्ध अस्पताल की सेवाएं देती है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि देश के लगभग 47,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। तो अभी आपने ये संदेश सुना, और संदेश से पहले हम आपको सुनवा रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आवाज़, जिसके सूत्रधार थे मुमताज अहमद। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम लोक माधुरी बस कुछ ही पलों में।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मदन रॉय के स्वर से। संत कबीर की रचना है, भरत शर्मा व्यास का संगीत है और ये एक निर्गुण भोजपुरी एल्बम लोकगीत है। तो आइए सुनते हैं।

चला सखी हुआ सखी, निर्गुण गीत अभी आप सुन रहे थे मदन रॉय की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और लोक माधुरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। अब लीजिए सुनिए आधी आधी रतिया के एल्बम से भरत शर्मा व्यास की आवाज़ में चंद्रभूषण तिवारी का लिखा हुआ एक पारंपरिक भोजपुरी एल्बम लोकगीत।

और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का भोजपुरी एल्बम लोकगीत का कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न हुआ। और अब लीजिए सुनिए रसधार कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाते हैं आपको सुगम सिंह की आवाज़ में विनय बिहारी का लिखा हुआ एक भोजपुरी एल्बम सॉन्ग, जिसकी धुन बनाई आशीष वर्मा और लाल सिन्हा ने है, और एल्बम है शिव धाम जी आवेला।

बोलबम। जी हाँ, सावन के महीना में शिव धाम जे आवेला, ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शिव धाम जे आवेला इस एल्बम से आवाज़ थी सुगम सिंह की। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और रसधार कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। तो अब लीजिए सुनिए गुंजन सिंह की आवाज़ में रविंद्र ओझा का लिखा हुआ एक भोजपुरी एल्बम सॉन्ग, जिसकी धुन बनाई शिशिर पांडे ने है और एल्बम है बदरा दे।

बदरा रे गुंजन सिंह की आवाज़ में इस एल्बम का अभी ये एल्बम सॉन्ग अभी सुन रहे थे आप। और इसी के साथ अब लीजिए रसधार कार्यक्रम के अंत में सुनिए रवि चौहान का लिखा हुआ एक एल्बम सॉन्ग, जिसे गाया है नीलकमल सिंह ने, संगीत दिया है जयदीप वर्मा ने और एल्बम है फिल्म के हीरोइन।

0: नील कमल सिंह के गाए हुए इसी भोजपुरी एल्बम सॉन्ग के साथ ही रसधार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 11 बजने वाले हैं। अब आप आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण सुनेंगे। इसे हम अपने आकाशवाणी सासाराम से रिले करेंगे, तो सुनते रहिए आकाशवाणी सासाराम, जुड़े रहिए हमसे। और अब मुझे यानी रागिनी को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

मैं चंदन हूँ बहू हूँ। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो।

मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। सोनिक ओमी ने इसका संगीत दिया, वर्मा मलिक ने इसे लिखा। धर्मा फिल्म का नाम।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: हंसते जख्म, ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजों में कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। कैफी आजमी ने इसे लिखा और मदन मोहन का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज की मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग, और इस संदेश से पहले आप सुन रहे जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल गम बड़े आते हैं। इस एल्बम से संगीत दिया था जगजीत सिंह ने, और अब सुनते हैं रंग तरंग की अगली पेशकश।

अनूप जलोटा की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे, मूड्स ऑफ अनूप जलोटा एल्बम का नाम था, संगीत अनूप जलोटा ने दिया।

0: आवाज में।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
7: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: तनहा दिल, ये था एल्बम का नाम। शान की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, राम संपत ने संगीत दिया था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

भूपिंदर और मिताली की आवाजों में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह ने संगीत दिया था, सईद राही ने इसे लिखा। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शायला और बिंदा रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी। बाद में श्री बिरला के प्रश्नकाल शुरू करने के प्रयास पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
2: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया

सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक सहित गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चेल्लूरू में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चेल्लूरू के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण

0: पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म से अभी ये गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत।

0: कयामत से कयामत तक, ये था फिल्म का नाम। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। आनंद मिलन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं, वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो

0: विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: FM 106.4 MHz, विविध भारती दिल्ली,
3: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।

जब प्यार किसी से होता है, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जतिन ललित ने संगीत दिया था, आनंद बख्शी के लिखे बोल।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं।

0: वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है.
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल.

कुमार सानू की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे 1942 अ लव स्टोरी से, जावेद अख्तर ने इसे लिखा, आर डी बर्मन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, आज आपके संग। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गीत हम सुरीला सफ़र में आज शामिल करते हैं। तो जल्दी से वो शब्द चुनकर आप अपने पसंदीदा गीत या जो आपको लगता है कि आज इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले गीत हैं कमेंट में लिख सकते हैं। देखते हैं आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से कितनी मिलती है। और अगर आपकी लिस्ट हमसे मेल नहीं खाती तब भी आप अपने पसंदीदा गीत उन शब्दों से चुनकर लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें आज के इस प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की जल्दी से, लेकिन हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने इबारत नहीं पढ़ी है अब तक या फिर जिन्होंने बहुत लेट ट्यून इन किया है, उनके लिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस तरह से थी, पूछो ना उस दिल से जिसने बस एक ही वादा निभाया है, मेरी हंसिनी की मुस्कान को हर दुआ में सजाया है, ये मन आज भी उसी पहले प्यार की मुलाकात में ठहरा है और कोरा कागज अब तक उसी अधूरी दास्तां का चेहरा है, कहीं ना जा यूं मेरी यादों की गलियों से गुजर कर, कुछ पल तो ठहर इन धड़कनों की सदा सुनकर, बस एक बात कहनी है वादा करो, चाहे बदल जाए मौसम बदल जाए रास्ते हजार, जहां भी रहो मुझे तुम याद करना। तो बताइए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं और कौन से गीत हम आज शामिल करेंगे। बिना देरी किए आज इस प्रोग्राम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं।

हमराज फिल्म से ये गीत अभी हमने आपको सुनवाया महेंद्र कपूर की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत, और बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आज इस सफ़र की शुरुआत हुई है। आप बस यूं ही हमारा साथ देते रहें और हम आपको खूबसूरत नगमे सुनवाते रहेंगे। और एक और गीत जो इसके बाद मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, वो बहुत ही जल्दी पहचान लिया गया वो शब्द, क्योंकि बहुत आसान था, और इसीलिए वो शब्द से जो गीत है आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके प्यार भरे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि प्रेमी प्रेमिका के प्यार की दास्तान और विरह को दर्शाया है। गुजरे वक्त के सुनहरे पल को याद करते हुए यही दुआ करते हैं कि कितने ही बदलाव आए, मुझे तुम हमेशा याद रखना। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर संदेश। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कविता के माध्यम से खूबसूरत और भावनात्मक सच्चे प्रेम, निश्चल समर्पण और विरह की तड़प को दर्शाया गया है, और अपने पहले प्यार के प्रति उस अटूट निष्ठा को अभिव्यक्त किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल उसे ही अभिव्यक्त किया गया है यहाँ पर। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पहला प्यार शायद कभी जाता नहीं है, बस अपने नाम की नेम प्लेट उतार कर दिल के किसी पुराने कमरे में चुपचाप रहने लगता है। पहला प्यार मिल जाए तो जिंदगी का गीत बन जाता है, और बिछड़ जाए तो रूह की खामोश जुबान। वो शोर नहीं करता, कोई शिकवा भी नहीं करता, बस कभी बारिश की किसी बूंद में, किसी शाम की ढलती धूप में, तो कभी किसी पुराने गीत की धुन में आकर हल्के से कंधे पर हाथ रख देता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है इस संदेश को। हमारे एक और श्रोतागण लिखते हैं कि पहला प्यार जीवन की किताब का वो खूबसूरत पन्ना है जिसे चाहकर भी कभी पलटा नहीं जा सकता। ये हृदय की वो पहली भावनात्मक जागृति है जो इंसान को खुद से परे देखना सिखाती है, जब वक्त की बेरहम लहरें दो राहों को अलग कर देती है। बिल्कुल। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीले सफ़र में यादों में खो जाएं और सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो अकेले इस दिल को सुकून देते हैं। बिल्कुल, आज के जो गीत है आपको सुकून ज़रूर देंगे, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में विरह श्रृंगार की अनुभूति को बहुत गहराई से लिए हुए हैं, और कोरे कागज़ पर प्रियतम की यादें उसी का चेहरा लिए हुए है, एक अधूरी दास्तान। और काफ़ी सारे इन्होंने भाव लिखे हैं, जैसे विरह, मिलन, मुलाकात की यादों में ठहरा। बहुत ही सुंदर शब्द चुने हैं इन्होंने अपना संदेश लिखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे संदेशों में वादे शब्द का उपयोग हुआ है, हमारे आज की इबारत में भी है, और यादों से न जाने यादों का कारवां चला आता है। तो आज क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज यादों पर ही कुछ सवाल किए जाए। हम याद भी करते हैं और वादे भी करते हैं, दोनों शब्द बहुत मिलते जुलते हैं, यादें और वादे। तो हम वादे दूसरों से करते हैं, अपने प्रियजनों से करते हैं, और उन्हें पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो वादे हम अपने आप से करते हैं अपने लिए, क्या उन्हें पूरा करते हैं? तो आप मुझे बताइए कि अभी हाल फिलहाल कौन से वादे आपने अपने आप से किए हैं, और कौन से अच्छे वादे जिन्हें अपनाकर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी बदल गई है? तो उन वादों की बातें करते हैं। लिखिए मुझे संदेशों पर, और हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

कहाँ उड़ चली, किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जहरीला इंसान फिल्म का नाम था, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन का संगीत। ओ हंसिनी, एक ऐसा शब्द जो आप सबने एकदम पहचान लिया और ये गीत हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन आगे बातें हो रही है यादों की और वादों की। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर दिल्ली में बरसात हो रही है बहुत ज़ोरों से, और मैंने आपको एक कविता भेजी है, एक गीत, एक प्रीत सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैंने लिखी है दास्तां, मैं लिखी हुई दास्तां हूँ, ऐसा इन्होंने लिखा। मैं वो गुजरे ज़माने की एक राह हूँ, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूँ, सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तां हूँ। बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हम इस वक्त ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं अजमेर से जम्मू कटड़ा की तरफ, बाहर एसी कोच के कांच से बहुत ही सुहाने मौसम के दर्शन हो रहे हैं, बारिश हो रही है, हरियाणा और पंजाब के हरे भरे लहराते हुए खेतों को देखकर आंखों को सुकून मिल रहा है और कानों को विविध भारती सुनते हुए सुकून मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर की आवाज़ में जो जादू है वो आज भी महसूस होता है, साहिर लुधियानवी के शब्दों ने इस गीत को अमर बना दिया है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम नागपुर में झमाझम बारिश का जो माहौल है उससे आनंदित हो रहे हैं, और हमराज फिल्म का ये खूबसूरत गीत जिससे शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की, वो एकदम मौसम के अनुकूल है। जी हाँ, शहर दिल्ली में भी बारिश हो रही है इस वक्त, ऐसा लिखते हैं हमारे श्रोता। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दिल पहली बार किसी के लिए धड़कता है तो दुनिया की हर चीज़ खूबसूरत लगने लगती है, बिना किसी उम्मीद बिना किसी शर्त के किसी को बस देखते रहने की चाहत, यही पहले प्यार की असली पहचान होती है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। और ज़्यादातर श्रोताओं ने ये लिखा है कि बारिश हो रही है, तो बारिश का आनंद भी लीजिए और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर गीतों की बारिश में भिगो देते हैं साथ।

जो मैंने आपसे सवाल किया था कि बहुत से वादे हम दूसरों से करते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं अपने जीवन के अंत तक, ऐसे कौन से वादे जो आपने अपने लिए किए हैं और आप उन्हें निभा रहे हैं वो हमें बताइए। हमें अच्छा लगेगा, हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे वो वादे वो बातें।

0: लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे मशाल फिल्म से। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट,

0: उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है.
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया. अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग. वादों पर, यादों पर बहुत से मैसेजेस, संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं. तो जब हमने पूछा आपसे कि कौन से ऐसे वादे हैं जो आपने अपने आप से किए हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा वो भी खुद से किया हुआ बहुत कम पूरा होता है. बचपन में सोचते थे सुबह उठकर पढ़ाई करूंगा, जो हो नहीं सका, और जवानी वादों पर ही निकल गई, अब तो बुढ़ापा है, रोज का वादा फिर वादा. हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रेडियो जॉकी बनने का बचपन से इंटरेस्ट था, पर बैंकिंग सर्विस में आ गया और खुद से वादा किया था कि एक दिन अपना ये हॉबी ज़रूर पूरा करूंगा. सो रिटायरमेंट के बाद वो एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है. हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपने आप से वादा किया है अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखूंगा, और रख रहे हैं बिल्कुल. एक और श्रोता लिखते हैं कि बिना उद्देश्य के इस जीवन काल में एक वादा खुद से किया है कि अड़िग रहता हूँ इस वादे पर, हर हाल में सुबह 5 किलोमीटर और शाम को 3 किलोमीटर की वॉक करता हूँ. बारिश में छाता भी संग होता है और साथ ही हमारे 5 साथी जो साथ में होते हैं, लेकिन हर हाल में वॉक ज़रूर करते हैं, बहुत अच्छी बात है. एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली का वादा खुद से किया है और उसे निभाया भी है अब तक, बहुत बहुत अच्छी बात है. एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन संगिनी का जीवन भर साथ ना छोड़ेंगे हम, ये वादा हमने किया है अपने आप से. ऐसे में हमारे श्रोता एक ये भी लिखते हैं कि दूसरों को दिए गए वादे तो अक्सर टूट जाते हैं जिनके लिए हमारा उत्तरदायित्व होता है, तो फिर अपने आप से किए हुए वादों का क्या भरोसा. बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है आपकी, लेकिन वहीं पर तो बात आती है सेल्फ डिसिप्लिन की, वहीं पर बात आती है अड़िग होकर अपना ख्याल रखने की, क्योंकि सबसे पहले आप अपना ख्याल रखेंगे तभी तो दूसरों का ख्याल रख पाएंगे, है ना. और हम आपका ख्याल रखते हुए अब यहाँ पर आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत.

किशोर कुमार की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे मंजिल फिल्म से। योगेश ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज थी। और मेरे नयन जो है इस वक्त ढूंढ रहे हैं आपके संदेशों को। बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश आपने भेजे हैं, लिख भेजे हैं यहाँ पर। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है, जो अभी तक ठीक ठाक निभा रहा हूँ। और एक वादा विविध भारती के साथ किया है, सदा साथ रहने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि खंडवा में रिमझिम बारिश की फुहारों के साथ भक्ति में डूबा है पूरा खंडवा। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा तो बस यही स्वयं से करते हैं कि सदा सत्यनिष्ठ ईमानदार बने रहें, और वैसे ही अकेले हैं सभी के सामने भी रहें। जी हाँ बिल्कुल, ईमानदार बने रहना ही सबसे बड़ा चुनौती भी है, और देखा जाए तो आसान भी है, बहुत ही सिंपल भी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यादें और वादों के मुताबिक मौसम ने दस्तक दे दी है। जी एक और श्रोता लिखते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वो आज सुरीला सफ़र में 25 मिनट लेट हो गए हैं, लेकिन 2 बजे तक विविध भारती के साथ जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है हमें, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। एक और श्रोता लिखते हैं, जहां भी रहेंगे विविध भारती के साथ रहेंगे, ये वादा किया है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि पढ़ाई के समय का पहला प्यार असफल रहा, दूसरी बार सगाई हुई तो वो भी साल भर बाद टूट गई। मन टूट गया था, पर तीसरी बार हुआ प्यार, 2 महीने के अंदर चट मंगनी और पटब्याह में तब्दील हो गया, जो आज तक मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, निभाते रहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा टूटने के लिए तो होता है, क्योंकि टूटने पर ही जुड़ने की लालसा लगती है। जी हाँ, अब ये सबके अपने अपने विचार हैं, बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि अपने आप से एक बड़ा वादा किया है कि समय का सदुपयोग करूँगा, नहीं टेंशन दूंगा और ना ही टेंशन लूंगा। ये तो सबसे अच्छा मंत्र है देखा जाए तो खुश रहने का। और एक बहुत ही खूबसूरत वादा जो हम अपने आप से कर सकते हैं वो है खुश रहने का, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है, किसी के ऊपर नहीं है ना। तो चलते हैं, इसी खुशी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और ये अगला गीत।

जमाने को दिखाना, ये था फिल्म का नाम। आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आर डी बर्मन का म्यूज़िक था। इसके साथ ही आपके बहुत से सुंदर मैसेजेस, संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ वादे शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निभाए जाते हैं। आज की सुंदर सी इबारत ऐसे ही एक सच्चे वादे की कहानी कहती है, जिसमें पहला प्यार, मीठी यादें और अटूट विश्वास आज भी जीवित है। जी हाँ, आज की धुनों के बारे में बताया हमारे एक श्रोता ने, और बहुत ही खूबसूरत ढंग से पूरे डिटेलिंग के साथ उन्होंने तीनों धुन, यानी कि आने वाला पल, आगे भी जाने ना तू और लेकर हम दीवाना दिल के बारे में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बड़ी ख़ास है, पहला प्यार हर किसी को होता है। कोई कोई होगा जिसने कभी प्यार नहीं किया होगा और पहला प्यार कभी भूलता नहीं है। रजनीगंधा सा महकता है। हालांकि ये संदेश बहुत लंबा है, लेकिन मैं कुछ ही पंक्तियों में इसे पढ़ दे रही हूँ। अगले श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के इबारत के शब्द ही लाजवाब है और गीत भी लाजवाब है। बनारस में बैठकर वो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक श्रोता का कहना है कि आज के ज़माने में ईमानदारी, यानी कि ईमानदार इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, जो हमारे साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाएं जैसे कि हम उनके साथ रहते हैं। हम आजकल दूसरों पर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं और बहुत कम करना चाहिए कि कौन कहां तक साथ देगा, क्या पता। जी हाँ, सतर्क तो ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें सोचना कि हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, सतर्क रहें और सोच समझकर ही अपने रिश्ते निभाएं, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता बनारस से लिखते हैं कि बारिश कहाँ गायब हो गई है। हम लोग यहाँ गर्मी में धूप और बारिश के मौसम में चिचिल अति धूप का सामना कर रहे हैं, यानी कि कभी बारिश भी आ रही है, कभी धूप भी आ रही है, और दोनों मौसमों का ये बारी बारी से सामना कर रहे हैं, तो मौसम का कोई भरोसा नहीं है, शायद ये ऐसा लिखना चाह रहे हैं। हमारे एक श्रोता कोलकाता से जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत धूप है आज और उमस भी हो गई है काफ़ी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जवानी में कमाने में बिजी रहे, प्राइवेट नौकरी में थे तो कहीं जाने की फुर्सत ही नहीं मिली, और अब देश के तमाम उन शहरों को घूमने का मन बनाया है जो समंदर के किनारे हैं। देखिए बुढ़ापे में ये वादा पूरा होता है या फिर नहीं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है और इन गीतों के साथ वो चाय और पकौड़े के साथ इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। छोटे छोटे वादे करते हैं, ज़्यादा बड़ा वाला वादा हम अपने आप से नहीं करते हैं। जी हाँ, कोई बात नहीं, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। फिलहाल हमारी मंजिल अगला ये गीत सफ़र में जोड़ते हैं इसे, है ना।

0: शैलेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत तराना फिल्म से, रविंद्र रावल ने इसे लिखा, राम लक्ष्मण का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं, वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुरीला सफर, मेरे यानी अनुराधा के संग। हमारे श्रोता लिखते हैं कि वादा होता ही है ना निभाने के लिए, क्योंकि जिनको निभाना होता है वो लोग वादा नहीं करते, केवल निभाते हैं। जी हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, आपका विचार हो सकता है। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर में इस वक्त सुरीला सफर कार्यक्रम के दौरान बारिश शुरू हो गई है, तो जी हाँ, आनंद लीजिए गीतों का और बारिश का, दोनों का। एक और श्रोता लिखते हैं कि उनके चयनित 3 गीतों को कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। इस बात का वादा जरूर कर सकते हैं, लेकिन वादा निभाया जाएगा इसका दावा नहीं कर सकते। दावा और वादा दोनों

शब्द को आप उल्टा कर पढ़ोगे तभी यही मतलब निकलेगा। बहुत डिटेलिंग से उन्होंने मैसेज लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक वादा अपने आप से ये किया है कि कोई भी समय हो, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, लेकिन मुस्कुराते रहना है, अपनों के लिए यही सबसे बड़ा वादा होगा। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि वादा एक उम्मीद है और उसे पूरा करना संकल्प, और यही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरा तो ये कहना है कि वादा करना बड़ा आसान है लेकिन उसे निभाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। वादा करने के लिए सिर्फ शब्द खर्च करने होते हैं लेकिन वादों को निभाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और खोखले वादे करने के बजाय हम कोशिश को तवज्जो दें तो बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, बहुत अच्छा विचार है। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ, और ये रहा अगला गीत।

बड़े दिल वाला इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ों में, आर डी बर्मन की तर्ज और मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा था। और आपके संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। जयपुर से जुड़े हमारे श्रोता और लिखते हैं कि एक घंटे से बारिश हो रही है, मौसम सुहावना है और सुरीले सफ़र के साथ मौसम के चार चांद लग चुके हैं, लेकिन ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव बारिश और सुरीले सफ़र का जो गीत हैं उनके उनका मज़ा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि किसी से भी वादा इतना ही करना चाहिए जिसे हम पूरा कर सकते हो, उतना बड़ा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ना कर पाए। और इस पर ये गाना फिट बैठता है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है।

ड्राइव बारिश और सुरीली सफ़र का जो गीत हैं उनके उनका मज़ा ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि किसी से भी वादा इतना ही करना चाहिए जिसे हम पूरा कर सकते हो, उतना बड़ा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ना कर पाए। और इस पर ये गाना फिट बैठता है कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। क्या बात है। एक और श्रोता लिखते हैं, गुंचे लगे हैं खिलने, ये जो गीत है काफ़ी दिनों के बाद इन्होंने सुना है और ये सुनकर इन्हें लगता है इन्हें याद आती है अपने बचपन के वो दिनों की जब अंताक्षरी में ये गीत गाते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ युगांडा अफ्रीका से भी जुड़े हैं लोग, एक श्रोता जुड़े हैं जो सुरीला सफ़र का मज़ा ले रहे हैं इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जबलपुर शहर में बरखा रानी रूठी हुई है, कल रात में थोड़ी रिमझिम बारिश हुई पर उसके बाद पता नहीं कहाँ रूठ कर चली गई। चलिए गीत सुनिए, उन्हें मनाइए और वो आ जाएंगी फिर से। ट्रेन के सफ़र में जो है इंटरनेट महाराज आँख मिचोली खेल रहे हैं और इंटरनेट महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ठीक से चले। जी हाँ बिल्कुल, वादा इन्होंने VBS के साथ किया है कि इसका दामन कभी नहीं छोड़ेंगे और हम भी आपका दामन कभी ना छोड़ेंगे। फरीदाबाद से भी हम तक मैसेज पहुंचा है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बादलों ने अपना वादा बखूबी निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेशों के लिए। और अब ये गीत

0: आंखों का इस मस्ती में सूझे न, क्या कर डालूं हाल मोहे संभाल।
1: कारवा फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज, और हमने शुरुआत की थी इस सुरीला सफ़र की वादा से, और अब ख़त्म कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं वादा

0: देखने को मिली। राज्य सरकार ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक अथवा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा, राजद, जनसुराज समेत विभिन्न दल अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं। एनडीए के घटक दलों के वरिष्ठ नेता भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में विभिन्न स्थानों पर रोड शो और सभा कर रहे हैं। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा क्षेत्र के बोरिंग रोड, हड़ताली मोड़, चकारम समेत विभिन्न इलाकों में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में वोट की अपील की। जनसुराज के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न मोहल्लों और टोलों में लोगों के साथ संवाद कर समर्थन मांगा। 30 जुलाई को मतदान होगा। मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में एक वीडियो अपील जारी की है। श्री कुमार ने लोगों से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भागलपुर में सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे। 28 अगस्त तक चलने वाले इस मेले के दौरान जल उठाने के लिए श्रद्धालु अजगैबी नाथ धाम पहुंचने लगे हैं। सुल्तानगंज से मुंगेर बांका होते हुए झारखंड के देवघर तक चलने वाले इस 96 किलोमीटर कांवर यात्रा का विशेष महत्व है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने आज मुंगेर जिले में कई मॉडल स्कूल, डिग्री कॉलेज और थाना भवन का लोकार्पण किया। श्री चौधरी ने तारापुर और असरगंज में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ कर दिया है। अररिया जिले से सटे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में हिंसा के बाद कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी विनोद दुहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्र मानिकपुर, कोसिकापुर और भवानीपुर में आज सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने क्षेत्र में सामाजिक समरसता और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं, साथ ही लोगों से किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। जहानाबाद के साई सेंटर स्कूल में आज साइबर मंगलवार का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों ने छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा के साथ साइबर अपराध से बचने के उपायों की जानकारी दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही पूरी तरह बाधित रही। लोकसभा अध्यक्ष ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का आग्रह किया। अध्यक्ष ने कहा कि संसद चर्चा और संवाद का स्थान है और पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। इसके बावजूद हंगामा और शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति

लक्ष्य नहीं हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL असिस्टेंट के 500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 7 अगस्त 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। पता नोट कीजिए www.natiosnasurance.nic.co.in। रेलवे भर्ती बोर्ड सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। पता नोट करें www.indianrailways.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के 150 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट का पता नोट कीजिए www.bpssc.bihar.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। अपराह्न के इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का

0: भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और बी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: And for whatever interest. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले सदन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक हुए हैं और चीटिंग स्कैम हुए हैं। अभी भी

0: जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
1: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
2: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
3: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
4: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी है। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
5: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों

0: की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रुपए का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण सियासी इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार
2: प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशु रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशु शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, तीन देवियां फिल्म का नाम था। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
1: विविध भारती से, इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

मुकेश की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे संगम फिल्म से। शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वक्त फिल्म का नाम था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। रवि का संगीत।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे बंधनी फिल्म से। गुलजार ने इसे लिखा एसडी बर्मन की तर्ज, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ हैं आरती श्रीवास्तव। तो आरती, तुम्हें भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और मंच पर स्वागत है।
2: मंजरी जी, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आज तुम्हें?
2: अच्छा लग रहा है आज तो
1: क्योंकि आज मौसम भी बदला सा है ना। प्रकृति पूरी हरी भरी दिख रही है और बारिश की तो फुहार आई चुकी है, तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है जब
2: बारिश
1: देखते
2: का
1: हैं।
2: बारिश का एक यही जादू होता है ना कि वो चारों तरफ हरियाली बिखेर देता है। परेशानियां भी नुकसान भी होते हैं, लेकिन ये जो चीज है ना, ये भी बहुत जरूरी है।
1: क्योंकि आज देखो हम अपने विषयों में भी लेकर आए हैं ना कि हम बात करने वाले हैं। पहले तो हम बात करेंगे कि मुहावरों की दुनिया जिसमें पेट में चूहे दौड़ना है ना, और इसके साथ साथ हल्की फुल्की बातों में भाई बहन की लड़ाई में किसकी हुई पिटाई, इस पर भी बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा विषय है जिसमें बचपन की यादें सभी की ताज़ा हो जाएंगी। तो सभी हमारे श्रोता भाई लोगों ने बहुत सारे कमेंट लिख भेजे हैं, सखियों ने भेजे हैं।
2: तो अपने जो भी आपके आपके अनुभव हैं, जैसा भी आपके बचपन में अनुभव रहा कि किसकी पिटाई हुई थी भाई बहन दोनों में से, तो आप लिखकर भेजिए हमें। और साथ ही पेट में चूहे कूदना आपके लिए क्या मायने रखता है, आप किस तरह से इसको परिभाषित करते हैं, इसके बारे में भी आप अपने विचार लिखकर भेजिए हमें। और साथ ही आज हम बात करेंगे सखी विशेष के अंतर्गत डॉक्टर गीता मंजुनाथ के बारे में, जो कि निर्मयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक भी हैं और उसकी CEO भी हैं।
1: बिल्कुल। और इसके साथ साथ आज हम बात करने वाले हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के ऊपर भी बात करने वाले हैं आरती। तो जो ये जो दिवस है हमारा विश्व हेपेटाइटिस दिवस, मानव शरीर में कब कौन सी बीमारी लग जाए कह नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति कितना भी संतुलित अनुशासित जीवन नियम संयम से जी ले आरती, चाहे वो ध्यान कर ले, योग व्यायाम कर ले, या चाहे खान पान की बात हो या दैनिक दिनचर्या हो, कभी कभी मानसिक तनाव शारीरिक थकान से भी समस्या पैदा हो जाती है।
2: बिल्कुल। और कभी कभी भी जो ऐसा होता है ना, किसी रोग के लक्षण उत्पन्न होने पर अगर हमने जरा सी भी चूक कर दी या हमने लापरवाही बरत दी, तो समझो कि बीमारी जो है वो हमारे शरीर में अपना घर बनाने में देर नहीं लगाती है। फिर हम कितना भी सफाई दे दें कि अरे मुझे कैसे हो गया, हम तो बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ताज्जुब होता है कि हमें कैसे ऐसा हो गया, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि एक छोटी सी लापरवाही जो है वो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है।
1: बिल्कुल। और इसीलिए सभी बीमारियों से बचने के लिए दिवस मनाए जाते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता अवेयरनेस हो और समय रहते ही बीमारी का इलाज किया जा सके। जैसे कि आज हम हेपेटाइटिस जैसे रोग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज 28 जुलाई है और इस दिन को हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
2: और हेपेटाइटिस में होता क्या है, इसके बारे में आपको बता दें कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर या जिसको हम यकृत कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। ये मुख्य रूप से एक वायरस के कारण होता है और इसके प्रमुख प्रकार हेपेटाइटिस A, B, C, D और E हैं। और साथ ही जब ये बीमारी होती है तो इसके लक्षण इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे कि बार बार थकान महसूस होने लगती है, भूख कम लगने लगती है और उल्टी जैसी आने लगती है, हमेशा ऐसा होता रहता है, और पेट में बहुत दर्द होता है, आंखों और त्वचा का रंग जो है वो पीला पड़ने लगता है, साथ ही गहरे रंग के पेशाब होना जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसलिए अगर इस तरह के लक्षण, थोड़े से भी इनमें से लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तो तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए और चिकित्सक से अपने परामर्श करके इलाज शुरू करवाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसके लिए हेपेटाइटिस बी का टीका अवश्य लगवाएं, हमेशा साफ और सुरक्षित भोजन व पानी का सेवन करें, हाथों के नियमित सफाई रखें, केवल नई या पूरी तरह से स्टरलाइज्ड की गई सुई का ही उपयोग करें, और जब रक्त चढ़ाने की बात आती है तो ये भी देखें कि रक्त किस तरह से स्वच्छ है और आपके शरीर के हिसाब से है कि नहीं, ये आप डॉक्टर से जानकारी ले सकते हैं और तभी आप रक्त चढ़वाएं, और समय समय पर स्वास्थ्य जांच अवश्य करवाएं।
2: ये तो हर किसी को करवानी चाहिए। और साथ ही आप कोई भी दवाई ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से परामर्श करिए, अपने मन से या कहीं देख कर आप उस दवाई को मत लीजिए, वो नुकसान भी कर सकती है। और साथ ही हेपेटाइटिस का समय पर पता चल जाता है तो इसका इलाज भी संभव है, लेकिन लापरवाही करने पर ये लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए समय पर जांच, टीकाकरण

0: और सही जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी भी लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ जीवन के लिए अपने लीवर की सेहत का ध्यान रखना और बीमारी के प्रति जागरूक रहना बेहद जरूरी है। सही जानकारी, समय पर जांच, टीकाकरण और उचित उपचार के माध्यम से हेपेटाइटिस से बचाव और इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए इस दिन हम स्वयं जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस दोनों ही प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाए जाते हैं। ये दोनों दिवस वैश्विक स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्म दिवस पर वायरल जो होता है हेपेटाइटिस लीवर की सूजन जिसको कहते हैं उसके प्रति जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम और उपचार को बढ़ावा देना इसके लिए मनाया जाता है। और साथ ही हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई के खतरों से बचाना और समय पर जाँच और टीकाकरण कराना और बहुत ज़रूरी है, ये सब
1: बिल्कुल।
0: बातें बता रहे हैं।
1: तो आरती, कहना चाहिए कि आज के दिन या हर दिन अपने अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और जब भी कुछ लगे तो आप डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर इलाज कराएं, दवा
0: बिल्कुल
1: लें। और चलते हम लोग गीत की ओर, थोड़ा
0: बिल्कुल, एक
1: मौसम
0: गीत सुन लेते
1: गीत
0: हैं।
1: की ओर चलते हैं।

0: तो आरती, आज हम बात करने वाले हैं सखी विशेष में।
1: जी, तो पहले तो मैं उनकी कुछ एक बात कहना चाहती हूँ, उसके बारे में बताऊंगी वो कौन है। मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखने और खुले विचारों वाला होने में विश्वास रखती हूँ। इससे व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही ऐसे मित्र भी मिलते हैं जो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये कहना है गीता मंजुनाथ जी का। गीता मंजुनाथ एक भारतीय उद्यमी, कंप्यूटर वैज्ञानिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI विशेषज्ञ और निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स की संस्थापक, साथ ही CEO और CTO भी हैं।
0: और उन्होंने AI और मशीन लर्निंग की सहायता से स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए एक अभिनव तकनीकी भी विकसित की है। गीता मंजुनाथ का जन्म और पालन पोषण बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में स्नातक और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस में उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथ ही IISc से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा माइनिंग में PhD भी आपने की।
1: बिल्कुल, सोचिए कितनी इन्होंने पढ़ाई कर रखी है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के एक बड़े विद्यालय से प्रबंधन शिक्षा भी प्राप्त की। परिवार के दो सदस्यों को स्तन कैंसर के अंतिम चरण में खोने के बाद मंजुनाथ, गीता मंजुनाथ जी ने IT में अपना करियर छोड़कर एक ऐसा उत्पाद विकसित करने का फैसला किया जो इस बीमारी का जल्दी पता लगा सके, जिससे अनगिनत जानें बचाई जा सकें। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें अनुसंधान और नवाचार से बेहद लगाव है।
0: गीता मंजुनाथ इस बात पर विचार करने लगी कि स्तन कैंसर से इतनी सारी महिलाओं की जान बचाने के लिए वे क्या कर सकती हैं। वे अपने करीबी लोगों के साथ थर्मल इमेजिंग को पढ़ रही थी और उन्हें एक संभावित समाधान सूझा, और इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरों की मदद करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मंजुनाथ ने 2016 में बेंगलुरु स्थित अपनी कंपनी निरामयी की स्थापना की।
1: और इसका संक्षिप्त रूप है नॉन इन्वेसिव रिस्क असेसमेंट विद मशीन इंटेलिजेंस। ये एक संस्कृत वाक्यांश से भी लिया गया है जिसका मोटे तौर पर अनुवाद है सभी स्वस्थ रहें। निरामयी में थर्मालिटिक्स नामक एक सॉफ्टवेयर तकनीक है जो छाती पर तापमान के वितरण को स्तन कैंसर रिपोर्ट में परिवर्तित करती है। ये कई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम होती हैं उनका उपयोग करके किए गए विश्लेषण के माध्यम से ऐसा करती हैं, जिसे गीता मंजुनाथ ने थर्मल इमेजिंग पर आधारित, उनको AI कहती हैं वो।
0: और आरती, अब हम लोग इनके ऊपर और चर्चा करेंगे, लेकिन देखो धीरे धीरे समय हो चला है एक अंतराल का,
1: जी।
0: तो अंतराल के बाद एक बार फिर हम सबसे मिलेंगे, है ना। तो इसके साथ ही हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, इन्होंने क्या किया है, इनको पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं,
1: जी हाँ,
0: तो उसके
1: पहले
0: बारे
1: एक
0: में
1: अंतराल ले लेते हैं।
0: पहले एक अंतराल ले लेते हैं।

तो आरती अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत करते हैं, और हम लोग बात कर रहे थे गीता मंजुनाथ जी के बारे में। तो इन्हें जो है इससे हाल में ही FDA की मंजूरी मिली, जिससे निरामयी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा उपकरण के लिए अमेरिकी FDA से मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। अब तक

0: नीरा माइक को 28 पेटेंट मिल चुके हैं और इसने कई पुरस्कार जीते हैं। भारत और कई अन्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों में मैमोग्राम नियमित स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा नहीं है। गीता मंजुनाथ कहती हैं कि अक्सर महिलाओं को ये भी पता नहीं होता कि उन्हें मैमोग्राम की आवश्यकता है या
1: बिल्कुल
0: नहीं है।
1: बिल्कुल। और गीता मंजुनाथ के अत्याधुनिक नवाचार से, जो नवाचार वही जो उन्होंने इन्वेंशन किया जो उसका, उससे घने स्तन ऊतकों वाली महिलाओं के लिए भी एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैमोग्राम में ट्यूमर और घने ऊतक दोनों सफ़ेद दिखाई देते हैं, जबकि थर्मोग्राम में असमानताएं अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसके माध्यम से बिना दर्द, बिना स्पर्श, बिना रेडिएशन और कम लागत में शुरुआती चरण में स्तन कैंसर की पहचान करने में बहुत सहायता मिलती है, जिसकी वजह से उनका इलाज भी जल्दी संभव हो जाता है। और गीता मंजुनाथ को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि CSI से गोल्ड मेडल और BIRAC से विनर अवार्ड 2018 में, और फोर्ब्स इंडिया की टॉप सेल्फ मेड विमेन सूची में स्थान भी मिला हुआ है। इसके अलावा अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। AI और हेल्थ केयर के क्षेत्र में 15 से अधिक अमेरिकी पेटेंट उनको हासिल हैं।
0: बिल्कुल, और इतनी अच्छी सी जानकारी तुमने दी आरती, और इसका कहने का मतलब यही है कि हम महिलाएं जो हैं वो अपने बारे में बहुत लापरवाही कर देते हैं। तो अगर आपको कुछ कभी ऐसी कोई समस्या लग रही है, थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप अपना इलाज प्रॉपर कराएं, डॉक्टर के
1: बिल्कुल
0: पास जाएं, सारे टेस्ट होंगे, फिर आपको दवाएं इलाज शुरू होगा, दवाएं चलेंगी। तो
1: जी
0: कहना
1: हाँ
0: चाहिए कि आप परिवार का ध्यान रखती, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल। और मंजरी जी, मैं तो कहूँगी हमेशा आप रेगुलर एक थोड़े थोड़े समय पे अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए कि कोई परेशानी है तो नहीं, ताकि अगर कोई परेशानी है तो जल्दी उसका पता चल सके।
0: और हम लोग सुन लेते हैं गीत।
1: गीत

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती, देखो हम लोग बात करने वाले हैं विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर। प्रकृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सोचो, कल्पना करो क्या होगा, है ना?
5: इंसान तो नहीं रह सकता,
4: बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरत की चीज है। और प्रकृति में हम हैं, हम में प्रकृति है, ये केवल एक सुंदर वाक्य नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। धरती को भूमाता, नदियों को जीवनदायिनी, वृक्षों को देवतुल्य और सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऋषि मुनियों ने जंगलों में रहकर प्रकृति के बीच ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि वे जानते थे कि प्रकृति सबसे बड़ी गुरु है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आरती, तो मनुष्य का शरीर भी प्रकृति का ही एक रूप है, कहते हैं पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, तो उसमें एक हमारी प्रकृति भी है।
5: और हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल है, सांसों में वायु है, शरीर में ऊर्जा अग्नि से संचालित होती है, और पृथ्वी के अन्न से हमारा पोषण होता है। पंच महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना जो ये हमारा शरीर है वो प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का विस्तार है। इसलिए जब प्रकृति बीमार होती है तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, जीवन पर और भविष्य पर भी पड़ता है।
4: बिल्कुल, और आज के समय की बात करें तो हम इंसान प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। अंधाधुंध वृक्षों की कटाई, नदियों का प्रदूषण, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक धुआं और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिसका भयंकर परिणाम हमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और बढ़ते तापमान जैसी समस्याएं के रूप में हमें ये देखना पड़ रहा है।
5: बिल्कुल, और प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के सब कुछ देती है। शुद्ध हवा देती है, पानी है, फल फूल, औषधियां हैं, जीवन के लिए हर जरूरी चीज, हर संसाधन। बदले में वो केवल संरक्षण और संवेदनशीलता की अपेक्षा करती है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो बदले में वो भी हमें स्वस्थ जीवन, संतुलित जलवायु और समृद्ध भविष्य देगी।
4: बिल्कुल, और प्रकृति के संरक्षण के लिए बड़े अभियानों के साथ साथ छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेड़ पौधे लगाना, जल की बचत।

0: करना, बिजली का समझदारी से उपयोग करना, प्लास्टिक से दूरी बनाना, वर्षा के पानी का संचयन करना और जैव विविधता की रक्षा करना ऐसे कदम हैं जो आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, और प्रकृति इंसान, जीव जंतु, पक्षी, ये अलग अलग अस्तित्व नहीं है बल्कि एक ही जीवन धारा के रूप है। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो वास्तव में हम अपने आप को बचाएंगे। प्रकृति का सम्मान करना भविष्य का सम्मान करना है, क्योंकि प्रकृति में हम हैं और हम में ही प्रकृति है। यही विचार हमें पर्यावरण संरक्षण, संवेदनशील जीवन और सतत विकास की दिशा में प्रेरित करता है। और मंजरी, पता है पूरे इतने सारे, हमारी इतनी बड़ी जो अंतरिक्ष है, इतनी उसमें चीज़ें, इतने प्लैनेट्स हैं, है ना, इतने ग्रह हैं, लेकिन सिर्फ एक पृथ्वी ही है, चाहे वो छोटा सा हमें दिखता हो, एक वो पृथ्वी है जिस पर लकड़ी यानी कि पेड़ पौधे हैं, पानी है और जीवन है, है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो उस जीवन को हमें बचा के रखना है, अपनी एक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें पेड़ पौधों को, अपने जंगलों को बचाना बहुत जरूरी
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर हम हर दिन कुछ ना कुछ सोचें कि पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो सोचो कितने सारे वृक्ष हो जाएंगे। और पेड़ पौधे बहुत तेजी से भी बढ़ते हैं, तो अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये चीजें बचेंगी, सलामत रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: और
1: ये मौसम भी पेड़ पौधे लगाने का है।
0: बिल्कुल, वर्षा का जो मौसम होता है, इसमें आप अनगिनत वृक्ष लगा सकते, पौधे, बीजों का रोपण कर सकते, जिनसे पौधे तैयार होंगे, फिर आप लगा दें इधर उधर, तो वो बड़े बड़े पेड़ बन जाएंगे। और जब भी कोई फल खाए ना, तो उसको एक बार आप मिट्टी में दबा के देखिए, एक नन्ना सा पौधा तैयार होगा,
1: बहुत
0: जो
1: खुशी मिलती है
0: बहुत
1: उसे
0: खुशी
1: देख के।
0: मिलती है जब वो निकलता है। छोटा सा पहले बीज का आकार करेगा, फिर उसमें पत्ती कुछ दिन बाद खिलेगी, तो मन को बहुत भाती है वो चीज़ें। तो अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं, तो वहाँ पर वहाँ की हरियाली देखने तो जाते हैं ना, कि पहाड़ों पर
1: बिल्कुल
0: चले गए, चलो यहाँ की हरियाली देख लेते हैं। तो हमें रोज इसके बारे में सोचना है। और एक और ध्यान रखना है कि जब हम पौधे लगाते हैं, तो ये देखें कि उनको, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें, उन्हें जल देना है, उन्हें खाद पानी देना है, इसका भी ध्यान रखें, तभी वो बढ़ पाएंगे। अगर हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हम चले आए, हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा परिणाम
1: वो
0: बताओ?
1: सूख जाएगा, वो जो हमने लगाया बीज पता भी नहीं कहाँ अंदर, वैसा हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है उसकी देखभाल, सिर्फ लगाना ज़रूरी नहीं है, उसकी देखभाल भी ज़रूरी है। और जो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे सुनने वाले सखा हैं, सखियाँ हैं, वो सब भी लिख रहे हैं इसके बारे में, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि प्रकृति और पुरुष का एक साम्य विशेष है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक से दूसरे की उत्पत्ति है, किंतु जब दोनों में विभिन्न कारणों से असंतुलन होता है, तब उनके पारस्परिक संरक्षण की बात सामने आती है। वैसे तो एक वृक्ष को 100 पुत्र के बराबर कहा गया है, किंतु हम मनुष्य ही केवल अपने हित में विभिन्न कारणों से उनका दोहन किया करते हैं, तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। और ऐसे ही बिगड़े हुए असंतुलन को ही संतुलित करने हेतु आज का ये वैश्विक दिवस है, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज के दिन मनाया जाता है।
0: कितनी अच्छी सी बात हमारे साथियों ने लिखकर भेजी है।
1: ये तो सही है कि एक जो वृक्ष होता है वो 100 पुत्रों के बराबर होता है।
0: बिल्कुल। और भाई, बच्चों से भी तो आप वृक्षारोपण करवा सकते हैं, पौधे लगवा सकते हैं। आप छोटे छोटे गमले बनाइए और उसमें बच्चों को बोलिए कि तुम ये बीजा इसमें बो दो, ये इसमें बो दो। तो उससे भी क्या होगा कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आएगी कि हमने लगाया है, और वो रोज आकर के देखेंगे कि अरे ये पौधा बना कि नहीं बना। तो इस तरह बच्चों के अंदर भी एक उत्साह रहेगा और वो प्रकृति से प्रेम करने के बारे में सोचने और समझने लग जाएंगे।
1: और ये जो प्रकृति का प्रेम होता है ना, वो मतलब बहुत लोगों के साथ में ना होने से भी अकेलेपन को भी दूर करता है।
0: और आरती, इसी के साथ अंतराल का समय हो चुका है, तो मिलते हैं अंतराल के
1: जी
0: बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है और हम बात कर रहे थे प्रकृति की।
1: तो एक हमारे और साथी हैं जो लिखकर भेज रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में भी लिखा है उन्होंने कि इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वन और वन्य जीव की रक्षा करना और पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। प्रकृति का संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। संरक्षण के बिना जल, वन और वन्य जीव जैसे संसाधन लुप्त हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को रोकता है, जैव विविधता को बनाए रखता है।
0: तो आओ चलो पहले सुन लेते हैं गीत।

0: क्योंकि हमारे पास बहुत सारे संदेश आ गए हैं
1: उनको
0: आरती
1: देख
0: देख के झूम रहे हैं। तो चलो एक संदेश
1: देख
0: हम लेते हैं। हमारे साथी लिखते हैं कि प्रकृति जीवन का आधार है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है और सभी जीवों को स्वच्छ जल, वायु व भोजन प्रदान करती है। प्रकृति का संरक्षण इसलिए ही अनिवार्य है क्योंकि मानव द्वारा प्राकृतिक संरक्षण संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग और प्रदूषण से हमारी पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। वनों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग, औद्योगिक कचरा और वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा, पानी और जमीन को दूषित कर रहे हैं, जिससे जीव जंतुओं का जीवन खतरे में है और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रकृति को बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएगी, यही समझदारी है। बहुत खूबसूरत सी बात लिखकर भेजी है आपने। और हमारे कौर साथी लिखते हैं कि जो प्रकृति से करते हैं प्यार, वो इसके संरक्षण के लिए कैसे करें इनकार। जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं, तो फिर हम भी जिस प्रकृति या कुदरत के सानिध्य में रहते हैं, तब हमें उनकी संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी बनती है। इसका मुख्य उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, खनिज के साथ सभी वन्य जीवों से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारे सौराष्ट्र के गिर जंगल में बस रहे वन्य जीव जैसे कि गिर के सिंह अपने खुराक पानी की शोध में मानव बस्ती में आ जाया करने लगे हैं, जान माल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो भाई इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि उनकी देखभाल भी हम कैसे करें।
1: बिल्कुल। और वैसे भी जो प्रकृति का संरक्षण है उसको हमें पूरी सजगता के साथ अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि जब आप खुद के संरक्षण के लिए इतने सजग रहते हैं जैसे कि अभी उन्होंने बताया, तो हमें अपने प्रकृति के लिए भी उतना ही सजग रहना चाहिए, है ना। तो हम
0: बिल्कुल।
1: और बात करते हैं प्रकृति संरक्षण के हमारे को साथी हैं जो हमें वही चीज़ बता रहे हैं भी, जैसे कि 28 जुलाई है तो प्राकृतिक संसाधनों यानी कि जल, जंगल और वन्य जीव के संरक्षण और पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति का संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: और इसके साथ साथ लिखते हैं कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यह हमें संदेश देता है कि प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर भी है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जंगल और वन्य जीव प्रकृति के हर रूप में अपना महत्व है। आज विकास की दौड़ में पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जल और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारी धरती सदैव हरी भरी, सुंदर और जीवनदायिनी बनी रहे।
1: बिल्कुल बनी रहेगी जगह अगर हम लोग जागरूक रहेंगे तो। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ भाई बहनों की, है ना, कुटाई पिटाई की।
0: बिल्कुल। हमारे साथी देखो लिखते हैं कि एक उन्होंने कविता लिखी है और ये तो अब वो ही बता सकते हैं कि कविता किसकी लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ती हूँ। भाई बहन की, भाई बहन में हुई लड़ाई, घर में मची खूब दुहाई, किसने किसकी बात न मानी, किसने अपनी बात मनानी, दोनों ने फिर शोर मचाया, मम्मी ने आकर डांट लगाया, लड़ते लड़ते दोनों घबराए, आखिर किसकी हुई पिटाई। भाई बोला बहन ने मारा, बहन बोली भैया ने मारा, मम्मी बोली चुप हो जाओ, दोनों आकर गले लग जाओ, लड़ाई पल में प्यार बनी, हंसी खुशी फिर बात बनी, भाई बहन का रिश्ता न्यारा, लड़ते हैं फिर भी सबसे प्यारा।
1: सच में। और हमारे एक और साथी हैं जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई, मेरी तो कभी अपने भाई से लड़ाई नहीं हुई, हाँ मेरी बहन की भाई से बहुत लड़ाई होती थी, हम दो बहनों से, भाई छोटा था उन दिनों और उन दोनों में लड़ाई तो बहुत होती थी, पर बेचारा मेरा भाई बहन के हाथों खूब पिटता था। मेरी बहन थोड़ी सी लड़ाकू टाइप की थी तो ना तो कोई उसे जीत सकता था, और अभी भी उनका नेचर ऐसा ही है, वो कहती हैं तो यानी कि आपकी पिटाई होने हो सकती है आज। आपने लिखा है उनके बारे में बताया हाँ। तो इस वजह पे
0: और हमारे साथी लिखते हैं बचपन में हर भाई बहन की तरह हम भी छोटी छोटी बातों पर बहुत लड़ते थे। मैं बड़ी थी, भाई छोटा था, लेकिन बचपन में हम दोनों बहुत लड़ते थे। मैं जब भी रोटी बनाती तो मेरी चोटी पकड़ लेता, कहता तूने रोटी कच्ची रख दी है और सेक मतलब मैं कहती सही सीखी है, टेबल एक ही हुआ करती थी, पढ़ने का टाइम दोनों का एक, तो टेबल के लिए लिए लड़ाई कभी अपनी सहेली के जाती मम्मी से पूछकर तो आते ही कहता जरूर पिक्चर देखने गई थी। शोर ऐसा मचाता कि पूछो मत बस। लेकिन मम्मी पापा के सामने दोनों एकदम चुप सीधे सादे बन जाते। लेकिन हमारी कभी पिटाई नहीं हुई, हाँ प्यार से समझाया जरूर गया, कभी हल्की सी डांट मिली कि भाई छोटा है।
1: ये अक्सर होता है, जो छोटा होता है ना उसको ये एक फायदा मिलता है ना कि सब कहते हैं ये छोटा है इससे तुम मत करो। और एक और मेरे साथी जो कहते हैं कि भाई बहन की लड़ाई तो बहुत कम हुई बच

0: बचपन में छोटी छोटी छोटी सी बातों पर हम लड़ लेते थे। वैसे मैं बचपन से ही दीदी के साथ खेलता था, तो बहुत कम ऐसा होता था कि लड़ाई हो, और अगर होती भी थी तो दीदी के हाथों की लगती भी नहीं थी मार।
1: तो चलो एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो देखो आरती, कितना प्यारा सा ये गीत था। और हमारे साथी भी देखो एक संदेश में लिख रहे हैं कि भाई बहन की लड़ाई में किसकी कुटाई हुई, इस पर इतना ही कहूँगा कि मेरी तीन बहनें जो मुझसे बड़ी हैं वो तो माता पिता के साथ साथ वो भी हमेशा मेरे अभिभावकों की भूमिका में रहती थी, और आज भी जब माता पिता नहीं है तो अब और ज़्यादा उसी रूप में साथ निभा रही हैं। लेकिन मुझसे एक बहन छोटी जिसके साथ बहुत खेला हूँ, चाहे कांच की गुड्डे गुड़िया के खेल हों या काना गोटी चपेटा वगैरह, पतंगबाजी हो, हर खेल में साथ रहे हर, और झगड़े भी, लेकिन झगड़ा मुंह जबानी होता था, झूमा झटकी या कुटाई की नौबत तक नहीं पहुंचा, खेल जरूर बिगड़ जाता था और फिर माँ की डांट खानी पड़ती थी। कितनी
1: एक और हमारे
0: सुन
1: साथी हैं मंजरी, जो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में मेरी ही कुटाई ज्यादा हुई है, क्योंकि मेरी दीदी बड़ी हैं और हमारे खानदान में बड़ी ही हैं, और सभी का स्नेह जैसे कि चाचा चाची दादी पापा और मामा और माँ, सभी का प्रेम जो न्योछावर था। मुझे याद है बचपन में जब माँ मुझे कहती कि दीदी को उठा दे, तो मैं दौड़ते हुए उसके ऊपर कूद जाया करता था और जोर जोर से कहता था, माँ दीदी मर गई। और जब माँ आकर के जो कुटाई करती थी, ऐसे नहीं बोलते, और कभी अगर पापा के सामने हाथ उठता था तो दीदी पर तो पापा की तरफ से कुटाई होती थी, लेकिन मेरी दीदी अभी तक हमें बहुत प्रेम करती हैं।
0: क्या बात है। और आपस में भाई बहन

0: में जब लड़ाई होती थी तो तुरंत से ही वो सुधर भी जाती थी, और फिर तो हम एक दूसरे को आपस में ब्लैकमेलिंग बहुत चलती थी, और अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो मैं तुम्हारी बात बोल दूंगी, ऐसा हमारे संदेश ने लिख साथी ने लिखा है। और ऐसी बातें होती भी थी, आपस में लड़ाई झगड़ा होता तो यही होता तुम्हारी पोल खुल जाएगी,
1: ये तो
0: है
1: है।
0: ना। तो एक लिखते हैं कि मेरी ताई जी की बेटी के साथ मेरी बहुत लड़ाई हुआ करती थी, पर हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार भी बहुत करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, इतना लड़ते थे कि एक दूसरे के बाल हम नोचते लोग नोचते तो वो हम लोगों के साथ हाथ में आ जाया करते थे, ज़रा ज़रा सी बात पर झगड़ा हो जाया करता था, एक ही थाली में खाना खाते, दाल ख़त्म हो गई और लानी है तो लड़ाई, तुम जाओ चौके से लेकर आओ, किसी ने पानी मांगा तो झगड़ा, हम ही क्यों लाएं, तुम नहीं ला सकती हो, बेसिर पैर के झगड़े, और आज ये सब याद आ गए हैं, है ना।
1: बिल्कुल, यही चीज़ तो है। ये तो खूबसूरती भी ऐसी चीज़ के लिए भाई बहन की।
0: बिल्कुल।
1: और एक हमारे जो श्रोता हैं जो लिखती हैं कि घर में एक सार्वभौमिक नियम होता है, जो बड़ा है वही दोषी है। लड़ाई चाहे छोटे ने शुरू की हो या बड़े ने, डांट हमेशा बड़े को ही पड़ती है। मम्मी का एक पेटेंट डायलॉग होता है, तुम बड़े हो तुम्हें समझ होनी चाहिए। नतीजा क्या होता है कि बड़ा भाई या बहन बिना गलती के भी सूद दिए जाते हैं, या कम से कम डांट के भागीदार तो बनते ही हैं।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं, ये तो सबको पता है कि भाई बहनों की लड़ाई कोई किले जीतने के लिए नहीं होती, बस मिनट या 2 मिनट मामूली सा विवाद, फिर कुछ देर बाद सुलह, अक्सर हम करके हम भाई बहनों की लड़ाई में भी मेरी ही हार होती थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें एक टीम बना लिया करती, उनकी एकजुटता के आगे मैं बिल्कुल भी टिक नहीं पाता था और कुछ ही देर में सरेंडर कर देता था। कुल मिलाकर बहुत मज़ेदार सुनहरी यादें हैं बचपन की, जो भुलाए नहीं भूलती
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि भाई बहन की लड़ाई में पिटाई तो भाई की ही होती थी। एक तो हम लड़कियां रोने धोने में माहिर होती हैं, दूसरा मेरे सब भाई मुझसे बड़े थे तो इसका फायदा उठाकर हम विक्टिम कार्ड खेलते थे कि उसके हाथ कितने बड़े हैं, मुझे यहाँ लग गई, उसकी धक्का मुक्की में मैं गिर पड़ी, क्योंकि मैं तो छोटी हूँ उससे कमजोर हूँ। पर बड़े होने के बाद उसी भाई से पक्की वाली ऐसी दोस्ती हुई कि आज भी हमेशा उसके साथ में खड़ी रहती हूँ।
0: क्या बात है। चलो एक गीत सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: तो भाई आरती देखो पेट में चूहे कूद रहे हैं, है ना। जब बहुत भूख लगती है तो कहते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसमें हमारे साथी क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं कि चूहे दौड़ना मुहावरे का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब हमें बहुत तेज़ भूख लगी हो। यदि कोई, जैसे यदि कोई व्यक्ति सुबह से बिना कुछ खाए काम कर रहा है और दोपहर तक उसे बहुत ज़ोर की भूख लग जाए, तो वो कह सकता है सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। इसका अर्थ है कि उसे बहुत तेज़ भूख लगी है।
1: बिल्कुल। एक हमारी साथी जो लिखती हैं कि पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोलकर खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई, मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई। उस समय हमने जाना कि सच में पेट में चूहे कूदना किसे कहते हैं।
0: बिल्कुल। और ये अक्सर ये चीज़ें हो ही जाती हैं ना।
1: बिल्कुल। और एक और हमारे जो साथी लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना, भाई पेट है तो फिर चूहे तो दौड़ेंगे ही ना, अरे भाई उसे राशन पानी चाहिए ना चलने के लिए। इसलिए पेट में भूख का आकलन इस मुहावरे से किया जाता है, जिसका अर्थ है कि भूख की तीव्रता को प्रदर्शित करना। और भाई साहब अब तो वास्तव में ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए अब तो बस हाँ लीजिए भोजन आ गया, यानी कि वो भोजन कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम सुनते सुनते।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं, ऐसा तो होता नहीं, ऐसा हो जाए अगर घड़ी भर सोच लो, अगर वास्तव में पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो हमारा क्या हाल होता है। वैसे तो ये मुहावरा अत्यधिक भूख लगने पर ही प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा यानी भूख लगने या किसी ख़ास चीज़ का इंतज़ार करने पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे कि सखी सहेली सुनने के लिए कान में चूहे दौड़ रहे हैं, क्या बात
1: अच्छा
0: है।
1: जी।
0: जी
1: तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि हम अभी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, दिन का समय है और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से मैं बार बार 2-3 बार गुजारिश कर चुका हूं कि घर का खाना बना दें, बना हुआ कुछ खाना खाने को दे दें मुझे, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। परंतु धर्म पत्नी जी मस्त कंबल डालकर AC कोच में सो रही हैं और आप ही मेरी धर्म पत्नी से आप सिफारिश कर दीजिए कि मेरे पेट के चूहे थोड़े शांत हो जाए,
0: भाई,
1: तो
0: हमने
1: बिल्कुल प्लीज कल उनको खाना दीजिए
0: तो
1: कृपया।
0: बिल्कुल हम लोग कह रहे हैं यहाँ से कि आप खाना खिला दीजिए।
1: बिल्कुल।
0: और एक साथी लिखते हैं, पेट में चूहे दौड़ना, बेहद भूख लगना, हमको याद आ रहा है वो दिन जब हम स्कूल में टिफिन खोले खाने ही वाले थे कि एक स्टूडेंट दौड़ती हुई आई और मुझसे टकराती हुई भागकर चली गई, मेरा खाना गिर गया और मैं भूखी रह गई, और उस समय हमने सच में जाना कि पेट में चूहे कैसे दौड़ते हैं। तो आरती ने इशारा किया है कि मैं तो इसको पढ़ चुकी हूँ, तो कोई बात नहीं। चूहे, और एक साथी लिखते हैं कि चूहे के दांत लगातार बढ़ते रहते हैं, इस कारण उनकी मजबूरी होती कुछ ना कुछ चबाते रहना। हमारी पेट की अग्नि भी कुछ इसी तरह से होती है, लगातार कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते हैं, इसलिए इसे जोड़कर ये मुहावरा बन गया है, पेट में चूहे दौड़ना, है ना।
1: और जो एक और मैं श्रोता जो लिखते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना यानी कि बड़ी जोर से भूख लगना, इसके लिए गुजराती मुहावरा भी है कि कड़कड़ी भूख लगी है, भूख न जाने लिखूं पाखूं, ऊंघ न जाने ऊंघ न गने उकरणों। जब भूख लगती तो बनाए हुआ कुछ भी खा लेते हैं और जब नींद आती तो कहीं भी सो जाते हैं।
0: तो चलो एक किसी बात पर एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

तो आरती देखो, बातें करते करते समय तेज़ी से आगे बढ़ चला है और समाप्त की ओर हम लोग आ गए हैं। बहुत सारी हमने बातें करी, तो इसमें ख़ास बात यह है कि भाई पेट में चूहे दौड़ने तो समय पर आप खाना खाएं, और प्रकृति की बात करें तो आप पेड़ पौधे लगाएं, जीवन सुखमय बनाएं।

0: तो आरती देखो, बातें करते करते समय तेजी से आगे बढ़ चला है और समाप्त की ओर हम लोग आ गए हैं। बहुत सारी हमने बातें करी, तो इसमें खास बात यह है कि भाई पेट में चूहे दौड़ने तो समय पर आप खाना खाएं, और प्रकृति की बात करें तो आप पेड़ पौधे लगाएं, जीवन सुखमय बनाएं।
1: और
0: और क्या पढ़ना चाहती हो तुम?
1: एक है जो साथी, उन्होंने लिखा है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर विविध भारती ने जो अकेलेपन में साथ दिया है, दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पहले रेडियो पर सुनती थी, अब तो मोबाइल में ही डाल दिया है मेरे नाती ने। जब उनकी फीस ज़्यादा थी, अब मैं खुश हूँ और सखी सहेली सुनकर घर बैठे अपडेट रहते हैं।
0: क्या बात है, विविध भारती सुनते रहिए और हम लोगों को दीजिए अनुमति। तो आरती श्रीवास्तव और
1: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

पिछले हफ्ते आज ही के दिन आपने सुनी थी आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। चलिए आज इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।

0: नौकरी, आर्मी की नौकरी छोड़ के जा रहा है बेवकूफ, वो भी दूसरी बार। उनको हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक बार हार के आता ना आदमी तो हिम्मत नहीं होती। किसने हिम्मत दी? मेरी सिस्टर पैदा हुई, सुमन पप्पी। जब
1: उनकी
0: सुमन
1: पहली संतान यानी आप लोगों की
0: बड़ी
1: सबसे बड़ी बहन।
0: बहन सुमन जब पैदा हुई तो 1956, उनको ये था कि मुझे बंबई जाना है। वो उनको आदत थी डायरी लिखने की, तो उन्होंने लिखा था कि मैं बंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन बंसी वाले का इशारा नहीं आया। बंसी वाला इशारा करेगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। इस बार अगर मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी तो ये वापस भी नहीं लेंगे, और शादी भी हो गई अभी, तो जिम्मेदारी आ गई है। तो बंसी वाले का इशारा होगा मैं तब जाऊंगा।
1: ये इशारा कब
0: ये
1: हुआ?
0: इशारा हुआ 15 मई 1956 व्हेन सुमन वाज बॉर्न। उनको याद आया कि दादी कहती थी, क्योंकि दादी ने बड़ा किया ना, उनको याद आया कि दादी कहती थी कि कुड़ियां पियो के लिए गुड़ लग लांदी हैं।
1: वाह वाह
0: मतलब एक
1: वाह,
0: जो लड़की आती है ना घर में
1: पिताजी
0: लक्ष्मी,
1: के लिए
0: वो
1: नसीब लाती है।
0: पिताजी के लिए नसीब लाती है, क्योंकि वो दुर्गा होती है। दुर्गा इज द फाइनल पावर। तो
1: ये
0: ये
1: इशारा
0: उनको
1: था।
0: याद आया, उन्होंने कहा ये इशारा मिल गया, अब तू वापस नहीं आएगा।
1: इस बार नौकरी पूरी छोड़ दी। द ईयर वॉज 1956।
0: 56, फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे।
1: गजब।
0: मैंने एक बार डैडी को पूछा कि डैड हम लोग चार हैं, दो भाई दो बहन, आपका फेवरेट चाइल्ड कौन सा है? ही सेड पप्पी,
1: सबसे बड़ी बेटी।
0: सबसे बड़ी बेटी। तो आई सेड क्यों क्यों, वो क्यों फेवरेट है, उसने क्या किया है जो हमने नहीं किया है? ही सेड उसने मेरी गरीबी देखी है, तुम तीनों मेरे अमीरी के बाद पैदा हुए थे, तुम्हें पता ही नहीं गुर्बत क्या होती है।
1: कमाल की बात कही है।
0: ही सेड मैं इसके लिए कंपस बॉक्स भी नहीं लिख सकता था।
1: ये नौबत उस लड़की ने देखी है।
0: 13 साल, 14 साल,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरी सेवा करो जिंदगी भर, कुछ भी करो, लेकिन वो जो उसने जिंदगी देखी है तुम ख्वाब में नहीं देख सकते।
1: इतना प्यार था बड़ी बेटी से।
0: आप जिसको डिनाय करोगे ना, उसको आप कभी भूलोगे नहीं।
1: बंबई में क्या हुआ जब वो यहां आए? कहां रहे? और वो
0: वो अलग
1: रेल,
0: अलग गेस्ट हाउस में, अलग अलग,
1: बल्कि एक बार तो रेलवे वेटिंग रूम में लंबे समय तक रहे।
0: हाँ वो वेटिंग, जब वो पहली बार बंबई आए थे, उन्होंने कृष्ण भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी, मेरे प्यारे बंसी वाले। उसमें उन्होंने कृष्ण भगवान को कहा था कि आप देखिए ये बहुत जरूरी है सुनना, आप जानते हो दादागिरी क्या होती है, चाहिए अपने को भाई।
1: हाँ
0: उन्होंने उस चिट्ठी में क्या लिखा है
1: जी
0: जो हमने
1: जी
0: छापी है, आपने ट्रांसलेट किया उसको?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लिखा है मेरे प्यारे बंसी वाले, ये जो सपना है ना, गीत लिखूं, गीत गाऊं, गीत को परफॉर्म करूं, गीत की धुन बनाऊं, ये तूने मेरे आंखों में डाले, अब तू उसको पूरा करेगा।
1: क्या प्यारी बात है यार। वाह वाह वाह वाह वाह
0: मांगा नहीं है, आप
1: वाह।
0: सोचो पूरी दुनिया मांग रही है, अरे मेरे को ये दे दे भाई, मैं इतने ये दे दे तो मैं ये फास्टिंग करूंगा, ये दे दे तो मैं यहाँ चढ़ा। अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात, वो भी चलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन यहाँ एक आदमी है जो कृष्ण भगवान को बोल रहा है तूने ये सपना डाला ना मेरे आंख में, अब तू पूरा कर इसको।
1: तो कृष्ण पर उनका इतना ज्यादा विश्वास था, इतनी भक्ति थी कि पर्स में भी कृष्ण होते थे, और कई बार उन्होंने बंसी वाले को चिट्ठियां
0: हाँ,
1: लिखी।
0: बड़ा नटखट है तू,
1: कृष्ण
0: कृष्ण
1: कन्हैया,
0: कन्हैया
1: क्या
0: क्या
1: बात है! ये गाना भी
0: करे।
1: बख्शी साहब
0: और
1: का
0: सर
1: है।
0: वो गाने में एक जो मेरा जो फेवरेट वर्स है ना,
1: हाँ
0: मेरे जीवन का तू एक ही सपना, जो कोई देखे सोचे समझे वो अपना। सर ये क्या
1: वाह
0: लाइन है यार, आप सोचो
1: वाह
0: हम क्या
1: वाह।
0: कहनी चाहते हैं लोगों से कि मुझे गाड़ी मिल जाए ऐसे, या मुझे ऐसे धंधा मिल जाए, लेकिन यहाँ ये बोल रही है कि मेरा बच्चे का एक, मेरे लिए मेरे बच्चे के लिए एक ही सपना है, इसको जो मिले ना, सोचा यार इसका आज मेरा होता,
1: क्या
0: इससे
1: बात
0: बड़ी
1: है!
0: दुआ है क्या दुनिया में?
1: नहीं
0: हाँ
1: नहीं
0: बी
1: क्या
0: माई फ्रेंड।
1: गजब का ख्याल है
0: वो
1: ये!
0: गाने में कहीं नहीं लिखा कि मेरा बेटा राजा बन जाए, या मेरा बेटा गाड़ी ले ले बड़ी, जो देखे समझे अपना, यार ये तो मेरे जैसा है, अपना ही जैसा है यार।
1: वाह वाह वाह वाह।

0: नहीं।
1: पत्नी को फिर छोड़ के लखनऊ और बंबई जाना पड़ा।
0: अरे खूब वाली पड़ी।
1: अच्छा,
0: दिमाग खराब हो गया आपका, क्योंकि तू बीवी को छोड़ के जा रहा है। बुरी बात थी कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में क्या मिलता है? सेफ्टी फॉर द फैमिली, पेंशन।

0: बख्शी साहब को माय सीनियर, ही वाज माय सीनियर इन माय जॉब, आई वाज असिस्टेंट डायरेक्टर, ही वाज द चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, शाकिर खान. शाकिर खान ने बख्शी साहब का इंटरव्यू लिया सुभाष जी के लिए. क्वेश्चन सुभाष जी ने पूछा था बख्शी साहब को कि बख्शी जी आपको कब लगता है कि आप फेल हो गए हो एज अ राइटर. सर मुझे जब भी मुझे कोई बोलता है ना कि ये गाना मैंने सुना मुझे लगा ये बख्शी साहब ने लिखा है, मुझे लगा मैं फेल हो गया हूँ.
1: गजब.
0: क्योंकि एज अ लिरिसिस्ट माय वॉइस हैज टू बी हिडन. अगर मेरी आवाज लग रही है आपको इस गाने में कि ये लव्स बख्शी साहब के हैं तो ये वो मेरा फेलियर है.
1: क्योंकि वो कैरेक्टर का गाना नहीं लग रहा है.
0: कैरेक्टर गाना नहीं लग रहा.
1: बहुत गहरी बात है.
0: इसलिए वो मिलन फिल्म में वो गाना डिलीट करवाया बख्शी साहब ने. मिलन फिल्म में गाना है नूतन का जो डिलीट किया, लता जी का गाना है. यूट्यूब में आपको उसका वीडियो नहीं मिलेगा कहीं भी. तो मिलन फिल्म लगी, देखी उन्होंने, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं,
1: मुस्कुराने चले थे मगर रो
0: पड़े. तो जब फिल्म देखी प्रीमियर में, बख्शी साहब घबरा गए. गिवन एंड टोल्ड द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर को बोला कि ये गाना निकाल दो फिल्म से, फिल्म रिलीज हो गई है तो क्यों निकालूं, ये गाना मैंने गलत लिख दिया. तो कैसे गलत लिख दिया, कितना अच्छा गाना है सर, दैट कैरेक्टर इज अनएजुकेटेड, शी कैन नॉट स्पीक सच हाई लिटरेचर वर्ड्स. प्रोड्यूसर को बोला है

0: लिसन टू हिम, ही इज टॉकिंग सेंस, क्यों वो सब इंग्लिश में बात करते थे साउथ वाले.
1: साउथ की फिल्म थी.
0: ही वॉन्ट्स टू रिमूव द सॉन्ग, ही इज द राइटर ऑफ द फिल्म. वाई वॉन्ट टू रिमूव द सॉन्ग, ही थिंक दिस इज नॉट माई वर्ड्स, दिस आर माई वर्ड्स, दिस नॉट द वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर. उसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है उस, ये वर्ड्स बोल ही नहीं सकती वो.
1: क्या
0: आज
1: बात,
0: दिल पे कोई जोर चलता नहीं. मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े.

0: एक बार हमारे घर में पार्टी हुई थी, डैडी के दोस्त का बर्थडे था, मिस्टर वीके मेहता, तो बख्शी साहब ने गाना गाना शुरू किया, तो एक लाइन गाए और वीके मेहता साहब ने बोला बख्शी साहब ये बहुत सैड गाना है, इसको मत बजाइए, खुशी का माहौल है। तो बख्शी साहब ने रविंद्र टैगोर को कोट किया, और हमारे घर में डैडी जब तक थे रविंद्र टैगोर की फोटो
1: जी
0: हमारे हॉल में थी, रविंद्र टैगोर की फोटो, ही सेड टैगोर ने कहा है द हैप्पीएस्ट सॉन्ग्स आर द सैड सॉन्ग्स, क्योंकि जब तक आपके आंख से आंसू नहीं निकलेगा यू विल नॉट स्माइल, टियर कम्स फॉर यू टू स्माइल।
1: आंसू जो है वो मुस्कानों के लिए रास्ता बनाते हैं,
0: आंसू मुस्कान के लिए रास्ता बनाते हैं। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि आंसू मुस्कान का रास्ता है।
1: जब बंबई आए और अलग अलग जगह स्ट्रगल कर रहे थे तो एक टिकट चेकर ने उन्हें पकड़ लिया।
0: अरे कमाल है वो तो,
1: वो कहानी बताइए।
0: जय हो, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मैं भूमि अग्नि वायु आकाश जल ईश्वर का नाम लेता हूँ, साथ में चित्रमल जी का नाम लेता हूँ, हमारे पितरों का नाम लेता हूँ, एंसेस्टर्स, और चित्रमल जी का। चित्रमल जी कौन है? वेस्टर्न रेलवे टिकट कलेक्टर थे। जब 6 महीने में वो हार गए सेकंड टाइम, पैसे खत्म हो गए, तो वापस उन्होंने सोचा अभी तो वापस जाना पड़ेगा, तो वो मरीन ड्राइव स्टेशन में जाके बैठ गए कि यहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा, दादर जाऊंगा, फिर दादर से सीधा डायरेक्ट फ्रंटियर मेल या पंजाब मेल पकड़ के वापस लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में मैके छोड़ के आए थे मम्मी को और बेटी को, तो वहाँ पर एक टिकट कलेक्टर आया, उन्होंने पकड़ा बख्शी साहब को,

0: बोला टिकट दिखाओ। बोला टिकट नहीं है। फाइन भरो। तो बोला फाइन के लिए पैसे नहीं है। बोले भाई टिकट के पैसे नहीं है, फाइन के भी पैसे नहीं है। कौन हो तुम, क्या करते हो, क्या लिख रहे हो इधर बैठ के? मैं देख रहा हूँ तुमको, मैं 4-5 चक्कर लगाया हूँ, तुम इधर बैठ के कुछ लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, बस सुनाओ। बोले मैं कविता लिख रहा हूँ। अच्छा कविता लिख रहे हो? वो कविता का शौकीन था, फिल्मों का शौकीन था, उसका
1: जी
0: हर गाना मालूम था। आप देखो क्या चमत्कार है ईश्वर का। अपना आगरे के रहने वाले, क्या कर रहे हो? बोले मैं गीतकार बनने आया था, वापस जा रहा हूँ। क्यों वापस जा रहे हो? काम नहीं मिला। अच्छा क्या लिख रहे हो उधर, आज क्या लिखा है सुनाओ। सुनाया। अच्छा कुछ और सुनाओ। और सुनाया। 3-4 उसने कविता सुनी बख्शी आपकी। बोले तुम वापस मत जाओ। तो बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है रहने के लिए बम्बई में। तुमने जो लिखा है वो जो आज के बड़े बड़े गीतकार है उसके लेवल का है। मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ गाने, मुझे पता है कि आप तुमने ये तुम्हारी बहुत अच्छी लिखा है, मेरे को लगता है कि तुम्हारा हो जाएगा इधर इस शहर में, लेकिन मैं रहूँगा कहाँ, ये तुम मेरे साथ रहो। घर ले गया उनको, 3 साल रखा उसने घर पे।
1: बोरीवली में
0: हाँ पैसे भी नहीं लिए,
1: तो
0: और
1: चित्रमल
0: जिंदगी भर
1: स्वरूप
0: मरते
1: जी,
0: तक दम तक पैसे नहीं मांगे बख्शी साहब से कभी।
1: चित्रमल स्वरूप जी बख्शी साहब को अपने घर लेके आए। अब एक आसरा हो गया, यहां से स्ट्रगल किया जा सकता था।
0: हाँ
1: मैंने
0: करेक्ट।
1: सुना है कि वो उनको जेब खर्च भी दिया करते थे।
0: हाँ कभी कभी कुछ 5-10 पैसे या 50 पैसे 25 पैसे दे सके, या आज स्ट्रगल करके आके इधर नौकरी काम ढूंढ के आया वो हिसाब से। तो उनका एक बड़ा अच्छी पॉलिसी थी, उनको था कि मैं रोज जब तक 5 लोगों को नहीं मिलूंगा घर नहीं जाऊंगा वापस। एक बार वो अपना फिल्मिस्तान स्टूडियो में उनको मिले, रोशन साहब को। बहुत कोशिश की, रोशन साहब को नहीं, रोशन साहब नहीं मिलते थे। यू वॉज अ वेरी बिग स्टार एट दैट टाइम रोशन
1: बिल्कुल
0: साहब,
1: बिल्कुल
0: 1956। रोशन साहब ने ऐसे ही बोला अच्छा अच्छा ठीक है तुम कल सुबह आ जाओ मेरे घर पे। मेरे साहब आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने लिख के दिया लिंकिंग रोड सेंटा क्रूज, लिख के एड्रेस लिख के दिया, तुम कल सुबह 10 बजे आ जाओ, जो तुमने कविता लिखी मैं सुन लूँगा। तो चले गए वापस बोरीवली और ज्वालानगर। तो वहाँ चले गए और ज़बरदस्त बारिश हुई, जैसे बम्बई में बारिश हुई 2 दिन वैसे, और पूरा पानी भर गया। इतना पानी भर गया कि ट्रेन तो बंद हो जाती थी तब, बहुत जल्दी ट्रेन बंद हो गई और BST बस भी बंद हो गई। अब बोले यार ये तो 10 बजे का टाइम दिया इसने, अभी आर्मी में थे तो उनको आर्मी में जब सुबह ले जाते थे ना मार्चिंग या रनिंग, तो उनको पता रहता था कि इतने हमको इतने किलोमीटर इतने टाइम में कवर करने के लिए हमको इतने स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कैलकुलेट किया अगर मैं बोरीवली से सेंटा क्रूज लिंकिंग रोड वेस्ट चल के जाऊँ तो कितने घंटे लगेंगे। तो वो हिसाब से उन्होंने चलना शुरू किया बरसात में, और रास्ते में छतरी भी टूट गई। बिल्कुल 10 बजे उन्होंने घंटी बजाई, उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो बोले भाई कौन हो तुम? पूरे अजीब सा आदमी, पूरा गीला, कपड़े गीले, किताब गीली, ऐसे खड़ा है। बोला मुझे साहब ने, सर ने बुलाया, रोशन सर ने बुलाया। अच्छा ठीक है, रोशन साहब आए। बोला अरे भाई क्या हो गया, आपने मुझे बुलाया था,
1: पागल हो
0: इतनी
1: गया।
0: बरसात में क्यों आए तुम? इसे आपने मुझे बोला था ना आने के लिए, आप मेरा गाना सुनेंगे। इसे हाँ लेकिन इतना ज़रूरी नहीं था।
1: हाँ उन्होंने कहा बख्शी तुम पागल हो क्या।
0: हाँ तुम पागल हो क्या तुम? इसे सर आपके लिए ज़रूरी नहीं था, मेरे लिए ज़रूरी था।
1: क्या
0: वो
1: बात
0: सारा
1: है।
0: एकदम चौंक गया हुआ आदमी, उसको लगा कि सारा ये तो अलग ही आदमी है। उसने टोलिया दिया, उसको पहले सुखा किया, चाय पिलाई, बोला अच्छे सुनाओ, तो
1: हाँ
0: उन्होंने उनको बेदाग फिल्म में गाने दिए।
1: वाह वाह वाह वाह, यहां से
0: और
1: शुरू होता
0: बेदाग
1: है
0: के गाने क्यों ज़रूरी हैं,
1: जी।
0: ये जो किस्सा है क्यों ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि उनकी भला आदमी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। फ्लॉप आदमी को काम नहीं मिलता हमारी इंडस्ट्री में, चढ़ते सूरज को सलाम है। रोशन साहब ने उनको जो लिया ना फिल्म में, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि यार ये कौन है, तो उनको काम मिलना शुरू हुआ।
1: सोचिए कि शकील के नगमे थे,
0: तो
1: उसमें बख्शी साहब को बीच
0: जब
1: में मौका
0: राजेश
1: मिला था।
0: रोशन हमारे घर आए 1970 में जूली फिल्म के गाने लिखवाने, तो राजेश रोशन की ये लफ्ज़ हैं, कभी आप उनको मिलेंगे तो पूछना कि तुम्हारे डैडी ने मुझे बोला था कि तेरे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तू रोशन का बेटा है, तेरे फादर ने मुझे सेकंड चांस दिया था इंडस्ट्री में।
1: वाह
0: और
1: वाह,
0: उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने भूल गया सब कुछ, कुछ 2-3 हफ्ते लिए गाना लिखने में, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते, लिखते और फाड़ देते। बोला मैं पक गया, मेरे को लगा बख्शी साहब गाना लिखना भूल गए हैं, लेकिन जब बख्शी साहब ने मुझे गाने दिए, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग दिए मुझे जूली में, और इतनी मेहनत की बख्शी साहब ने मेरे लिए कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, कि बिकॉज आई वॉज रोशन सन,
1: कितनी
0: इतना
1: इज्जत।
0: बड़ा काम किया होगा रोशन साहब ने ये आदमी के लिए कि ये 15-15 दिन ले रहा है गाना लिखने के लिए, जो तो आधे घंटे में लिख देता है।
1: रोशन साहब के लिए बख्शी साहब ने लिखा, आया है मुझे फिर याद वो
0: देवर,
1: जालिम, गुजरा जमाना
0: हाँ
1: बचपन का।
0: देवर द लास्ट फिल्म टुगेदर।
1: जी।

0: ये अलग ही मिट्टी के लोग थे।
1: बिल्कुल,
0: ये वो मिट्टी है जो बाढ़ में बहती नहीं है, नदी को पकड़ के रखती है, ये वो मिट्टी के लोग हैं।
1: जो पहला गाना था भला आदमी का, वो कैसे मिला था?
0: आई टोल्ड यू नो बख्शी आपका क्या था, मैं जब तक 5 लोगों को अपना ऑफर नहीं दूंगा, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इंट्रोडक्शन करूंगा, काम नहीं मांगूंगा, मैं वह घर नहीं जाऊंगा, तो वो रंजीत स्टूडियो चले गए। उस दिनों में सारी फिल्में स्टूडियो में बनती थी, आउटडोर बहुत कम लोग जाते थे, वो गाने के लिए आउटडोर जाते थे। महाबलेश्वर चले गए या किधर इधर नेशनल पार्क चले गए, बोरीवली नेशनल पार्क, रंजीत स्टूडियो गए और वहां पर उनका जो चौकीदार था ना, बख्शी साहब वॉज वेरी क्लेवर। अच्छा, उनको पता था कि फिल्मिस्तान में ऐसे जाओ तो भगा देते हैं, तो क्या करते थे, फिल्मिस्तान के बाहर जाते थे और वहां से टैक्सी लेते थे
1: साहब की तरह।
0: तो सीधा अगर पहला लिया होगा सारा स्ट्रगल आ गया, स्ट्रगल आया ना निकाल साले को स्ट्रगलर को। तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता चला कि अंदर साहब बैठे हैं और बहुत परेशान है क्योंकि उनका लिरिसिस्ट नहीं आया। तो बोला अच्छा नहीं आया, घुस गए अंदर, भगवंत दादा गए रूम में चले गए, कौन है भाई तुम, क्या कर रहे इधर तुम? इसे मैं फौजी हूँ और मैं गाने लिखता हूँ। फौजी की बहुत इज्जत थी, फौजी हो गाने लिखते हो, अच्छा क्या लिखते हो बताओ, सुनाओ कुछ। कुछ सुनाया तो बोला अच्छा ठीक है, मेरे को 4 गाने चाहिए, गाने सुन लो और तुम 8-10 दिन में वापस आ जाओ, एक गाना लिख के ले आओ, चाहिए मुझे 4 गाने, एक गाना लिख के ले आओ। बख्शी साहब अगले दिन पहुंच गए वापस, बोला क्या हुआ भाई? बोला सब रेडी है, आपने बोला था ना गाना लिखने के लिए। हाँ लिख के ले, हाँ लिख के ले, सुनाओ। सुनाया धरती के लाल ना कर इतना मलाल, पता ऐसे कोई जो लव वर्ड्स हैं उसके गाने के, को बहुत पसंद आया। बोला अरे वाह, तो बाकी कितने गाने लिखो? इसी के साथ लिख के लाया
1: हूँ। अरे कैसे लाया?
0: तीनों का चारों गाने लिख के लाया हूँ। 4 गाने लिख दिए तुमने?
1: जी
0: हाँ। सुनाओ, सुनो, रिकॉर्डिंग होगी उसकी,
1: वाह वाह,
0: 1 महीने में 4 गानों की। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये वो मिट्टी है जो बाढ़ भी आए ना तो नदी को बाहर ही निकल लेने के, ये वो मिट्टी के लोग।
1: इस तरह उनको पहला चांस मिला था।
0: हम क्यों करें चिंता उनको।

0: चिंता हमारी है।
1: और यही हुआ कि उन्होंने भला आदमी के गाने लिखे, फिर रोशन साहब से मिले, बेदाग के गाने लिखे, और उसके बाद कल्याण जी आनंद जी से उनकी मुलाकात हुई और मेहंदी लगी मेरे हाथ फिल्म मिली।
2: उनकी पहली हिट थी
1: जी,
2: पहली हिट फिल्म जिसमें सारे गाने उनके थे। उससे पहले एक और हिट थी चांसी महबूबा,
1: हाँ,
2: उसमें सारे गाने बख्शी आपके नहीं थे, लेकिन
1: एक दो गाने थे,
2: हाँ,
1: हिमालय की गोद में,
2: हाँ, लेकिन ये गाना बहुत चला था
1: जी,
2: जबरदस्त चला था ये गाना। मनोज कुमार जी टोल्ड मी ये मेरा फेवरेट गाना है मेरी जिंदगी का।

0: लेकिन जो पहली फिल्म जिसमें सारे गाने आनंद बख्शी के थे जो चली थी वो थी मेहंदी लगी मेरे हाथ,
1: और वो भी कल्याण जी आनंद जी भाई ने उनको मौका दिया था।
0: और उसके बाद उनकी एक फिल्म चली थी जब जब फूल खिले, सुपर हिट। उसके बाद मिलन आई
1: जी,
0: सुपर डुपर हिट। के बाद आराधना आई, आराधना ने बख्शी साहब को ब्रह्म लोक में पहुंचा दिया जिसमें वो 2002 से उतरे।

0: 6 बजे 7 बजे उठ जाते थे लिखते लिखते। हम स्कूल जाते थे और गाने लिख रहे हैं, वापस आकर गाने लिख रहे हैं
1: सोफे के सामने जमीन पे बैठ के,
0: जमीन पे बैठ के, कोई नखरा नहीं।
1: कहीं कभी कोई होटल में गोवा भेज दो, रिजॉर्ट में भेज दो।
0: अरे मेरे प्रोड्यूसर मेरे से बहुत खुश हैं। ऐसा क्यों खुश हैं? आपकी फिल्में चलती हैं नहीं, उनका पैसा बचता है। ऐसा क्यों पैसा बचता है? इसे क्योंकि मैं होटल रूम नहीं मांगता ना, तो मैं बोलता हूँ मुझे लोनावला ले चलो। तुम लोग सब लड़ रहे हो, मैं तू इस लड़ाई के बीच में बैठ के
1: गाने लिख रहा
0: गाने लिख रहा हूँ। कोकर की सीटी बज रही है, पोस्टमैन आ गया है उसका पैसा देना है, बनिया आ गया है उसका सामान लेना है, उसके बीच में मैं गाने लिख रहा हूँ, प्रोड्यूसर का पैसा बचता है। आई एम वेरी एफिशिएंट फॉर माई प्रोड्यूसर, क्योंकि उनका एक बहुत सिंपल फिलॉसफी था कि बेटा ये धंधा है, मेरे लिए मेरा शौक है वो मेरा घर चलता है इससे, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए धंधा है। इफ आई डू नॉट सेटिस्फाई द बायर ऑफ माई गुड्स, वाई विल ही बाय माई गुड्स अगेन? मैं 50 अंतर लिख के देता हूँ, क्योंकि कोई और नहीं करता ये सब। तो वो जब मेरे पास आते हैं, उनको पता है कि पैसे उतने ही लेगा, लेकिन बाकी उनसे ज्यादा लिख के देता है, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा नहीं बोलता है। सो ही वॉज अ फैंटास्टिक मार्केटिंग एजेंट फॉर हिमसेल्फ, बट नॉट मार्केटिंग बाय सेइंग आई एम ग्रेट, बाय गिविंग यू मोर देन यू आस्क फॉर।
1: बहुत काम करते थे,
0: हाँ
1: मेहनत बहुत।
0: तुम्हें 3 मांगा ना, ये 30 लेके जा भाई।
1: मेरी बहुत सारे संगीतकारों से बात हुई जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि बख्शी साहब को कोई गाना लिखने को कहा जाए तो जहां दूसरे गीतकार 3, 4, 5 अंतरे लिखते थे, वहां बख्शी साहब 30-30 अंतरे लिख के देते थे।
0: जब हम इसमें से चुन लो, जाने कहां होंगे 59 अंतरस।
1: अरे बाप रे, 59।
0: इसे कि ये सरस्वती है, ये बहरी है, इसको बहने दो, रुको मत, क्योंकि इसके पैसे इतने मिलेंगे तो नाराज हो जाएगी कि तुमने मुझे बहने नहीं दिया। हम सोचते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, उसको दबा के रख देते हैं कबर के अंदर, वो घूमने आई है, उसको निकालना पड़ेगा, घुमाने लेकर जाना पड़ेगा आपको। धरती से जुड़ा हुआ कॉमन सेंस जो आपको हार्वर्ड में नहीं सिखाएगा है।
1: जी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बात की जाए कि उनसे बहुत लंबा रिश्ता रहा।
0: मुझे के नैयर साहब ने बताया था
1: जी,
0: जर्नलिस्ट, के उन्होंने इंटरव्यू लिया था बख्शी साहब का, और उसमें कहा था कि मेरे ख्याल में लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया था, तो लक्ष्मी ने कहा था कि बख्शी साहब मुझे काफ़ी बार फ़ोन करते थे कि सुन मैंने क्या लिखा है मुखड़ा, तो मुझे जब भी मुखड़ा पसंद आता था मैं कह रहा था बख्शी जी अच्छा लिखा है, लॉन्ग ड्राइव पे चले? बोला आ जाओ। लॉन्ग ड्राइव क्या था? वो जू से निकलते थे पारसवाणी से, 10th रोड बैंटर आते थे पेरी क्रॉस रोड, अपनी गाड़ी में बख्शी साहब को पेरी क्रॉस रोड से लेते थे, और ये लोग जाते थे बर्ली सीफेस।
1: अच्छा, और आगे निकल जाते थे?
0: हाँ, बर्ली सीफेस में जाके वहां बैठ के गाना पूरा कंप्लीट करके वापस आते थे।
1: अरे
0: उसका कोड वर्ड था लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव फॉर हन बख्शी वर्स, इसको मेरा मुखड़ा पसंद आ गया है और इसको धुन दिख रही है इसमें।
1: हाँ, तो सब लोग समंदर के किनारे बैठेंगे और उस गाने पर काम करेंगे
0: गाड़ी के अंदर ही बैठ के।
1: जी,
0: वो अपना पान खाएंगे और गाना कंप्लीट करके आ देते, उसको कहते थे लॉन्ग ड्राइव।
1: ये बड़ी पुरानी दोस्ती रही लक्ष्मी प्यारे और आनंद बख्शी की।
0: यस यस,
1: जब वो स्ट्रगल कर रहे थे,
0: जब उन्होंने मिलन की कहानी सुनी, साउथ इंडियन फिल्म की कहानी सुनी, तो एक पान वाले के बाहर खड़े थे फिल्म सेंटर, बहुत एकदम सीरियस हो गए थे बख्शी साहब। प्यारे जी ने पूछा, प्यारे जी ने मुझे एक कहानी बताई थी कि बख्शी जी क्या हो गया आपको, इतना सीरियस हो गए आप? बोले हाँ यार, तब इमोशनल हो गया हूँ कहानी सुन के। और उन्होंने ये लाइन कही थी प्यारे जी को, समा ये सुहाना मैं खुश हूँ मेरे पास, क्या वो गाना मिलन का,
1: मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे ना जाना, मुबारक हो तुमको समा ये सुहाना।
0: He said, मुबारक हो, मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी इमोशनल फिल्म में हम तीनों साथ काम कर रहे हैं। I am glad that my partners in the song songs are you, you both, because you will understand.

द इमोशन दैट वी हैव जस्ट एक्सपीरियंस एंड कम। तो उन्होंने ये लाइन कही थी कि मुबारक हो सबको समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसू पे ना जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। और ये इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू एलपी, ये मुझे प्यारे जी ने बताया था कि ये हमारे लिए बख्शी साहब ने हमको कॉम्प्लीमेंट दिया था कि देखो ये इतनी ज़रूरी फिल्म, इतनी इमोशनल फिल्म में तुम दोनों मेरे साथ हो, कमाल करेंगे हम साथ में।

0: क्यों बख्शी साहब के जबान से उन्होंने कहा है, उनकी मेरे पास कोट्स हैं मैगजीन के मैंने जिंदगी में काम हमेशा मांगा, जिसको भी मिला मैंने काम मांगा, आराधना तक। आराधना के बाद मुझे ईश्वर ने ऐसी जगह पहुंचा दिया, मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं, क्योंकि जब मुझे मौका मिला काम मांगने का, मुझे लगा अगर मैं किसी से काम मांगूंगा वो मेरे नाम पे काम दे देगा तो मैं किसी और का काम छीन लूंगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि मैं एक 70 रुपये का सिपाही था, आज एक फिल्म के 70,000 मिलते हैं मुझे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक फिल्म का 70,000 रुपये मिलेगा, तो मैं क्यों मांगू किसी से काम? किसी और की घर की लक्ष्मी मैं कितनी छीनना नहीं चाहता, मुझे जो है बहुत दिया मुझे ईश्वर ने।
1: मिलन फिल्म के गानों की बात हो रही है, एक रेल यात्रा वाला किस्सा है जिसमें हाँ, बख्शी साहब दिल्ली जा रहे हैं और
0: हाँ, तो उनको लोग बोलते थे अरे बख्शी साहब क्या फैंटास्टिक, आप तो ये अराइव्ड, यू नो जो इंग्लिश में बोलते हैं ये अराइव्ड, हिंदी में क्या उसका मुहावरा है
1: कि कामयाब हो गए भाई आपका, तो
0: बड़े कामयाब हो गए आप तो यार, फिल्म पे फिल्म मिल रही है, गानों पे गाने मिल रहे हैं। तो इज टू रबिश इट, यू नो, कि नहीं नहीं क्योंकि क्या है कि एक बार वो सिर में चढ़ जाए ना तो आप गीत लिखना भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपको है कि अभी मैं तो बड़ा कामयाब हो गया हूँ यार, मुझे क्यों मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो वो हमेशा हर तारीफ को डिफ्लेक्ट करते थे कि साला ये मेरे को, ये अगर तारीफ चिटक गई तो मैं गया, खत्म हो जाऊंगा। उनको उनको ये था सरस्वती नाराज हो जाएगी, अगर मैंने ये सब क्रेडिट लेना शुरू कर लिया ना तो ये भाग जाएगी सरस्वती। चुप बैठो, रिफ्लेक्ट करो, RDP पर डाल दो, LP पर डाल दो, राजेश खन्ना पर डाल दो, राजेश खन्ना ने गाया इसलिए हुआ, हमेशा करते थे वो। डायरेक्टर पर डाल दो, राइटर पर डाल दो, अच्छी कहानी सुनाई तो हुआ। तो वो ही वॉज ट्रैवलिंग बाय फ्रंटियर मेल और पंजाब मेल, और रात का वक्त था और एक अनशेड्यूल्ड स्टॉप में गाड़ी रुक गई क्योंकि सिग्नल नहीं था, रेड था। तो वो बड़ा अजीब सा एक स्टॉप था जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, पूरा स्टेशन काला था, और एक फकीर लेट राइट, उसने आग जलाई हुई थी छोटी सी आग, और उस आग के रोशनी से अपना वो तानपुरा बजा रहा था और ये गाना गा रहा था, ये मिलन फिल्म का, आई थिंक सावन का महीना, सावन का महीना पवन करे सोर, वो फकीर गा रहा था
1: जी।
0: और तब बख्शी आपको लगा यार ये ऐसा जगह है, ये ऐसी जगह ट्रेन रुकी है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मतलब यहाँ गाना सुनने के लिए आपको बैटरी खरीदनी पड़ेगी, लाइट नहीं है, आपको बाहर जाके दुकान से बैटरी खरीदनी पड़ेगी, आप उसको डालोगे तब वो चलेगा। और इस गांव में अगर मेरा गाना एक गरीब से गरीब फकीर गा रहा है, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां भी मेरा गाना पहुंच गया है।
1: वाह
0: बख्शी बॉस, जो लोग कह रहे ना वो सच है,
1: इसको कहते हैं कामयाबी।
0: तो कामयाब

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: पक्षी साहब, जो सक्सेस है ना, अरे यार सिंपल वर्ड्स में कितनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। इसका जो क्रेडिट है ना, इट गोज टू शैलेंद्र, क्योंकि शैलेंद्र ने जब बख्शी साहब को सुना, शुरू से सुनते रहे थे, तो उनको लगा कि बख्शी साहब वो तो उर्दू ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उर्दू पढ़ के आए थे। और क्या होता है, आप एक फील्ड में जाते हो, तो अगर यूनुस खान अगर वहाँ का टॉप जॉकी है, तो आप यू विल ट्राई एंड कॉपी यूनुस खान, और इफ अमीन सयानी इज योर गुरु, यू विल ट्राई एंड कॉपी अमीन सयानी। तो शैलेंद्र ने बोला, देखो बख्शी साहब, क्योंकि बख्शी साहब जब आए थे तो मजरू साहब, साहिर साहब, ये सब बड़े बड़े लोग थे, उर्दू में लिखते थे काफी वर्ड्स,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उनको तो उर्दू वाज अ सेकंड लैंग्वेज फॉर हिम, फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई की थी उन्होंने, तो वो भी उर्दू डाल देते थे गानों में। तो शैलेंद्र ने कहा कि बख्शी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गाने पूरे भारत में बजे और लोग आपके गानों को सिर्फ पसंद ना करें, उसको गाएं भी, तो उर्दू में मत लिखा करो, तुम सरल हिंदुस्तानी में लिखा करो, जैसे मैं लिखता हूं। एंड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज फर्ज। मस्त बहारों का मैं आशिक, जो मैं चाहे या करूं,
2: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

पांच बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साथ खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ।

है मेरे लिए, मेरे लिए मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: और फर्ज इतनी बड़ी हिट थी वो फिल्म अक्रॉस इंडिया कि सर यार शैलेंद्र ने सही बोला था, अब तो मैं ये स्टाइल से लिखूंगा। उसके बाद गाने आए, अच्छा तो हम चलते हैं। वो गाने कहाँ से आए? शैलेंद्र की एडवाइस थी कि सरल हिंदुस्तानी में बातचीत की भाषा में लिखो। सो लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर हंसबख्शी सक्सेस गोज टू शैलेंद्र जी।
1: कामयाबी का एक पक्का रास्ता।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और यादें आपने बांटी। शुक्रिया,
2: थैंक यू।
1: गीतकार आनंद बख्शी की याद में उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और यादें आपने बांटी।
2: चलो शुक्रिया, थैंक यू।
1: गीतकार आनंद बख्शी की याद में उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

0: साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव की भावना पुनर्जीवित हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में भारतीयता की भावना को और मजबूत करना है। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। चीन के हांगझोऊ में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर आप हमारे केंद्र से नृत्य प्रति सुनते हैं भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन, और 5:30 पर सुनिएगा युवा दोस्तों को संबोधित हमारा प्रसारण युवावाणी।

संध्या 6 बजे हम आपको सुनाएंगे लोकगीत और 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन का हम अनुप्रसारण करेंगे। हमारे किसान भाई अपना प्रसारण सुनेंगे किसान वाणी 6:10 पर। और आज के इस कार्यक्रम में महिलाओं का कृषि क्षेत्र में योगदान की जानकारी देंगी संगीता गुप्ता आज के किसान के अंतर्गत। अलावा इसके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पानी का सही निकास करें इन बिंदुओं की भी चर्चा की जाएगी। भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत आप हमारे केंद्र से सुनते हैं 6:40 पर। और सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास आप सुनें।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं 7:30 पर जिले की हलचल और 7:50 पर हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम ई मन पसंद। कार्यक्रम ई मन पसंद का शेष भाग आप 8:15 से सुनेंगे। 8 सुनिएगा दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर और 9 आप सुनेंगे लोकधारा के तहत भोजपुरी लोकगीत। गजलों की महफिल सजेगी 9:15 पर। रात्रि 10 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के रिकॉर्डिंग का प्रसारण। 10:30 पर सुनिएगा चित्रपट तरानी।

तो यह थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी आपके लिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ भक्ति रचनाएं। कार्यक्रम है वंदन।

भगवान के नाम के बिना, सुमिरन के बिना व्यर्थ सिद्ध हो जाता है। बड़े सुंदर उदाहरण दिए हैं जिन्हें सुनने से ये बात स्पष्ट हो जाती है, समझ में आती है।

0: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: यह है वंदन कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति।

अभी आपने मोहन शर्मा और साथियों को सुना। कार्यक्रम का समापन हरिराम पटेल की गई इस भक्ति रचना से।

तो श्रोता हूँ, अभी आपने हरिराम पटेल और साथियों की कही ये भक्ति रचना सुनी, और इन्हीं भक्ति गीतों के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण युवावाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। श्रोताओं कहते हैं कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन ये दोनों ही प्रगति के सूत्रधार होते हैं। व्यक्ति समाज की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन समाज का विकास व्यक्तियों से ही होता है। व्यक्तियों का समूह जब एक साथ काम करता है, समाज विकसित होता है। और समाज के विकास के लिए ये पहली ज़रूरत है कि समाज में रहने वाले लोग निरोग हों, स्वस्थ हों, किसी भी तरह की बीमारी से या पीड़ा से वो ग्रसित न हो। और यही कारण है कि हमारी सरकार भी इन बातों का सुनिश्चय करती है कि किसी भी क्षेत्र में कोई बीमारी यदि बढ़े या पनपे तो उसका निराकरण किया जा सके। हेपेटाइटिस का नाम हम सब ने सुना है। हेपेटाइटिस बी के बारे में भी हम लोग जानते हैं। संयोग है कि आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है और ख़ास करके यह दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि हेपेटाइटिस के बारे में लोग जानें। मैंने शुरुआत में ही कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ये दोनों ही बहुत आवश्यक हैं, और स्वस्थ मन तभी रहेगा जब स्वस्थ तन है। तो तन की स्वस्थता के लिए ही ये ज़रूरी है कि हम भोजन जो भी कर रहे हैं वो संतुलित हो, नियमित व्यायाम भी करें,

ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम हेपेटाइटिस की बात कर लें तो हेपेटाइटिस लीवर का यानी यकृत का सूजन है जो यकृत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होते हैं। हेपेटाइटिस अक्सर हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। वायरल हेपेटाइटिस अमेरिका में सबसे आम हेपेटाइटिस ए, बी और सी है। लोगों को लीवर में अतिरिक्त तो वसा, जिसको फैट इंग्लिश में बोलते हैं, या नशीली दवाओं के उपयोग से या विषाक्त पदार्थों आदि के सेवन से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। अन्य वायरल संक्रमण भी हैं हेपेटाइटिस के। कुछ दवाएं, कुछ चिकित्सकीय स्थितियां जैसे मधुमेह, मोटापा, चयापचय संबंधी विकार, इस्केमिया और ऑटो इम्यून विकार इसके कारण हो सकते हैं। हेपेटाइटिस से पीड़ित कई लोग लक्षणहीन भी होते हैं या उन्हें पता ही नहीं होता कि वे संक्रमित हैं। तीव्र हेपेटाइटिस में हल्का बुखार, थकान, भूख न लगना, मतली, उल्टी, पेट दर्द, गहरे रंग का पेशाब, हल्के रंग या भूरे रंग का मल और मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, खुजली वाली त्वचा, आँखों या त्वचा का पीलापन और अस्वस्थता महसूस होना, ये इसके सामान्य लक्षण हुआ करते हैं। क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस कहीं से भी ले जा सकते हैं। 2 सप्ताह से लेकर 6 महीने तक या फिर दशकों तक का समय इसमें लग सकता है। तो ये भयावह स्थिति है। हेपेटाइटिस के 5 मुख्य प्रकार हैं, ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस बी और सी का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जो दुनिया भर में और अमेरिका में लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। हेपेटाइटिस के कई अन्य प्रकार और उप प्रकार भी हैं, जैसे हेपेटाइटिस एफ, हेपेटाइटिस जी, हेपेटाइटिस टीटी वायरस इत्यादि, कई नाम से इसको जानेंगे हम लोग। हेपेटाइटिस ए, बी और सी की यदि बात की जाए तो ये 3 अलग-अलग वायरस के कारण होते हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें से प्रत्येक के लक्षण समान हो सकते हैं, लेकिन इनके फैलने और तरीके अलग-अलग हैं और ये लीवर को अलग-अलग ढंग से प्रभावित करते हैं। हेपेटाइटिस ए जो है वो आमतौर पर अल्पकालीन संक्रमण है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी शुरुआत में अल्पकालीन हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में वायरस शरीर में बना रहता है जिससे दीर्घकालीन संक्रमण और लीवर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए टीके उपलब्ध हैं, लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं है। हेपेटाइटिस डी और ई संक्रमण अमेरिका में आम नहीं है, लेकिन होते हैं। तो खैर, ये खास करके हेपेटाइटिस बी ज़्यादा जाना जाता है या इसके लक्षण भी दिखते हैं। अब हमारी सरकार ने यानी भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम NVHCP शुरू किया है। अब जैसे निःशुल्क जांच और उपचार सरकारी अस्पतालों में आप करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी की मुफ्त दवाएं भी वहाँ पर मिल सकती हैं, मिल रही हैं। टीकाकरण की बात यदि की जाए तो नवजात शिशुओं को जन्म के 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है और विशेष सहायता पाने के लिए एक टोल फ्री नंबर है 1800 11 66 66, 1800 11 6666। तो ये एक हेल्पलाइन नंबर भी है, इस पर कॉल करने पर आपको विशेषज्ञों से बात होती है और निदान का भी उपाय बताया जाता है वहाँ से। 2030 तक हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ख़त्म करना है और सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और इस्तेमाल की गई सुइयों या सिरिंजों से बचाव इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। और जागरूकता की भाई ज़रूरत है, जैसे लीवर की सूजन और पीलिया के प्रति आम जन को जागरूक रहना होगा। जैसे ही कोई लक्षण दिखे तो नज़दीक के चिकित्सा केंद्र में आप अवश्य जाएं और चिकित्सकों का परामर्श लें, उनकी कही हुई बातों पर अमल करें और दवाइयाँ खाएं। चलिए हम एक गीत सुन लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जी हाँ, RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आजकल साइबर क्राइम काफी अलग अलग रूपों में है।

तो हमें भी सावधान होना होगा, कम से कम अपना एटीएम दूसरे को न दें, देवी तो पिन नहीं बताएं, ओटीपी किसी को के साथ शेयर न करें यदि आपको आता है अपना पर्सनल, तो ये कुछ हैं, पासवर्ड कोई भी है वो डिस्क्लोज ना करें, किसी को बताएं नहीं। तो साइबर क्राइम से बचने के ये कुछ उपाय हैं, और वो तो है ही कि भाई जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो चलिए हम भी अमल करें उस पर, और आरबीआई का इंस्ट्रक्शन है उसको समझें। मित्रों, हरा भरा, जो हरा रंग है ना, वो लिखा है ना कि हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, जी हाँ, हमारी धरती माता शस्य श्यामला, आजकल तो हरियाली चारों तरफ है। और सच पूछिए तो हरियाली जब कभी भी दिखती है वो गमले के पौधों की ही हरियाली क्यों ना हो, ऐसा लगता है कि सब कुछ सही सही चल रहा है जीवन में। अब बड़ी खुशहाली होती है हरा रंग को देख करके, हरा भरा होना, हरा भरा दिखना, ऐसे मुहावरे भी जो कहे जाते हैं वो प्रसन्नता के द्योतक हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भरें और हरे भरे रहें। हरियाली है जीवन की खुशहाली, जल जीवन हरियाली, हमारी गवर्नमेंट ने भी ये योजना चलाई, और ये बहुत ही शानदार योजना, और यदि इसको देखा जाए तो, और वैसे हरियाली ही जीवन की वास्तविक खुशहाली है, क्योंकि इस हरियाली से हमें शुद्ध हवा, स्वस्थ पर्यावरण और संतुलित जलवायु मिलता है। पेड़ पौधे और प्राकृतिक हरियाली हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। अब ज़रा कल्पना करिए ना कि पौधे न हों तो क्या होगा, हम ही नहीं रहेंगे, हमारा अस्तित्व ही पौधों पर टिका हुआ है, क्या खाएंगे हम? पौधे नहीं होंगे, बारिश कैसे होगी? और सच बात तो ये भी है, हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बादल बरसते हैं पौधों के लिए, हमारे लिए नहीं, हमसे उनका क्या रिश्ता? हाँ, पौधों से उनका रिश्ता है। तो बादल जो अभी जो हम टकटकी लगाए हुए हैं इधर सासाराम भभुआ इलाके में भी, बारिश की बड़ी कमी है भाई, बड़ी चिंता हो रही है देख करके, धूप कड़ी है, पसीना निकल रहा है शरीर से, गर्मी काफ़ी है। घर में आप जाइए, रसोई में जाइए, देखिए स्थिति क्या है, बड़ी बुरी स्थिति है। हम लोग तो चाहते थे कि भाई पानी अब से बरसते रहता 20 दिन, मैंने पूरा आषाढ़ जो है वो समाप्त समझिए, और अब श्रावण बस दरवाजे पे कहते हैं ना, दहलीज पर खड़ा है, तो आषाढ़ में तो दर्शन ही नहीं हुआ भाई, ये बड़ी अद्भुत स्थिति है। और ये जो है ज़िंदगी के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा, फसलों के लिए, पौधों के लिए तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, गर्मी है, काफ़ी गर्मी है, धूल उड़ रहा है सड़कों पर भाई, तो ये विचित्र स्थिति है। लेकिन फिर भी हरियाली, मेघ महाराज जो है वो सच में पौधों के लिए ही बरसते हैं, और पौधे जब बड़े होते हैं तो हमारे लिए जीवन का आधार बन जाते हैं, वो चाहे धान के लिए बारिश की ज़रूरत हो, चाहे फलों के लिए हो, चाहे फूलों के लिए हो, चाहे ऐसे किसी भी पौधे के लिए हो। गौ माता खाएंगी क्या अगर घास नहीं होगा तो, कैसे दूध मिलेगा? तो ये चीज़ें हैं कि हरियाली जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, शुद्ध हवा। तुलसी का पौधा हम लोग अपने घरों में लगाए हुए हैं, हमारे चिकित्सक भी बोलते हैं, आयुर्वेद वाले भी और सभी लोग, कि जहाँ तुलसी का पौधा है वहाँ का वातावरण काफ़ी सुंदर, काफ़ी स्वच्छ है, वहाँ शुद्ध हवा है, बढ़िया पर्यावरण है। तो शुद्ध हवा, पेड़ हमें जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, भारी मात्रा में पेड़ों का होना बड़ी आवश्यक है, वर्षा का आधार है पेड़ पौधा, हरियाली से समय पर बारिश होती है और पानी का स्तर सुधरता है। संतुलित मौसम के लिए हम बात कर लें तो पौधों से गर्मी कम होती है और वातावरण को ठंडक पहुंचता है। एक प्रयोग तो हमने भी देखा, अभी हाल में आप भी महसूस किए होंगे, प्रचंड धूप जब भी हो और पेड़ के नीचे आप जाइए, लगता है कि तत्काल शीतलता मिलती है, तत्काल जिसको बोलते हैं ना, वही होता है। वहीं पर जहां धूप में आप निकल रहे हैं 5 सेकंड बाद में लगता है कि जल रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसके साये में आते हैं, पेड़ों के साये में, दरख्त के साये में जब हम आते हैं, तो काफ़ी तापमान का अंतर महसूस होता है। ये है प्राकृतिक एयर कंडीशन, जो घरों में हम लोग लाखों रुपया खर्च करके लगाते हैं ना एयर कंडीशन, यहाँ देखिए प्राकृतिक रूप से है। ज़्यादा जब गर्मी बढ़ती है तो हम ही नहीं, भैंस

भैंसें, गाय, भेड़ बकरियां सभी के सभी पेड़ की छाया में अगर बैठ जाते हैं तो ये है हरियाली का असर। अब इसके लिए हमारा कर्तव्य ये है कि हम हर साल अधिक से अधिक नए पौधे लगाएं। यदि हम ग्रामीण इलाकों के हैं तो हमारे खेत हैं, मेड़ चौड़ा चौड़ा जो है, डीला डील डाबर जिसको बोलते हैं, आप वहाँ पर पौधे लगाइए। हर साल अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएं, फूलों के पौधे लगाए जाएं, फलों के लगाए जाएं, देखभाल करें। भाई देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पेड़ पौधे लगा तो मतलब सारे सारे लोग योजनाएं चलाते हैं कि भाई वृक्षारोपण, पौधरोपण हुआ हुआ, लेकिन होने से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी देख रेख होनी चाहिए ना। निगरानी कम से कम 3 साल, पूर्वज हमारे कह गए हैं कि 3 साल तक जिस प्रकार से बच्चों को देखना पड़ता है वैसे ही पौधों को भी देखना होता है। ये नहीं कि बस एक बार लगा दिए चल दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। पौधरोपण तो आप करते हैं, हम करते हैं, शौक से करते हैं, कार्यालयों के लोग, वन विभाग के लोग, सारे लोग, लेकिन छोड़ कर चल देंगे तो पौधे हमारे सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कम से कम जब गर्मी का मौसम आएगा तो पटाना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा पौधे को। तो 3 वर्ष तक कम से कम देखभाल की बड़ी ज़रूरत है। लगाए गए पौधों की तब तक रक्षा करें जब तक वे बड़े पेड़ न बन जाए। पेड़ों की कटाई रोककर पृथ्वी को हरा भरा बनाया जाए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमारे गांव देहातों में शादी जब घर में लग गई तो चलो पलंग बनाने के लिए फलां पेड़ है, शीशम का बहुत बढ़िया हुआ है, काट दो उसको, बन जाएगा। भाई काट तो दिया आपने, काम भी कर लिया आपने, लेकिन हाँ वहाँ पर कम से कम 2-4-5 लगाइए। एक पौधा लगाना बहुत ही पुण्य का काम है, क्योंकि किसी ने लिखा है कि ये माँ शिलाह है, इसका हल नहीं मिला, जिसने सजर लगाया उसे फल नहीं मिला। हम लगाते ही है पेड़ दूसरों के लिए। जो पेड़ हमने लगाया है, कोई आवश्यक नहीं है कि हम उसका फल खाएंगे, फल दूसरे खाएंगे। तो ये परोपकारी चीज़ है पेड़ का लगाना, पौधों का लगाना। छोटी छोटी क्यारियों में हम औषधीय पौधे लगाते हैं, जैसे जैसे उनका बढ़वार होता है हमारी प्रसन्नता बढ़ती है। आँखों को हरियाली जब मिलता है देखने को तो लगता है कि आँखों की रोशनी बढ़ गई है, खुशियों से आदमी भर जाता है कि ये देखिए पौधों के पत्ते कितने चौड़े चौड़े हो गए हैं। जैसे ही उसमें फूल फल लगते हैं और तरोताज़ा महसूस होता है कि आह इतना सुंदर फल लग गया। तो ये आत्मा को शांति, सुकून और प्रसन्नता प्रदान करता है पौधा। तो पौधा आप भी लगाइए, अभी तो बहुत बढ़िया समय चल रहा है। अलग बात है कि बारिश का भी, लेकिन हवा में नमी की मात्रा तो अच्छी खासी है। पौधे लगाए जाएंगे तो पौधे पकड़ लेंगे, वर्षा होगी तो पौधों को अब कहिए उनको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी। तो चलिए एक और गीत सुनते हैं, फिर बातें और भी करेंगे।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ वेब डेवलपर के क्षेत्र में कैरियर के संबंध में। जी हाँ, वेब डेवलपर का क्षेत्र तकनीकी दुनिया में एक शानदार और तेज़ी से आगे बढ़ने वाला कैरियर विकल्प है, जिसमें मुख्य रूप से फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट और फुल स्टैक डेवलपमेंट के क्षेत्र शामिल हैं। इस क्षेत्र में उच्च मांग और आकर्षक वेतन के अवसर मिलते हैं। वेबसाइट का वह हिस्सा है फ्रंट एंड डेवलपर जो उपयोगकर्ता को दिखता है। इसमें HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट

का उपयोग होता है। वहीं बैक एंड डेवलपर में वेबसाइट के अंदरूनी और डेटाबेस को संभालते हैं। इसके लिए पाइथन, PHP या नोड JS जैसी भाषाएं लैंग्वेजेस ज़रूरी हैं। फुल स्टैक डेवलपर की जहाँ तक बात है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम एक साथ संभालते हैं फुल स्टैक डेवलपर। इसके लिए आवश्यक योग्यता और पढ़ाई की बात यदि की जाए तो 12वीं के बाद BCA, BSc IT या BTech कंप्यूटर साइंस किया जा सकता है। कौशल की बात यदि की जाए तो कोडिंग भाषाएं, फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट या एंगुलर और डेटाबेस की समझ होना ज़रूरी है। देश विदेश में IT कंपनियां और स्टार्टअप बेहतरीन पैकेज पर वेब डेवलपर को रखते हैं। आप घर बैठे खुद के बॉस बनकर स्वतंत्र रूप से ग्राहकों के लिए प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। इसको हम लोग फ्रीलांसिंग कहते हैं। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फ्रंट एंड और बैक एंड में से किसी एक से

डेवलपर। इसके लिए आवश्यक योग्यता और पढ़ाई की बात यदि की जाए तो 12वीं के बाद BCA, BSc IT या BTEC कंप्यूटर साइंस किया जा सकता है। कौशल की बात यदि की जाए तो कोडिंग भाषाएं, फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट या एंगुलर और डेटाबेस की समझ होना ज़रूरी है। देश विदेश में IT कंपनियां और स्टार्टअप बेहतरीन पैकेज पर वेब डेवलपर को रखते हैं। आप घर बैठे खुद के बॉस बनकर स्वतंत्र रूप से ग्राहकों के लिए प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। इसको हम लोग फ्रीलांसिंग कहते हैं। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फ्रंट एंड और बैक एंड में से किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं, और आपको कोडिंग का कोई शुरुआती अनुभव अगर है तो ये और भी बढ़िया बात है। तो श्रोताओं, आज के युवाणी कार्यक्रम से अब आपसे आज्ञा लेने का समय आ गया है, तो चलते चलते संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी अपना प्रसारण सुन रहे थे, युवावाणी। यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजे हैं, लीजिए सुनिए लोकगीत।

नहीं हरवा हमका ना भावे। अभी आप सुन रहे थे निर्गुण। गायक कलाकार थे धरणीधर शुक्ल और साथी। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना हवे। अब रउआ लोग नंदिनी से भोजपुरी में समाचार सुनी। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के लेके चर्चा शुरू हो गई बा। ए विधेयक में परीक्षा पेपर लीक रोके और परीक्षा के आयोजन में पारदर्शिता लावे खातिर कई गो महत्वपूर्ण प्रावधान कैल गई बा। विधेयक में दोषी के 10 बरिस तक के कैद, 10 करोड़ रुपया तक के जुर्माना और अपराधी के संपत्ति जब्त करे के जैसन कड़ा साजिश सजा शामिल बा। राज्य सरकार के तरफ से नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में भइल प्रदर्शन के दौरान दर्ज भइल केस के वापस लेवे के निर्णय भइल बा। गृह विभाग के ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई के शाम 6 बजे तक राज्य के कोनो हिस्सा में विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगन के खिलाफ कोनो कठोर कानूनी कार्रवाई ना कैल जाय। ए अवधि तक दर्ज सभी FIR परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेवे के विधिक प्रक्रिया तत्काल शुरू कैल जाय। एकरा साथे ही ए मामला में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्ति के जल्द रिहा कैल जाय। सरकार के तरफ से इहो स्पष्ट कैल गेल बा कि ए मामला में नामित लोग के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोनो कार्रवाई ना कैल जाय। सर्वोच्च न्यायालय के तरफ से 18 बरिस से कम उम्र और बिना कोनो आपराधिक रिकॉर्ड वाला प्रदर्शनकारी लेकन के तुरंत रिहा करे के निर्देश मिलल बा। न्यायालय के तरफ से प्रदर्शन के दौरान पुलिस के ज्यादा बल प्रयोग के आरोप में जुड़ल अलग अलग याचिका पर सुनवाई भइल। न्यायालय कहलस कि प्रदर्शन के दौरान लेकन और पुलिस अधिकारियन के लागल चोट के आरोप में निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच जरूरी बा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खातिर प्रचार आज सांझ समाप्त हो गई। प्रचार के अंतिम दौर ले भाजपा, राजद, जनसुराज सहित कई गो दल अपन पूरा ताकत के साथ प्रचार प्रसार कैले रहे। लोग NDA के घटक दल के वरिष्ठ नेता भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में कई गो जगह पर रोड शो और सभा भइल रहे। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव विधानसभा क्षेत्र के बोरिंग रोड, हड़ताली मोड़, चकारम सहित कई गो इलाका में रोड शो करके पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में वोट देवे के अपील कैले। जनसुराज के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर प्रचार के अंतिम दिन कई गो मोहल्ला और टोला में लोग के साथ संवाद करके समर्थन मांगले। 30 जुलाई के मतदान हुई और मतगणना 30 अगस्त ले करावल जाये। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज भागलपुर में सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट के श्रावणी मेला के उद्घाटन कैले। 28 अगस्त तक चले वाला ये मेला के दौरान जल उठाए खातिर श्रद्धालु अजगैबीनाथ धाम जाए के शुरू कर देले बा। लोग सुल्तानगंज से मुंगेर, बांका होत झारखंड के देवघर तक चले वाला ये 96 किलोमीटर कांवर यात्रा के विशेष महत्व बा। ये अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता तथा राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित कई गो मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहले। एकरा से पहले मुख्यमंत्री श्री चौधरी आज मुंगेर जिला में कई गो मॉडल स्कूल, डिग्री कॉलेज और थाना भवन के लोकार्पण

0: श्री चौधरी तारापुर और असरगंज में अलग अलग विकास के काम के भी शुभारंभ कैले। प्रदेश के अलग अलग हिस्सा में मॉनसून के गतिविधि में कमी दर्ज कैल गेल बा। मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक बीतल 24 घंटा के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सा के कुछ जगह पर मध्यम बरखा भइल रहे। अरवल से सबसे ज्यादा 57 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कैल गेल। मौसम विभाग आपन पूर्वानुमान में कहले बा कि अगला 24 घंटा के दौरान रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व हिस्सा में कई गो जगह पर तेज हवा के साथ हल्का बरखा होखे के संभावना बा। विभाग कुछ हिस्सा में वज्रपात के येलो अलर्ट भी जारी कैले बा। बीतल 24 घंटा के दौरान गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, अधवारा समूह समेत राज्य के ज्यादातर नदी के जलस्तर घट गेल बा। वही जे बागमती और कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी भइल बा। केंद्रीय जल आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनी बाद के खतरा के निशान से ऊपर बह रहल बिया। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से ऊपर बह रहल बिया। जहानाबाद के साई सेंटर स्कूल में आज साइबर मंगलवार के आयोजन कैल गेल रहे। ए दौरान पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी छात्र छात्राओं के साइबर सुरक्षा के साथ साइबर अपराध से भी बचे के उपाय के जानकारी दिले। अरवल जिला के कुर्था में निर्वाचन साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल। प्लस टू उच्च विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं के मतदान के महत्व के बारे में जागरूक कैल गेल। एकरा साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जे समाप्त भइल। प्रणाम।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का प्रसारण किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान वाणी सुने वाला सब श्रोता भाई बहन के जगत भाई के नमस्कार। आप पंचू भैया रो के नमस्कार।
1: नमस्कार ये जगत भाई या सभी श्रोता भाई बहन लोग के पंचू भाई के दंडवत। जगत भाई
0: जी भैया,
1: खेत में चारों तरफ मन मनसाइन बा, खरीफ फसलन के जहां बुआई के कार्यक्रम चल रहा बा तो दूसरा तरफ धान के रोपनी भी लगभग अंतिम चरण में चल रहा बा, वही जे बाकी बा जहाँ पानी के थोड़ा सा दिक्कत बा। लेकिन एह में एगो महत्वपूर्ण बिंदु ऐसा बा जौना पर ध्यान दिहल बहुत जरूरी बा।
0: जी का बा भैया?
1: वह कृषि यंत्रण के रख रखाव।
0: देखी सवाल ये बा कि हमने के अपन जौन यंत्र बा ओकरे के सही ढंग से ना रखल जाए तो खेती का हो।
1: देखी आज के समय में बिना कृषि यंत्र के खेती कैल मुश्किल काम हो गई बा।
0: बिल्कुल,
1: तो बिना इनका के कोनो काम आसानी से पूरा नहीं के होत। बरसात के समय यंत्रण के रख रखाव ना होई तो ओमे जंग लाग सकेला।
0: देखी जवन भी चीज माटी से निकल ओकरा के सर सफाई ना हुई तो माटी के चलते निश्चित बा को में जंग लागी। ऐसे भी रहा कोनो चीज हमने के मान ली खुरपिए भइल कुदाले भइल माने छोटा में लिहल जाओ।

0: ओकरा में माटी जब लागल रही
1: चाहे पानी में भींगल
0: रही, तो ओमे हल्का फुल्का जंग आइए जाला। अब माटी के जैसे भी छोड़ा दे तनी रबा तो जंग धीरे ओमे उतना ना आवे।
1: देखिए ट्रैक्टर बा, पावर टिलर बा, पंप सेट, थ्रेसर, रीपर, सीड ड्रिल, रोटावेयर, तो ये सब जवन कृषि यंत्र बाड़ी सन, काम पूरा भइला के बाद एकरा के साफ पानी से धोके आ सूखा कपड़ा से पोंछ देवे के चाहिए।
0: और एक चीज देखिए और बड़ुए भैया कि जब जौना जैसे मान ली कि हमने के रोपनी के काम पूरा हो गई और ओकरा में लोहवा वाला चकवा होला जवन केजबिल जवन कहला, ओकरा के भी धो पोछ के बहुत से लोग का करेला में जरल मोबिल लगा देला आ कहीं भी चाहे हरे फार में अपन लगा देले बा के पानी के कौन पानी के या चाहे माटी से कौन चाहे जंग से असर ना पड़े।
1: देखिए माटी घास कीचड़ ये सब लागल रही तो जल्द जंग पकड़ेला ओकरा में। तो हमनी के एगो बात और देवे के बाकी यंत्र के खुला जगह पर मत छोड़ी, हमेशा छत वाला सूखल जगह पर रखी। अगर शेड न होखे तो मोट तिरपाल से ढाँक देवे के चाहिए।
0: देखिए बात तो एक नंबर के कल, बहुत से किसान लोग बन की कम जमीन बढ़ुए गाड़ी रखा गए अपन खेती करब दूसरों के करब मदद थोड़ा मिल जाला और जगह जमीन के लेके जैसन की बात कल कि छावनी ना बन पाए। एक चीज रवा कहने की तिरपाल से चाहे नईखे तिरपाल तो छोट प्लास्टिक के जो बढ़िया
1: मोटा मोटा
0: हाँ ओकरा से ढाक देवे से पानी के असर ऊपर ना पड़े क्योंकि बरसात के समय बा। अब पानी के देखते बानी कब बरसता कब सूखल रहता आ एह में ज्यादा जंग लगे के जरूरत रहे कोनो भी यंत्र में।
1: तो देखिए जगत भाई एगो और बात बा कि जवन हिस्सा घूमेला जैसे चैन बा, बैरिंग बा, गियर बा, तो ओमे समय समय पर ग्रीस आ लुब्रिकेंट जरूर लगावे के चाहिए ताकि ओकर चिकनाई बनल रहे।
0: ये भी जरूरी पड़े अगर ओकरा के नईखी हम ओकरा में डालत चाहे लगावत ग्रीस वगैरह
1: सुखा जाए
0: तो सुखा जाए तो चक्का जाम हो जाए आ जाम हो जाए तो फिर ओकरा के निकाले के पड़ी तो निकाले में कितना मेहनत बा।
1: अब उन्हें अचानक रुवा काम लागल खेत में आने मिस्त्री बुलाई
0: हाँ फिर दिक्कत हो जाए।
1: अच्छा एकरा अलावा जो एकरा ट्रैक्टर बा तो इंजन आयल, गियर आयल, ब्रेक आयल, कूलेंट, ये सब के समय समय पर जांच करे के चाहिए। एयर फिल्टर गंदा होके तो साफ करी, जरूरत पड़े तो बदल दही, बैटरी के टर्मिनल साफ रखे के चाहिए। आ कई दिन ले अगर ट्रैक्टर के इस्तेमाल नहींखे हो तो बैटरी के चार्जिंग पर भी ध्यान देवे के चाहिए, ना तो चार्ज डिस्चार्ज हो जाए तो फिर ठेले ढकेले वाला स्थिति आ जाए।
0: बात भैया कि अगर बैट माने चालू नहींखे हो खत आप बंद करके हम रख ले बने धीरे धीरे बैटरी जोन बा ओकर चार्जिंग
1: डिस्चार्ज हो
0: जाए इसे चार्जिंग खातिर समय समय पर चालू करी आ चाहे कुछ दूर दौड़ा दही ओकरा के तो ठीक रही।
1: एकरा अलावे जगत भाई जैसे पंप सेट बा चाहे स्प्रे मशीन बा जो सामने के दवाई छिड़के तो ओकरा इस्तेमाल के बाद टंकी या पाइप में बचल पानी के निकाल देवे के चाहिए। ऐसे जंग आ खराबी कम होला, चले रोड पर चले वाला यंत्रन के टायर में सही हवा बनल रहे एकर जाँच करते रहे के चाहिए। बहुत दिन से एक जगह खड़ा रखे से टायर पर भी जगत भाई असर पड़ेला। अगर कोनो नट बोल्ट ढीला होके आवाज आवत होके चाहे तेल चुवत होके तो तुरंत मिस्त्री से जांच करा लेवे के चाहिए। छोट खराबी के समय पर ठीक करावे से बड़ खर्चा बच जाला।
0: बात तो देखिए एकदम सही कल ही आ ओकरा में जैसे छोट जौन बात कल ही खराबी से बड़ खर्चा बच जाए बड़ मेहनत भी बच जाला कि ज्यादा मेहनत पड़ जाए फिर हमने के छोट मेहनत के चलते ऐसे बत कही तो भइल और फिर हमने के बत कही हुई। लेकिन हम देख रहे बानी
1: आज के कार्यक्रम में का कहा
0: तो सबसे पहले देखी भैया हमने के जानकारी हुई देश विदेश के बाद इकरी बाद आज के किसान संगीता गुप्ता से जानकारी कल जाई महिला के कृषि क्षेत्र में का योगदान बा और यहाँ से भेंट कैले बने डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी। नया दौर के नया बात में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जानकारी कल जाई और पानी के सही निकास रखी ई आज के नसीहत रही। इकरे बाद कुछ प्रश्नोत्तरी और मौसम के भी जानकारी करके कार्यक्रम के

0: समापन कर लिए। तो देखी जैसे कि रुआ कल यहाँ देश विदेश में तो खबर बा कि बिहार सरकार खरीफ के खेती के दौरान किसान लोग से मिल रहल शिकायत के आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी लोग के सख्त चेतावनी देले बिया। कृषि विभाग निर्देश देले बा कि शिकायत के 24 घंटा के अंदर कार्रवाई होखे के चाही। सरकार सभी उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानन पर खाद के मूल्य सूची, उपलब्ध स्टॉक आ प्रतिष्ठान के नाम प्रदर्शित करे के निर्देश देले बिया। किसान भाई बहन लोग से अपील कर गेल बा कि बिना बिल के माने रसीद के कोनो परिस्थिति में उर्वरक के खरीद मत करी। अगर कोनो दुकानदार बिल देवे से इनकार करत बणन या निर्धारित मूल्य से ज़्यादा राशि मांगत बणन, उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद खरीदे खातिर दबाव बनावत बणन या कोनो प्रकार के अनियमितता करत बणन तो ओकर भी शिकायत तत्काल किसान हेल्पलाइन सेंटर पर करी। तो ये हमने के आज के खबर रहल, आगे बताई क्या जानकारी मिले वाला बा।
1: देखिए जानकारी में बात हमने के जोन कर ही जा कि खेती में तो हमने के लागल बनी जा, सब केहू ज्यादे किसान बा और खेती में ज्यादे मर्द लोग लागेला।
0: हाँ।
1: लेकिन महिला के जोन भूमिका बा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है,
0: बहुत बढ़ रहा बा। हमने यहाँ तो जगत भाई अभी कम बा, पंजाब उजाम में देखा था नहीं बहुत ज्यादे, मतलब कहल जाओ कि जो जिंदगी के दू गो पहिया कहल बना वो खेती में भी परिलक्षित होता है।
1: जी जी यही से कल है कि अब हमने जने भी महिला कम एकरा में नहीं किसन उतरल
0: धान रोपनी में।
1: हाँ उतर गिल बा लोग और बिना रोपनी महिला के रोपनी नहीं हो
0: तो शुरू से
1: अब हाँ अब धीरे धीरे हमने रोपना आगे बढ़न।
0: लेकिन महिला
1: के महत्व देखें ई बढ़ुए कि जब खेत में उतरिय सन और गीत जब शुरू हुई तब बुझाई कि एकदम सावन बरसे लागल। इससे कृषि के क्षेत्र में महिला के का योगदान बा बात आज किसान संगीता गुप्ता से जानकारी हमने के करे के और यहाँ से भेंट कर लेवे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी।
0: तो आई सुन लो
1: जी।
2: श्रोता सभे महिला हमनी का समाज का आधा अंग हैं। अब महिला जब तक तरक्की नहीं करी हाँ पुरुष तरक्की नहीं कर सके या समाज तरक्की नहीं कर सके। एह के चलते सरकार महिला किसान दिवस भी मना रहल बा ताकि खेती में भी महिला लोग योगदान कर सके आ खेती के आगे बढ़ा सके। जब खेती बढ़ी तब देश आगे बढ़ी। तो महिला कैसे योगदान दे सकेली, का योगदान दे सकेली खेती में, एकरा पर आज हमनी का बात कही जाई। हमरा संगे बानी महिला किसान संगीता गुप्ता जे कि मशरूम के खेती करीला आ साथ साथ मशरूम का तमाम उत्पाद बना करके बेचीला, विपणन करीला। संगीता गुप्ता जी आपका हमारा स्टूडियो में स्वागत बा। पहले चीज तो ये बताई कि महिला लोग का योगदान हो सकेला खेती में।
3: सभी श्रोता के हमारे सादर नमस्कार। महिला लोग खेती में योगदान तो बहुत पहले से बा, मगर आज बहुत ज्यादा बढ़ के आगिल बा, ज्यादा बढ़ गिल बा खेती करे के सब चीज के, दाल दलहन तेलहन। एकरा में हम दाल उगावतनी तो दाल के सीजनल चीज बनावतनी जो पहले से बहुत पहले बनत रहे, मगर आज वो मार्केट में भी आ गिल बा। पहले हम जैसे दाल के अदौरी तिसौरी बना के रख देते रही गांव में कि लोग बरसात में हमने के खाइल जी, मगर वो चीज़ आज उ, उ, मतलब के मार्केट में शहर तक आ गिल बा। ओकरा के हम बनाइब तो शहर में ओकरा के लाइब, अच्छा खेती करब, ज़्यादा खेती करब, शहर में ले के बेचब, ओकरा बाद खेती भी बढ़ी और आमदनी भी बढ़ी।
2: अच्छा तो माने एक तरह से महिला लोग अपन योगदान दे सकेला। रौरा का योगदान दे रहल बनी खेती में?
3: हम लोग के तो खेती में योगदान हमने खेत बा, मगर अपन बिजनेस बा तो बहुत ज्यादा खेती से ना हो पावेला।
2: मशरूम खाली खेती करी ला?
3: हाँ खाली मशरूम खेती करी ना, और खेत भी बा मगर ओकरा समनी के ना गांव बा तो ज्यादा खरीद के भी करे के पड़ला, ज्यादा खेत नहीं खेत थोड़ा ही बहुत बा तो ओकरा से खाही पीम खत्म हो जाला। तो हमनी के अपन खरीद के भी अपन मार्केट में हम लोग के बिजनेस बा यही

0: सब चीज के गांव के चीज बना के शहर में बेचे के तो उस चीज के भी जिंदा रखले बनी जाए, कम से कम गांव के चीज के विलुप्त ना होके दी जाए। जैसे हमनी के बड़ी बनाते जाए चावल के चरौरी तिसौरी बना के एकरा के मार्केट में बड़ा बड़ा शहर में जाता हमनी के बनावल, जैसे कि एकर नाम ग्रामीण के नाम से रखल बा कि हम लोग गाँव के चीज शुद्ध चीज ओरिजिनल मिल रहा है।
1: जी जी। अच्छा संगीता गुप्ता जी, जिसन कहली है कि महिला लोग का योगदान बा कर सकेली, आज के समय में महिला जे पढ़ लिख लेता उ खेती के तरफ या घर में काम करे के तरफ उ लोग का झुकाव नहीं रहत, उ लोग चाहता कि बाहर निकल करके हम नौकरी करी, यदि नौकरी नहीं खे मिलत तो फ्रस्ट्रेशन में जियता, जौना के चलते समाज या परिवार विखंडित हो रहल बा। कैसे अपना के इन्वॉल्व रख करके खेती में आ उ लोग समाज के या परिवार के एक रख सकेला?
0: देखिए आज के युग में बहुत कुछ मुमकिन भी बा, पहले हम कहते रहे कि बहुत कुछ नामुमकिन नहीं है, बहुत कुछ मुमकिन भी बा। कि जैसे हम मशरूम के खेती करत नहीं, घर में देखत नहीं कुछ हमारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ओकरा में हम अपन घर में थोड़ा सहयोग करब तो हमार घर के बाल बच्चा भी अच्छा रही है, घर परिवार भी अच्छा रही, मशरूम के खेती करब। सबसे अच्छा आजकल के हो गई बा एगो सरकार की योजना बा छत पर बागवानी, हम थोड़ा बहुत छत अपना जितना ही घर ओकरे में थोड़ा थोड़ा नर्सरी लगाइब हम लोग भी। हम बहुत कुछ काम करें अपना घर में, हम लोग के घर मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है मगर हम नर्सरी भी लगाइना मशरूम भी लगाइना अपन घरेलू बिजनेस में बस सीजनली चीज भी बा। हमारा बहुत खुशी मिलेला करके ऐसे खुशी मिलला कि हमार व्यवहार देख के बच्चा लोग भी खुश रहलन कि मम्मी तेज बड़ी तक आगे के जैसे बहू हैं तो तेज हुई हैं देख के मम्मी के, घर के आर्थिक स्थिति भी ठीक बा तो बच्चा लोग खुश बा तो अपना मन में भी बहुत खुशी आवेला कि चल अगल बगल परिवार भी बात तो बहुत खुश बा कि चल इनका घर की स्थिति अच्छा बा तो हमनी के भी सीखल जी, औरतें बड़ी के देश और समाज के भी बहुत कुछ सिखा सकली सुधार सकेली।
1: हाँ, हाँ, हाँ। तो इस तरह से औरत लोग काम कर सकेला
0: बहुत बहुत।
1: अच्छा अब रहल बात कि रउरा आज के जे महिला बा ओकरा के का संदेश देहल चाहब?
0: देखी आज के महिला के बा के हम मने मन में मन मान लेब तो हार बा, ठान लेब तो जीत बा। अगर मैं हम जब देश के एक महिला राष्ट्रपति हो सकत अड़ी, वित्त मंत्री महिला हो सकत अड़ी तो हम भी अपना मन में ठान लेब कि हम भी कुछ कर सकें अपना घर परिवार खातिर। सबसे पहला जरूरी बा हम समाज से पहला घर परिवार, घर परिवार जब अच्छा रही तो समाज भी अच्छा रही, तो अपन घर परिवार सुधारे खातिर हम ओकरा में सहयोग करे के बहुत विकल्प बा कि हम बहुत कुछ सहयोग कर सकी ना। ठीक बा हमरा से मार्केटिंग ना होई, अपन घर के आदमी लोग से सहयोग मांगब कि भाई हम घर में काम कर सकतनी कि हमरा के सामान लगे दही हम मार्केट रोरा करब, हम बहुत अच्छा घर में सहयोग कर सकतनी तो रोरा करनी, ओकरा बाद मार्केटिंग कराई तब ओकरा बाद देखी रहू घर में सबके खुशहाल रही, रहू बच्चा भी खुशी रही, रहू बहुत लोग प्यार भी करी, रहू मान सम्मान भी बढ़ी।
1: जी जी। अच्छा आज के समय में तो जो महिला लोग बा चूल्हा चौकी तक जे घर में बा चूल्हा चौकी तक सीमित बा, खाली बचल समय तो बदकुचन करता, तो का अगर समय का अपन शेड्यूल कैसे कर सकेला ताकि हम कुछ कर सकें आ दिखा सकें?
0: देखी आज के आज भी बहुत कुछ विकल्प बा, अभी जगह जगह कृषि विज्ञान केंद्र बा ओसे रोड ट्रेनिंग कर सकतनी, गांव में जीविका बहुत अच्छा साधन बा हर चीज़ के ट्रेनिंग होता, जैसे कि हम लोग पहले और घर में अपन पौधान बहुत आदमी ना बाजार से खरीद घर में बीन लेते रहन, वही पौधान के हम बहुत अच्छा तरह से बीन ले मार्केट में कर बहुत अच्छा सेल बा। हम लोग भी मतलब कि अपन बिजनेस के लिए जगह जगह स्टॉल लगाई ना जा, एक से एक चीज़ और गांव से चीज गांव की चीज़ ले जाके शहर में लोग बेचता कि वो चीज़ की इतना डिमांड बा, इतना डिमांड बा, जैसे गुड़िया बना के और सजा के पौधान बनाई, छोटा छोटा पहले बिछौना बनावत रही जाए जो कि घर तक सीमित रहे, आज बिछौना बाजार में आ गई बा, हम महिलाओं के देन बा मगर महिला जब चाह जी हैं तो बहुत कुछ कर सकेली, ये सब चीज़ महिला ही बनैले बड़ी
1: कुछ। कैसे माने उनका के अगर चूल्हा चौकी करे के बाद तो समय कैसे निकली?
0: अपन हम शेड्यूल बनाइब ना कि हम ओकरा के जल्दी उठब जल्दी जल्दी झटपट झटपट, टीचर लोग कैसे काम करेला पैसा जब लेवे के बाद टीचर लोग बा ना कि हम जल्दी नाश्ता में जल्दी खाना बनाए जल्दी पति के भेजोगे जल्दी बच्चा लोग के भी खाना खिया के नाश्ता करा के टिफिन दे के उनका के लंच पैक करके हमारा 9 बजे तक पूरा काम कर देवे के बाद तो हम उस तरह से हम शेड्यूल बनाए जब हमारा पास आई हमारा के समाज घर जब मान सम्मान बढ़ावे लगी जब हमारा पैसा आवे लगी तो दिमाग भी खुली और अपने आप समय सब बनते जाई बनते जाई बनते जाई
1: जी जी
0: पूरा समय निकल जाई बनाए खातिर
1: जी।

0: तरह से अगर महिला लोग अपना शेड्यूल बना लो आ संगे संगे ठान लो कि हमें कुछ करे के बाद तो समाज बदल सकेली, परिवार बदल सकेली,
1: परिवार बदल सकेली, परिवार समाज अपने आप बदल जी,
0: जी जी
1: परिवार बदल जी अपने आप, हम बदलब परिवार बदली समाज खुद बदल जाए।
0: जी जी तो संगीता गुप्ता जी आप अली इतना निमन जानकारी देनी, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: देखें पचू भैया कितना बढ़िया से यहाँ के बतौनी कि का योगदान हमने के कृषि में बढ़ुए और उतने फरिया फरिया के डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी जी पूछल आ जवाब बढ़िया भेटे हमने के तो
3: ये अब... जानकारी खातिर संगीता गुप्ता के बहुत बहुत धन्यवाद। आ अब कार्यक्रम में आगे बढ़ल जाओ, उससे पहले सुन लिया जाओ कुछ संदेश।
2: जी जी जी

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उन्हीं रेट पर कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को

और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।

0: देखी जगत भाई,
1: हाँ भैया,
0: खेती में पानी के सही व्यवस्था बहुत जरूरी बा। पानी के कमी होखे या बेवजह बर्बादी होखे, दोनों हालत में फसल के नुकसान होला। इस समस्या के देख के भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चला रहा भैया। तो हमने के देखी बत कही होई कि यह योजना के फायदा का बा
1: जी,
0: आ किसान यह योजना के कैसे लाभ उठावस।
1: लेकिन भैया एक चीज हम ही कह, योजना 1 जुलाई 2015 के शुरू भइल और प्रधानमंत्री जी ही कैले रही, और ये बात 10 वर्ष से अधिक समय से खेती में सिंचाई के प्रेरित परिवर्तन के आगे बढ़ावे खातिर कही।
0: एकर देखी उद्देश्य ये बा कि हर खेत के पानी आ पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी हर बूंद पानी के सही इस्तेमाल
1: होके के चाहिए,
0: एकरा के करके अधिक उपज हासिल कर जाओ। ये योजना के तहत सिंचाई के सुविधा बढ़ावे, पानी के बचत करे आ आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनावे पर जोर दिया जाता है। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आ माइक्रो इरीगेशन, तो ये सब तकनीक के बढ़ावा दिया जाता जौना से कम पानी में अधिक क्षेत्र के सिंचाई हो सके।
1: इतने बात नहीं है भैया, जैसा की बात कर रही प्रति बूंद बूंद अधिक फसल पर जाए, ये योजना के अंतर्गत 1.10 करोड़ हेक्टर से अधिक भूमि में सूक्ष्म सिंचाई के दायरा में लावल गई, ताकि ये सिंचाई के विस्तार से पानी के उपयोग कुशल पूर्वक हो सके।
0: देखिए एकरा से बिजली आ डीजल के खर्चा भी घटेला,
1: जी जी जी,
0: फसल के जड़ तक जरूरत भर पानी पहुँचेला, ऐसे पौधा स्वस्थ रहेला, उत्पादन बढ़ेला, लागत कम हो जाला, बागवानी सब्जी फल गन्ना आ दूसर जवन नगदी फसल बा तो यह तकनीक से ओमे भी बहुत लाभ मिलेला।
1: बिल्कुल,
0: कई राज्यन में तो माइक्रो इरीगेशन प्रणाली लगावे खातिर सरकार अनुदान भी दे रहल भी है। तो अगर जवन किसान भाई बहन लोग यह योजना के लाभ लिहल चाहते हैं, वो अपना प्रखंड के कृषि कार्यालय, उद्यान विभाग या जिला कार्यालय में जाके संपर्क करस, वहाँ योजना के पात्रता, जरूरी कागजात आ आवेदन प्रक्रिया के जानकारी मिल जाए। आवेदन करत समय आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन से जुड़ल दस्तावेज आ अन्य जरूरी कागजात साथ ही रखे के चाहिए।
1: देखिए बिल्कुल बात कह रही, तो एक लाभ हमने के लेवे के
0: चाहिए,
1: लेकिन एक बात कहो भैया कि पानी के निकास,
0: देखिए
1: चाहे खेत बा चाहे घर बा,
0: जरूरी
1: बा, जरूरी बा।
0: देखिए जब पानी के सिंचाई के उपयोग पानी के कैसे कर जाओ सिंचाई में, तो भाई पानी ज्यादा हो गए तो निकास भी जरूरी बा।
1: जी बिल्कुल,
0: तो उनान ओकर सही निकास होई तो हमने के फिर फसल के नुकसान हो जाए,
1: सड़ जाए, गल जाए, कोनो बेनिफिट ना होई ना फायदा होई। इससे सिंचाई मेड़ बना के करते पानी के निकास हो जाए उस खाल पर, और घर में भी बहुत से लोग हमने का कर नहीं जा कि नाली निकाल के रोड पर छोड़ दी हली, ओकरा के रवा पन सुख बनाई कि ताकि पानी वो जंग जमीन में सूख जाए और पानी के जो लेवल बा धरती में बनल रहो,
0: मतलब सही जल निकासी जौन बा वो फसल के सुरक्षित रखेला, रोग के खतरा कम करेला आ बेहतर उत्पादन में मदद करेला। अब आज के तनी मौसम मौसम के हालचाल बता दी।
1: देखिए भैया मौसम जौन बा भारत मौसम विभाग के पूर्वानुसार 29 जुलाई के दौरान आसमान घना बादल छावले रही और जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक और आंधी के चले के भारी वर्षा होके के भी अनुमान बा।

0: जोनाह में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना
1: संभावना
0: बढ़ी। एकरा में सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90%, दुपहरिया में 55 से 60% रहे के संभावना बा। यह अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के भी अनुमान बा।
1: कुछ सलाह भी बा।
0: देखिए, सलाह तो यही बोलूँगे कि भारी वर्षा और आंधी बिजली तेज हवा के फसल के नुकसान कर सकत बा। इससे एकरा में फूल झड़े, रोग कीट प्रबंधक सब्जी के बागवानी के क्षति पहुंचा सकेला। ऐसे एकरा के हमनी के सुरक्षित रखे के जरूरत पड़े। और इससे भारी वर्षा के संभावना को देखत हुए हमनी के नर्सरी के जल निकास के उचित व्यवस्था करके ताकि एकरा के हमनी के बिया के बचा सकी जाए।
1: तो श्रोता भाई बहन लोग, हमने के यह कार्यक्रम के आज के समय उड़ा गई, बेरा हो गई, रुवा सभी से विदा लेवे के। यह कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहन संतोष कुमार। तो चलत चलत ले सभी श्रोता भाई बहनी लोग के आ जगत भाई रवो के पंचू भाई के राम राम।
0: राम राम। सब श्रोता भाई लोगन के भी जगत भाई के नमस्कार।

हमारे किसान भाई अभी अपना प्रसारण सुन रहे थे, किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए सांझ गीत।

0: सुन, सोचतानी कि काहे ना आपन बिजनेस बढ़ाई।
1: तो रोकले के बा?
0: रोकले तो कोई नहीं खे, बाकी समझ में नहीं खे आवत कि कैसे मदद मांगी।
1: हमरा से?
0: तोहरा से? तो बतावो।
1: आकाशवाणी बाना, हम सुनले बानी कि आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा।
0: तो ओकरा से हमरा के का फायदा बा?
1: फायदा बा, जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से ओही जगह पहुँच जाई।
0: तो इहो बता दा कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे होई?
1: बहुत आसान बा, हम बतावत बानी। नंबर लिखी 8700014242।
0: ओ 8700014242।
1: हाँ।
0: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: इस संदेश के पहले आपने मोहन राठौर के साथ उदित नारायण को सुना। शब्दकार थे प्यारेलाल यादव, स्वरबद्ध किया था राजेश।

0: जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: इस संदेश के पहले आपने मोहन राठौर के साथ उदित नारायण को सुना। शब्दकार थे प्यारेलाल यादव, स्वरबद्ध किया था राजेश रजनीश ने। श्रोताओं, आइए सुन लेते हैं एक नगमा, धनंजय कुमार और राहुल सक्सेना की आवाज़ों में। शब्दकार हैं विनय बिहारी, धुन तैयार की है धनंजय मिश्रा ने। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के।

श्रोताओं, अभी आपने धरती कहे पुकार के फिल्म में धनंजय कुमार और राहुल सक्सेना को सुना। आइए सुन लेते हैं एक गीत सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। अनजान के लिखे गीत की तर्ज बनाई है चित्रगुप्त ने, फिल्म है हमार भौजी।

और कार्यक्रम का समापन जावेद अली के गाए एक गीत से, जिसे हमने रखवाला फिल्म से लिया है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए, गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार। बिहार सरकार युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के निर्देशानुसार अवर प्रादेशिक नियोजनालय डालमिया नगर के द्वारा आज दिनांक 28/7/2026 को संयुक्त श्रम भवन डालमिया नगर में एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। नियोजन मेला का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी डीपीओ विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा सहायक निदेशक जिला नियोजन पदाधिकारी नियोजनालय डालमिया नगर एवं अनुदेशक आईटीआई ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। नियोजन मेला के संबंध में सहायक निदेशक नियोजन द्वारा बताया गया कि आज के इस नियोजन मेला में 18 नियोजकों ने भाग लिया, जिसकी कुल रिक्तियां लगभग 1000 थीं। आज के इस नियोजन मेला में 1491 आवेदकों ने अपना बायोडेटा जमा किया, जिसमें से 453 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट यानी चयनित किया गया। उन्होंने बताया कि इस मेले में लगभग 1800 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस मेला में विभिन्न सरकारी विभागों यथा आईटीआई, आत्मा, आरएसईटीआई, उद्योग विभाग इत्यादि द्वारा भी स्टॉल लगाया गया, जिसमें 863 आवेदकों को मार्गदर्शन दिया गया है। वहीं एक अन्य सूचना के अनुसार आज दिनांक 28/7/2026 को जिला पदाधिकारी रोहतास की अध्यक्षता में 81 प्रखंड तिलौथू में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी डेहरी, सिविल सर्जन रोहतास, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला

योजना पदाधिकारी निदेशक DRDA, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी गण भी उपस्थित रहे। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने वर्ष 2022-23 के बेस लाइन डेटा एवं मार्च 2026 तक की प्रगति का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करते हुए विभिन्न विकास सूचकांकों में हुए सुधार एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही संपूर्णता अभियान के अंतर्गत 6 प्रमुख सूचकांकों में 100% लक्ष्य प्राप्त करने की उपलब्धि से भी अवगत कराया गया। समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को NQAS से संबंधित सभी गैप का आकलन कर कार्य योजना तैयार करते हुए यथाशीघ्र प्रमाणन हेतु आवेदन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं एक अन्य सूचना के अनुसार आज दिनांक 28/7/2026 को समाहरणालय रोहतास स्थित DRDA सभागार में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक रोहतास की अध्यक्षता में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना द्वारा गृह विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक पद की नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के सफल, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त संचालन के संबंध में केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा गया कि परीक्षा का संचालन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप कराया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने बताया कि दिनांक 29 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली यह लिखित परीक्षा एकल पाली में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 8,784 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ये परीक्षा केंद्र हैं SP जैन कॉलेज सासाराम, उच्च माध्यमिक प्लस टू विद्यालय रामेश्वरगंज, शेरशाह सूरी इंटर स्तरीय विद्यालय अड्डा रोड, शेरशाह कॉलेज, श्री शंकर उच्च महाविद्यालय तकिया, श्री शंकर महाविद्यालय, बुद्धा मिशन स्कूल, रमा जैन बालिका उच्च माध्यमिक प्लस टू विद्यालय, अवधूत भगवान राम कॉलेज, प्रज्ञा निकेतन पब्लिक स्कूल, AVR फाउंडेशन स्कूल, स्कॉटिश सेंट्रल स्कूल, संत अन्ना स्कूल, बाल विकास विद्यालय, रोहतास महिला कॉलेज एवं स्वामी शिवानंद जी तीर्थ। आइए सुन लेते हैं एक गीत।

0: मेला कुछ रोले कुछ गाले, दुनिया है दो दिन का मेला कुछ रोले कुछ गाले।
1: वाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: अभी आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास, यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: पैनल लग चुके हैं, आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: सुनिए, आपके पास कोई शानदार रेडियो आइडिया है क्या?
6: आइडिया है, कहानी है, ऑडियो कंटेंट है, लेकिन उसे सुनाएगा कौन?
5: आकाशवाणी।
6: जी हाँ, प्रसार भारती के आकाशवाणी नेटवर्क पर कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित हैं।
5: क्या आप प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर, कंटेंट क्रिएटर, राइट्स ओनर या एग्रीगेटर हैं?
6: तो अपने मौलिक कार्यक्रम का प्रस्ताव भेजिए और अपने कंटेंट को दीजिए आकाशवाणी का विशाल मंच।
5: रेडियो ड्रामा, फीचर, डॉक्यूमेंट्री, स्टोरी टेलिंग, ऑडियो सीरीज, पॉडकास्ट, क्विज
6: और शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम तथा लोक संगीत आधारित कार्यक्रम भी।
5: हिंदी, अंग्रेजी और निर्धारित क्षेत्रीय भाषाओं में नेशनल, रीजनल और लोकल आकाशवाणी स्टेशनों के लिए।
6: आपके कार्यक्रम में हो सकता है विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से जुड़ने का अवसर।
5: चुनिए अपनी भागीदारी का तरीका, रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड या ग्रेटिस मोड।
6: रेवेन्यू शेयरिंग मोड में विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप से आय का साझा अवसर, और स्पॉन्सर्ड मोड में अपने ब्रांड, उत्पाद या सेवा के प्रचार के लिए फ्री कमर्शियल टाइम का अवसर।
5: बस ध्यान रहे, कंटेंट मौलिक हो, अधिकार आपके पास हो और आकाशवाणी के कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोड का पालन हो।
6: आपके कॉन्सेप्ट, क्रिएटिव ट्रीटमेंट, टीम, ऑडियो क्वालिटी और व्यावसायिक संभावनाओं का होगा मूल्यांकन।
5: तो फिर इंतजार किस बात का?
6: अपना कार्यक्रम प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में आकाशवाणी पटना के क्लस्टर या नोडल कार्यालय को ईमेल करें।
5: हमारा ईमेल पता है
6: ddgeairpatna@redifmail.com या pecairpatna@gmail.com या
5: hoairpatna@prasarbharati.gov.in।
6: अधिक जानकारी के लिए सीधे आ जाइए आकाशवाणी पटना।
5: आपका आइडिया, आपकी आवाज,
6: आकाशवाणी का मंच। आकाशवाणी के साथ कंटेंट को नई पहुंच
5: और विज्ञापन को नई संभावनाएं।

0: Akashwani at 90.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, सभी बीएड कॉलेजों में खोले जाएंगे डिग्री कॉलेज। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त, अंतिम दिन भाजपा, राजद, जनसुराज समेत विभिन्न दलों ने झोंकी पूरी ताकत, 30 जुलाई को होगा मतदान। और मानसून की सक्रियता फिर बढ़ी, पटना समेत राज्य के विभिन्न भागों में बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को लेकर आखिरकार चर्चा शुरू हो गई है। इस विधेयक में परीक्षा पेपर लीक रोकने और परीक्षा के आयोजन में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में दोषियों को 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल किए गए हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार लाने का इरादा न रखने का आरोप लगाया। विपक्ष ने कहा है कि यह नया विधेयक महज दिखावा है, क्योंकि यह पहले के अधिनियम में केवल एक संशोधन है। इससे पहले विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर आज भी विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में भोजनावकाश के पहले की कार्यवाही बाधित रही। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर आज सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश भी दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। इनमें सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्य शामिल हैं। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार समेत कई राज्यों के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा है। इधर राज्य सरकार ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के विरोध में राज्य भर में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक

0: अथवा प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। ताजा जानकारी के अनुसार इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित व्यक्तियों को रिहा करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में कहा कि यह देश के किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान चरण में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। श्री चौहान ने बताया कि अधिनियम के तहत एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन की मजदूरी की वैधानिक गारंटी प्रदान की गई है, जबकि पहले मनरेगा में 100 दिन का ही रोजगार मिलता था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जल्द ही राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। श्री चौधरी ने मुंगेर में लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए जल्द ही कार्य योजना बनाई जाएगी।
1: अभी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं कि बिहार के सभी बीएड कॉलेज में हम डिग्री कॉलेज खोलने का भी काम आपके लिए समर्पित करने का काम करेंगे। हम लोगों ने मॉडल स्कूल की कल्पना की है, सरस्वती विद्या निकेतन बन रहा है, 551 जगह पर इसकी शुरुआत हुई, आज लगभग 10 जगह पर मैंने फिर आज शुरुआत किया है, ये बढ़कर 561 हो गया, इसको रोज बढ़ाऊंगा।
0: मुख्यमंत्री ने मुंगेर में कई विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने जिले के तारापुर और असरगंज में मॉडल स्कूल, डिग्री कॉलेज और थाना भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भागलपुर में सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 28 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक ऐप की भी शुरुआत की है। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पटना और सोनपुर तथा सुल्तानगंज और अगवानी घाट को रोपवे से जोड़ा जाएगा।
1: हम लोगों ने तय किया, अभी हमने रोपवे के लिए कॉरपोरेशन बनाया और दो जगह पर गंगा पार कराने की व्यवस्था हम लोगों ने सोचा है। एक पटना में, पटना के बाईपास जो मेरिन ड्राइव है, वहाँ का जो हरिहरनाथ मंदिर है वहाँ ले जाने का काम करेंगे, और अजगैबी नाथ से अगवानी घाट भी रोपवे से झूला लगाकर पार कराने का काम करेंगे।
0: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, राजद, जनसुराज समेत विभिन्न दलों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। एनडीए के घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में विभिन्न स्थानों पर रोड शो और सभाएं की। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक और विधान पार्षदों ने विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न

0: पर लोगों से संपर्क कर एनडीए प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। इधर राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी रेखा कुमारी के समर्थन में वोट की अपील की। जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने भी प्रचार के अंतिम दिन विभिन्न मोहल्लों और टोलों में लोगों के साथ संवाद कर समर्थन मांगा। 30 जुलाई को मतदान होगा जबकि 3 अगस्त को मतगणना कराई जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: जितने भी सभा रैली या जुलूस होने के लिए
0: मॉनसून के सक्रिय होने से राजधानी पटना समेत विभिन्न भागों में बारिश हो रही है जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। विभाग ने कुछ भागों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 29 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, अधवारा समूह समेत राज्य की अधिकतर नदियों का जलस्तर घटा है। वहीं बागमती और कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से ऊपर बह रही है। राज्य सरकार ने कैंसर पीड़ित बच्चों के बेहतर इलाज के लिए बड़ी पहल करते हुए कैन किड्स संस्था के साथ समझौता किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक अमित कुमार पांडे और कैन किड्स के संस्थापक पूनम बगई ने आज पटना में इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत कैन किड्स कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। कैन किड्स की संस्थापक पूनम बगई ने कहा कि समझौते के अनुसार राज्य में चाइल्डहुड कैंसर टास्क फोर्स का गठन, टेली कंसल्टेशन और मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
3: हमने आज एक एमओयू साइन किया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के साथ। उसका लक्ष्य ये है कि 2030 तक 100% बच्चे को पूरी तरह से आर्थिक सहयोग मिले और उस सब के वजह से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो बोलते हैं वो होगा और फिर बच्चों की सर्वाइवल भी बढ़ेगा।
0: आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। यह दिवस हर साल 28 जुलाई को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है जिससे गंभीर यकृत रोग और यकृत कैंसर हो सकता है। इस वर्ष का विषय है हेपेटाइटिस, आइए इसे समझें, जो लोगों और उनकी जान बचाने वाली सेवाओं के बीच की बाधाओं को दूर करने का आह्वान है। अररिया जिले से सटे नेपाल के सीमावर्ती इलाके में हिंसा के बाद कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी विनोद दुहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने सीमावर्ती क्षेत्र मानिकपुर, कोसिकापुर और भवानीपुर में आज सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। रोहतास पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह के 2 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक विप्लव कुमार ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ सुमन की अध्यक्षता में आज टीबी रोगियों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया गया। भारत की जनगणना 2027 के अंतर्गत डिजिटल सूचना संग्रह का कार्य 1 अगस्त से प्रारंभ होगा। यह कार्य डिजिटल मोड में मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। जहानाबाद पुलिस ने हजारीबाग से पटना आ रही मिनी कंटेनर से 3 करोड़ रुपए का 280 किलो गांजा बरामद किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा शुरू। विधेयक में पेपर लीक जैसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज में श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। मुंगेर में कई विकास योजनाओं का किया शुभारंभ। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार समाप्त, अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों

ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने की तैयारी। और मानसून की सक्रियता बढ़ने से पटना समेत राज्य के विभिन्न भागों में हुई बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है लखीसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनय कुमार।
1: लखीसराय जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। राज्य के सभी प्रखंडों के साथ लखीसराय के 7 प्रखंडों में भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉडल विद्यालयों का उद्घाटन किया। सभी विद्यालयों में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने परहिया प्रखंड स्थित मालती रामाश्रय ज्ञान भारती उच्च विद्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिले के हलसी, रामगढ़ चौक, चानन और पिपरिया प्रखंडों में नव स्थापित राजकीय डिग्री कॉलेजों का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन कॉलेजों की शुरुआत की। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इन संस्थानों की स्थापना से जिले के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार के सेवा संकल्प और समर्पण के 100 दिनों की उपलब्धियों पर आधारित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का समाहरणालय में सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पिछले 100 दिनों के दौरान विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिले के उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। भूमिहीन और महादलित परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में अभियान बसेरा 2 के तहत समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में 10 चयनित लाभार्थियों को भूमि पर्चा वितरित किया गया। अपर समाहर्ता नीरज कुमार ने प्रमाण पत्र सौंपते हुए कहा कि यह अभियान जरूरतमंद परिवारों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जिले में 3 दिवसीय विशेष पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन शिविर का सफल आयोजन किया गया। समाहरणालय परिसर में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रियाज नजमी ने किया। शिविर के दौरान नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं उनके जिले में ही उपलब्ध कराई गई। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल सेवा का उद्देश्य लोगों को सुविधा के साथ पासपोर्ट उपलब्ध कराना है, जहां अस्थायी पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक

0: रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिले की सभी पंचायतों में जीविका सुधा बिक्री केंद्र खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को डेयरी उत्पादों के व्यवसाय से जोड़ने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इससे महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधा उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ेगी। केंद्रीय पंचायती राज तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लखीसराय प्रखंड के साबिकपुर स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नव निर्मित भवन, स्मार्ट क्लास और पिंक रूम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही विकसित समाज की मजबूत नींव है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह और दानापुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विनोद कुमार ने लखीसराय संग्रहालय का भ्रमण किया। संग्रहालयाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार ने उन्हें संरक्षित प्राचीन मूर्तियों और जिले की ऐतिहासिक विरासत से अवगत कराया। जिले के सभी 700 प्रखंडों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समन्वय बैठक आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि जिले के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर व्यापक स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि समय पर मरीजों की पहचान और उपचार सुनिश्चित किया जा सके। ऊर्जा सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अजय यादव ने कजरा सौर ऊर्जा एवं बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना की प्रगति, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और उपभोक्ता सेवाओं की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे लखीसराय जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विनय कुमार।
2: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ई मन पसंद।

ई मनपसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। लीजिए श्रोताओं, पेश है आपकी फरमाइशों पर आधारित फिल्मी नगमे जिन्हें आप ईमेल के माध्यम से हमारे केंद्र से सुनना चाहते हैं। हम सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम का पहला नगमा दुल्हे राजा फिल्म से। सोनू निगम के साथ जसपिंदर नरोला को सुनते हैं। समीर के लिखे गीत की तर्ज बनाई है आनंद मिलिंद ने और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी हैं श्रोतागण। टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और ये ईमेल आपने भेजा है हमें सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। कालका से इसी गीत को सुनना चाहते हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, और साथ ही साथ आप हैं इस गीत को सुनने वाले गोकुल चौक गंगाजला सहरसा बिहार से। राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी अच्छेलाल राय, बुलकी वाली फालना झा, और नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला और चीलना झा। जी हाँ, और एक और ईमेल इस गीत के लिए है हमारे श्रोतागण हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गंवाड़कर राही, सरिता गंवाड़कर, प्रणीता सिद्धांत गंवाड़कर, अर्जुन गंवाड़कर और टुक टुक। आंखें हैं कि मैखाने के दरवाजे खुले हैं, ये होंठ गुलाबी हैं कि फूलों में फूले हैं, हर सांस से आती है महकती हुई खुशबू, मेरे हुजूर ये

श्रोताओं, कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे 8:15 से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। थोड़ी

देर में यानी ठीक 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा। इसे हम रिले कर रहे हैं, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्नपत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था, तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इंकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में

स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृहमंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथी और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि यह ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं।
तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के

0: कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है, मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ई मन पसंद का शेष भाग।

साजन का घर, जी हाँ, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं। कुमार सानू और साधना सरगम के युगल स्वरों में समीर के लिखे गीत की तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। जी हाँ, आप हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी ने भी हमें मेल किया। गोला बाजार बक्सर से सुनना चाहते हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। और करणवीर हाउस भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से गीत सुनना चाहते हैं प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू एकम दमन अभिजोत। और इसी गीत के लिए कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्रा गुप्ता, रानी मुकेश गुप्ता, रिधि सिद्धि गुप्ता ने भी हमें मेल किया है। और ये मेल आया है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ के श्रोतागण की ओर से। श्रोता है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीना देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। महावीर स्थान सासाराम से अयोध्या भगत, तुलसी भगत, शिव पूजन भगत और समस्त भगत परिवार की ओर से ये फरमाइश है। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम नहौना प्रखंड सासाराम से हमारे श्रोतागण भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, बिमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। श्रोताओं, हम आपको गीत सुनवा रहे हैं इन शब्दों के साथ कि बरसे सावन झूम के, घटा उठी घनघोर, बिजली चमके नभ बिछे, नाचे मन का मोर, सावन की फुहार में भींगे तन और मन, हरी तिमा छाई धरा, महका सारा वन। लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश का यह नगमा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: स्वागत है एक बार आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। जी हाँ, हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म कभी कभी से। बहुत ही प्यारा गीत और बहुत ही लोकप्रिय नगमा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जी हाँ, आप सुनने जा रहे हैं मुकेश के साथ लता मंगेशकर को, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं धनपुरवा सासाराम से, विश्वनाथ सिंह, गुड्डू जी, टुटू बाबू, राजेश सिंह, दीपक कुमार, नागेंद्र जी और आपके परिवार के सारे सदस्यगण ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, और जमा मस्जिद रोड गोगावा से आप हैं हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, और साथ ही साथ गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से आप हैं दातार सिंह।

खावत, संगीता कंवर तुषार सिंह, रिंकी सखावत और आपके मित्रगण। और ये एक फरमाइश हमें मिलती हुई दिख रही है ईमेल के माध्यम से, हमारे श्रोतागण हैं गोरक्षणी सासाराम से बलदेव जी और आपके परिवार के सदस्यगण। चलिए हम आपको सुनवाते हैं कभी कभी फिल्म का ये नगमा जिसे आप सुनना चाह रहे हैं। सुन लीजिए इन शब्दों के साथ की चलते चलते मुझसे पूछा मेरे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म जुदाई से आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की। आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और इसे सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। जी हां, आप हैं पारस मणि रेडियो श्रोता क्लब, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, दिनेश चौहान, राम देवरा से नेत्रहीन बाबू जयपाल, डांगरी से दिव्यांग खुदाबख्श खलीफा और खलीफों की बावड़ी से ये आपने हमें मेल किया है, और साथ ही साथ इसी गीत को सुनने वाले जहां आप हैं गढ़ मुक्तेश्वर काका ठेर की मड़ैया से राजकुमार जानकी देवी, पुनीत कुमार, सपना कुमारी और भावना कुमारी, चौसा गोला बक्सर से आप हैं जयराम बिंद, सीतामणि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न और प्रीतम कुमार। और इसी गीत के लिए हमें आपने भी लिखा है श्रोताओं, आप हैं हमारे श्रोता कोचस से आपने लिखा है वीरेंद्र तिवारी, रमेश बाबू और आपके मित्रगण, और ये हैं दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से आप हैं विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल। चलिए हम आपको सुनवाते हैं ये नगमा इन शब्दों के साथ की इजहारे तमन्ना पर, अजब हाल है उनका, आँखें तो रजामंद हैं, लब सोच रहे हैं।

इश्क के, वफा के, मोहब्बत के, उल्फत के मीठे नगमे इस समय आप सुन रहे हैं ई मनपसंद कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से संजय चतुर्वेदी के साथ। कार्यक्रम का आखिरी नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं खानदान फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा भोसले की आवाज़ें हैं। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत की तर्ज बनाई है रवि ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन छोटू, अमित सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित जी। और आप हैं आलिया, कमाल, मिराज, सकीबा, निसार, अकासी सासाराम से आपने हमें मेल किया है। और हमें मेल करने वाले आप भी श्रोतागण हैं। आप हैं संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया, अपार ढेंगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से आपने हमें याद किया। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। और ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़। और ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी, मीनाकारी, पुंजराज, आकर आरती, आकर्षण और जयश्री। और टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चिनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। एक और फरमाइश इस गीत के लिए दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी

और डब्बू बब्बू और पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश रावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी रानी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले और कापसड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से अब हैं बीटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले, लखमीनिया ज़िला बेगूसराय से शमीम अहमद राइन, अखलाक अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार की ओर से ये फरमाइश है। चलिए, बात फूलों की हुई है, हम आपको सुनवा रहे हैं ये नगमा इन शब्दों के साथ की फूलों की। दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो यह खता, एक बार नहीं हर बार करो।

जब तक नहीं मिले थे जुदाई का था मलाल, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। श्रोताओं, इन्हीं नगमों के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही

0: नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
1: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
2: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
2: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
3: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे

0: करे। जन जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
1: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम्पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति सुधा सिन्हा की आवाज़ में।

लीजिए सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति सुधा सिन्हा की आवाज में।

प्रेम रंजन सिंह की गई इसी भोजपुरी रचना के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए महफिल। शुरुआत करते हैं हरिहरन की गाई इस रचना से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों नमस्ते,
1: मैं हूं अमरकांत। आज इस प्रोग्राम में याद करेंगे गुजरे जमाने की बेहद टैलेंटेड, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री कुमकुम को, जिनका असली नाम था ज़ैबुन्निसा, कुमकुम उनका फिल्मी नाम था। बहुत ही संपन्न और प्रतिष्ठित घराने में जन्मी कुमकुम, उन्होंने लगभग 115 फिल्मों में काम किया और जितने भी गीत उन पर फिल्माए गए सभी हिट रहे।

आर पार फिल्म का ये गाना अभिनेत्री कुमकुम पर पिक्चराइज था। कुमकुम के जीवन से जुड़ी बातों पर विस्तार से चर्चा शुरू करने से पहले आइए इस गीत से जुड़ी कुछ बातें ही आपको बताते हैं। गुरुदत्त जब फिल्म आर पार के निर्माण में लगे थे तो उन्होंने ये गीत कभी आर कभी पार लागा तीरे नजर फिल्म में रखने का निर्णय किया और तय किया कि ये गीत अभिनेता जगदीप पर फिल्माया जाएगा। जगदीप उनको आप जानते ही हैं, अभिनेता जावेद जाफरी और नावेद जाफरी के पिता हैं और उस समय कुमकुम के मित्र भी हुआ करते थे। बहरहाल फिर गुरुदत्त ने अपना विचार बदल दिया, गीत को उन्होंने

किसी महिला अदाकार पर फिल्माने की बात सोच ली और उन्होंने ये भी सोचा कि जिस महिला अदाकारा पर यह गीत पिक्चराइज किया जाए उसे नृत्य भी आता हो। लेकिन उस दौर की अभिनेत्रियां जो नृत्य भी जानती थीं, वो सभी स्थापित अभिनेत्रियां थीं और किसी ने भी इतना छोटा सा रोल करना मंजूर नहीं किया। तब गुरुदत्त ने यह रोल कुमकुम को दे दिया, जिनकी प्रतिभा के बारे में उन्हें पहले से पता था। रोल छोटा ही सही, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद फिल्म के हिट होने के साथ साथ ये गीत भी जबरदस्त हिट हुआ और इसका कुमकुम को भरपूर फायदा मिला।

ये फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का गीत था जिसमें कुमकुम और किशोर कुमार लीड रोल में थे। कुमकुम का जन्म हुआ 21 दिसंबर 1935 को हुसैनाबाद बिहार में। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा जैबुन्निसा। जैबुन्निसा यानी कुमकुम ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कथक नृत्य की भी तालीम हासिल की थी। पंडित शंभू महाराज की शिष्या रही हैं। इनके डांसिंग टैलेंट को हम सभी ने फिल्म कोहिनूर के इस नृत्य गीत में भी देखा।

कुमकुम ने अपनी अभिनय और नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कई फिल्मों में किया। कुमकुम की प्रतिभा से प्रभावित निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने उनको भी मुख्य भूमिका में लेकर फिल्में बनाई। फिल्म ललकार में कुमकुम धर्मेंद्र की हीरोइन थी।

फिल्म जलते बदल में कुमकुम किरण कुमार की हीरोइन थी। रामानंद सागर की सुपरहिट फिल्म आंखें में कुमकुम ने धर्मेंद्र की छोटी बहन का रोल अदा किया, लेकिन ये सिर्फ एक मात्र छोटी बहन का रोल नहीं था, फिल्म में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी।

फिल्म गीत। इस फिल्म में भी राजेंद्र कुमार के साथ कुमकुम ने एक अहम भूमिका अदा की थी। कुमकुम ने भोजपुरी की उल्लेखित फिल्म गंगा मैया तोहे पेरिये चढ़इबो में मुख्य भूमिका अदा की।

अपने पूरे फिल्मी करियर में कुमकुम ने लगभग 115 फिल्मों में काम किया। इनमें से हिट और उल्लेखनीय फिल्मों की बात अगर की जाए तो इस तरह से हैं, मदर इंडिया,

0: अभिनेत्री कुमकुम पर केंद्रित आज के फनकार प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे स्वर अमरकांत का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रमेश गोखले। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। रस रंग के तहत लीजिए सुनिए कुछ एल्बम।

दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इस संदेश के पहले आपने अनूप जलोटा के साथ निहारिका सिन्हा को सुना। शब्दकार थे मिर्जा गालिब। यह कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति

आबिदा परवीन से अभी आप अमीर खुसरो की रचना सुन रहे थे। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं मिर्ज़ा गालिब का कलाम। गायक कलाकार हैं अनुराधा सिन्हा। निहारिका सिन्हा।

निहारिका सिन्हा की गई इसी रचना के साथ ही रसरंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। 10:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम चित्रपट तराने। चित्रपट तराने कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त संजय चतुर्वेदी। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, किसी को देखकर प्यार उमड़ता है तो किसी को देखकर पुरानी

यादें भी ताज़ी हो जाती हैं। फूलों को, पौधों को, पेड़ों को, मूर्तियों को, देवताओं को, इंसानों को, पशुओं को, चाहे जिसे भी देखिए, अगर प्यार से देखा तो मोहब्बत होना लाजिम है। ऐसे देखा है तो ख़ता क्या है, ऐसे देखा है तो ख़ता क्या है, अगर ये जफा है तो फिर वफा क्या है।

ये दिल सब कुछ गंवाना चाहता है, ये आंसू तो बहाना चाहता है, लेकिन कोई बहाना चाहता है। मुसलसल उम्र भर खामोश रहकर न जाने क्या ये पाना चाहता है।

ज़िंदगी की राहों में कहीं कांटे भी हैं, कहीं कुछ भी है, कहीं फूल भी है, कहीं पत्तियाँ भी हैं। ज़िंदगी की राहें और भी आसान हो जाती हैं जब किसी का साथ मिल जाता है।

आसान नहीं है राह मोहब्बत संभल के चल, आसान नहीं है राह मोहब्बत संभल के चल, लंबा सफ़र है मोम की बैशाखियाँ न ले। अब दूर दूर रहकर बहुत साथ हो लिए, खुशियाँ तमाम दे चुका बदनामियाँ न ले।

तो श्रोताओं, आज के चित्रपट तराने कार्यक्रम में बस यहीं तक। आज के इस कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के नगमे सुने उनके नाम हैं क्रमशः दो कलियां, दिल अपना और प्रीत पराई, दो रास्ते और डोली। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

बनाकर दिलों को वफा का शिवाला, जलाते मोहब्बत की हम आरती हैं। वो हिंदू मुसलमान या ईसाई सिख हों, जो भारत में रहते सभी भारती हैं।

एक नज़र हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। प्रातःकालीन प्रसारण सेवा में आप 7:30 पर हमारे केंद्र से नित्य प्रति सुनते हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास, और 8:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप प्रादेशिक समाचार सुनते हैं 8:45 पर और 9:10 पर। आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का गीत मालिका के तहत।

रक्षक, जी हाँ, ये प्रसारण आप सुनेंगे कल 10:05 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम सुनिएगा 10:30 पर।

हमारे केंद्र से आप रसधार कार्यक्रम सुनते हैं 10:45 पर। सांध्यकालीन प्रसारण सभा में आप वंदन 5:10 पर और घर आंगन कार्यक्रम सुनेंगे 5:30 पर।

गांव घर कार्यक्रम का प्रसारण समय है 6:10 और संध्या 7 बजे। सुनिएगा, पारा मेडिकल है पारस। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। कल का अधिकतम तापमान हो सकता है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। हवा की रफ्तार 24 किलोमीटर प्रति घंटे और हवा में आर्द्रता 73% संभावित है। आसमान में काले काले बादल छाए रहेंगे, बूंदा बूंदी हो सकती है, गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान और कार्यक्रम संबंधी जानकारियां समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की

तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का

के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।